मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के

ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 48 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव

0: बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सम्पन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

राष्ट्र एक भौगोलिक सीमा नहीं, वो हर देशवासी के विचार, कर्म और कर्तव्य की परिसीमा है। वो हमारा गौरव है, हमारी पहचान है।

गहन अंधकार में भी रोशनी की एक किरण आस की विश्वास की वो डोर बन जाती है जो गहरे विषाद से भी बाहर ले आती है, विषमता को अनुकूलता की ओर मोड़ देती है। यही रोशनी, यही विश्वास वो परम शक्ति है जो कई कई नामों और रूपों में और हमारी हम सब की आस्थाओं में विद्यमान है।

सुख दुख वो मनः स्थिति है जो हमारी परिस्थिति, अपेक्षा या उसके परिणाम से बनती है। इस सब के बीच यदि हम उस शक्तिमान को और उसकी कृपा को महसूस कर पाए, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकें, तो मुश्किलें आसान और विश्वास साकार हो जाते हैं।

जीवन एक निरंतर प्रवाह है, या जो प्रवाहमान है वही जीवन है। निरंतरता की इस राह में आने वाले दुख, संताप, बाधा, व्यवधान आपके ही पावन स्मरण से दूर होते हैं। कर्मों में सामर्थ्य और मन को धीर दो प्रभु, आशीष दो।

0: कार्यक्रम वंदना में आज आपने अनूप जलोटा, सुरेश वाडकर, जगजीत सिंह और साथियों को सुना। देशगान समूह स्वर में था।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी भोपाल है।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: महात्मा गांधी ने कहा, हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और उसे दृढ़ करती है। देश का कोई भी सच्चा प्रेमी हिंदी का तिरस्कार नहीं कर सकता। दुनिया से कह दो, गांधी अंग्रेजी नहीं जानता।
2: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति।

श्री रामचरित मानस की रचना प्रक्रिया में गोस्वामी तुलसीदास ने मानस रूपी एक अद्भुत रूपक की कल्पना की है। कहते हैं, जिनके पास श्रद्धा का पाथेय नहीं है और ना ही जिन्हें संत जनों का साथ प्राप्त

है, जिनके हृदय में भगवत प्रीति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मानस सर्वथा अगम्य अप्राप्य है। यदि कोई कष्ट उठाकर इस सरोवर तक पहुंच भी जाए तो उसे अज्ञान का ज्वर धर दबाता है, जिसके कारण वो इस पवित्र सरोवर में स्नान से वंचित रह जाता है। जो इससे वंचित रहा, जिसने कभी इसके पवित्र जल का पान नहीं किया, वो सरोवर की निंदा के अतिरिक्त और क्या कर सकता है। लेकिन जिन पर प्रभु की अनुकंपा है, उन्हें यह व्याधि नहीं छू पाती। वे दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों में भी नहीं जलते। इस पवित्र सरोवर से रामकथा रूपी कविता निकली है। इस कविता रूपी नदी में प्रभु का यश रूपी जल प्रवाहित होता है। इस कीर्ति नदी का नाम है सरयू, जो सबके लिए सर्वदा मंगलकारिणी है। वेदमत और लोकमत इसके दो किनारे हैं।

0: श्री रामचरित मानस गान से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति अभी आपने सुनी। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं चिंतन। आज का विषय है मूल्य बोध।
1: संस्कृत में एक कहावत है, नहीं मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचित, अर्थात मनुष्यता से श्रेष्ठ इस पृथ्वी पर और कुछ नहीं है। मानव प्राणियों में अधिक विवेकशील होता है, इसलिए वो अधिक बलशाली भी है। कहा गया है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, मानवता वह भाव है जिसके कारण मानव मानव बना रहता है, उसका अधापतन नहीं होता। मानव से नीचे पशु पक्षी हैं, जिनमें चेतना का भाव तो दिखाई देता है, पर सत असत के निर्णय का विवेक तथा शुभ अशुभ के अंतर का ज्ञान उन्हें नहीं होता। इसी तरह वृक्ष वनस्पतियों में अंतश्चेतना तो है, किंतु उसकी बाह्य अभिव्यंजना नहीं है। मनुष्य की उच्च धारणाएं, विचार, दृढ़ विश्वास, श्रेष्ठ मनोवृत्ति, पूर्ण आस्था आदि समेकित रूप से मिलकर जीवन मूल्य का निर्माण करते हैं। संस्कृति एवं परंपरा से परिपोषित जीवन मूल्य व्यक्ति के अंतःकरण द्वारा नियंत्रित होते हैं। भारतीय मनीषा ने जीवन का उत्कृष्ट मूल्य त्याग और परमार्थ का भाव माना है। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की दृष्टि जब जीवन मूल्य का उद्देश्य बन जाती है, तभी सत्य, अहिंसा, सत्संगति, सांस्कृतिक आदर्श और कर्तव्य पालन के द्वारा व्यक्ति ही नहीं

0: समाज का भी वास्तविक अभ्युदय होता है। हां, यहां एक बात और स्पष्ट करना उचित प्रतीत होता है कि जीवन मूल्यों को व्यावहारिक धरातल पर उतार लेना एक उपलब्धि होती है। जीवन का मूल्य बोध यदि मानव को हो जाए तो न केवल वह आत्मकल्याण की दिशा में अग्रसर होगा, अपितु उसके व्यावहारिक पक्ष को देखकर उसके अन्य सहचर भी इस हेतु तैयार हो जाएंगे। जीवन मूल्यों की राह एकदम आसान है, बस उस राह पर चलने के लिए मानव में आत्मविश्वास का होना नितांत आवश्यक है। आत्मविश्वास व्यक्तिगत जीवन मूल्य की श्रेणी में आता है। आत्मविश्वास शरीर में प्रवाहित होने वाले उस रुधिर की तरह है जिसके बिना जीवन नहीं चलता। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। यही आत्मविश्वास जब समाज का सामूहिक संबल बन जाता है तब परिवर्तन की दिशाएं प्रकाशित होती हैं और तब समाज एवं राष्ट्र विकसित होता है जिसका आधार सामाजिक क्रियाशीलता ही होती है। पारस्परिक प्रेम भी जीवन मूल्यों का आधार होता है। निश्चल प्रेम अंतःकरण की शुद्धता में सहायक होता है। प्रेम के कारण ही हमें अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र से लगाव होता है और तभी हम इन सब से अपना तादात्म्य संबंध स्थापित कर इन सब के उत्थान में सक्रिय होते हैं। जीवन मूल्यों का बोध कराने में सत्संगति का भी विशेष महत्व होता है। अच्छे लोगों की संगति में आने पर ही हमें अच्छाई और बुराई का भेद समझ में आता है। इसलिए हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम निरंतर अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। महापुरुषों के जीवन चरित्र अथवा उनके आदर्शों को जानने का प्रयास करें। व्यक्ति को महापुरुषों के जीवन चरित्र से जीवन दृष्टि प्राप्त होती है। उनके उपदेशों पर चलते हुए हम सम्मान का जीवन जिएं। महापुरुषों के हितकारी वचन जीवन के उत्थान में सहायक होते हैं। अपने किसी भी ऐसे कार्य से जो दूसरों को हानिकारक हो निरंतर दूर रहने की कोशिश करें। इस प्रकार अपनाई गई जीवन पद्धति सर्वत्र प्रशंसनीय होती है। ऐसा मूल्य बोध होना न केवल व्यक्ति अपितु परिवार, समाज, राष्ट्र की सीमाओं को लांघकर वैश्विक उन्नति और कल्याण में सहायक होता है।
1: अभी आपने सुना चिंतन, ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज इसके अंतर्गत डॉक्टर स्वप्निल कुमार पांडे से जानिए मधुमक्खी पालन की उन्नत तकनीक के बारे में।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा का विषय है मधुमक्खी पालन की उन्नत तकनीकी। जैसा कि आप जानते हैं मधुमक्खी के बारे में, नाम से ही स्पष्ट है मधु और मक्खी। ये एक ऐसी मक्खी है जो कि शहद का उत्पादन देती है और इसके साथ साथ ये भी एक सामाजिक कीट है। इसके भी एक परिवार में एक रहती है, नर रहता है, श्रमिक और रानी मधुमक्खी रहती है। एक छत्ते में जो है एक ही रानी मधुमक्खी होती है और श्रमिक का काम होता है कि जो कि वो अपना फूल फल से पराग और जो है पॉलन इकट्ठा करे, नेक्टर इकट्ठा करे और जो है शहद का निर्माण करे। इसके साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा करे, मोम का भी निर्माण करे। और नर का जो काम होता है सिर्फ निषेचन की प्रक्रिया करने में जो है होता है। निषेचन की प्रक्रिया करने के पश्चात नर जो है मादा मधुमक्खी से दूर चला जाता है और कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बात हम करते हैं कि मधुमक्खी पालन में कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें जो है हम उनका पालन कर सकते हैं। तो मुख्यतः देखिए 4 से 5 ऐसी प्रजातियां होती हैं जिसमें एक आपका होता है सारंग मधुमक्खी जिसका हम पालन नहीं कर सकते। ये आपकी पानी की टंकी पे, पेड़ की छतों पे, घरों की दीवारों पे काफ़ी बड़े बड़े छते लगते हैं इसके, जो कि 1 फीट 1.5 फीट के आसपास लगते हैं और ये बहुत ही तेज डंक मारने वाली मधुमक्खी होती है। इसकी डंक जो है काफ़ी असहनीय भी होती है। उसके बाद दूसरा हमारे पास मधुमक्खी आती है जो होती है कि भारतीय मोना जिसको हम कहते हैं, इसका हम अच्छे तरीके से पालन कर सकते हैं। और तीसरा होता है हमारे पास इटालियन या फिर यूरोपियन मधुमक्खी जिसका हम कमर्शियल लेवल पे भी पालन कर सकते हैं। यानी ये 2 प्रजातियां जो है हम कमर्शियल लेवल पे अत्यधिक मात्रा में पालन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि

0: उत्पादन की, शहद उत्पादन की, तो हमें जो डोरसाटा है यानी सारंग मधुमक्खी है, इसमें हमें शहद का उत्पादन तो मिलता है। इसमें एक छत्ते में करीब करीब 15 से 20 किलोग्राम या जैसा छत्ता है उसके अनुसार जो है हम शहद का उत्पादन कर सकते हैं। साथ साथ में भारतीय मौना में जो है एक छत्ते में हमें 8 से 10 किलोग्राम जो है शहद का उत्पादन मिलता है, और इसकी तुलना में हमें यूरोपियन बी यानी इटालियन बी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा यानी 20 से 25 किलोग्राम एक छत्ते से हमें शहद का उत्पादन मिलता है। इसके साथ अगर हम बात करें कि छोटी एक मधुमक्खी होती है जिसको लिटिल बी कहते हैं, एपिस फ्लोरिया, वो जो है काफ़ी औषधीय यानी एक सबसे कम जो है उससे शहद का उत्पादन होता है। उसमें 100 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक एक छत्ते से हम शहद का निकालते हैं, जो कि औषधि के रूप में बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको उपयोग में लाया जाता है। और एक और भी मधुमक्खी की प्रजाति होती है जिसको हम कहते हैं ट्राइगोना, इसका भी हम जो है झाड़ियों उड़ियों पे हम प्रयोग करते हैं, और इसको हम कॉमर्शियल लेवल पे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं कर सकते, और क्योंकि ज़्यादा शहद हम अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हम ट्राइगोना या फिर लिटिल बी का हम उपयोग नहीं कर सकते। इसके बाद आती है कि मधुमक्खी की तो हमने पालन किया, उसका चुनाव किया शहद उत्पादन के लिए, बात आती है कि हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो हमें किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के पास या बहुत ज़्यादा जहाँ पर साउंड हो, आवाज़ हो, ऐसे क्षेत्रों में हम पालन नहीं कर सकते। अपने बाग बगीचों में आप रखिए, खेतों में रखिए। इसके साथ साथ अगर खेतों में ऐसा होता है कि खुले खेत में अगर हमारे पास है, जैसे सरसों की हमने फसल लगाई, गेंदे के फूल लगाए, गुलाब की खेती की, या फिर जो भी फूलदार खेती की, सेब का खेती किया, केले की खेती की, जो भी हमने किया, तो वहाँ पे अगर हम रख रहे हैं तो इस तरह से सावधानी पूर्वक रखें कि वक्त से कुछ चोरी होने का भी डर हमारे पास न रहे। ये थोड़ी हमें सावधानी बरतनी पड़ती है, या दूसरे जीव जंतुओं के द्वारा भी हमारे पास जो है उस बॉक्स पे अटैक ना हो, नुकसान ना पहुँचाया जाए। तीसरी बात ऐसी आती है कि हमने कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, चूंकि मधुमक्खी है वो भी एक जीव है, तो जाहिर सी बात है उसमें भी बीमारियों का आक्रमण हो सकता है। तो इसमें प्रमुखता कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे एक नौसेमा बीमारी हो गई, एक फुल ब्रूड बीमारी हो गई, तीसरा जो है इसमें पेचिस भी हो गया, पैरालिसिस भी हो गया, ऐसे करके इसमें बीमारियां लगती है। तो जो एक EFB बीमारी होती है जिसको हम फुल ब्रूड बीमारी कहते हैं, ये जो है मधुमक्खी की पंखों पे अक्सर आपको लक्षण दिखाई देता है। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं कि अमेबी भी बीमारी होती है, वो उनकी जो है मेल्पिगियन ट्यूबल्स, मेल्पिगियन नलिका पे होती है। नोसेमा जो बीमारी होती है उनकी पाचन तंत्र पे होती है, और पेचिस जो होता है दस्त हो जाता है, पैरालिसिस, इसमें भी लकवान बीमारी होती है। ये प्रमुख बीमारियां होती हैं, और इसके लिए एक ज़रूरी होता है कि कुछ एंटीऑक्सीडेंट जो है एंटीबायोटिक हमारे पास जो है हमें प्रयोग करना चाहिए, कि जो बीमारियाँ अगर हो जाती हैं, लग जाती हैं, तो कौन कौन सी हमें दवाएँ का हम दवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए जो है हमें कुछ एंटीबायोटिक जो है प्रयोग में ला सकते हैं। जिस तरह से हम बात करके चले कि एंटीबायोटिक के तौर पे ऑक्सी टेट्रासाइक्लोन नामक एक एंटीबायोटिक होता है, जो कि EFB के इलाज के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि FDA के द्वारा जो है इसको प्रतिपादित किया गया है, इसको अप्रूवल मिला हुआ है।
1: अभी आपने सुना डॉक्टर स्वप्निल कुमार पांडे से मधुमक्खी पालन की उन्नत तकनीक के बारे में। इसी के साथ ही आज की कृषि चर्चा यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी भोपाल है।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् आधुनिके विश्वस्मिन् सामुद्रिकशक्तिः राष्ट्रस्य सामरिक प्रभावस्य प्रमुखा आधारा अस्ति। कोलकातायां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलपोतस्थात्रे तेन स्वदेश निर्मिताः त्रयः नौ सैनिक पूताः INS दुनागिरिः, INS संशोधकः, INS अग्रयश्च भारतीय नौसेनायै समर्पिताः।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: तेन उक्तं यत् एतेषां पोतानां निर्माणे 200+ सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमाः योगदानम् अकुर्वन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी साम्प्रतिकवर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य वैश्विक उत्सवरूपेण आयोजनार्थं विश्वस्य जनान् प्रति कृतज्ञतां व्यक्तवान्। तेन उक्तं यत् योगः विभिन्नेषु देशेषु समाजेषु च स्थितान् जनान् स्वास्थ्यकल्याणयोः समानलक्ष्ये संयोजयति। प्रधानमन्त्री एतत् विश्वस्य कृते प्रेरणादायकम् अस्ति इति अवदत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः कुनो राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मध्यप्रदेशस्य कुनो नेशनल पार्क इत्यस्य राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। सा प्रोजेक्ट

0: चीता इति योजनायाः प्रगतेः समीक्षां करिष्यति तथा च व्याघ्रपालकैः वनकर्मचारिभिः स्थानीयजनैश्च सह संवादं करिष्यति। अधिकारिणाम् अनुसारेण भारते सम्प्रति 500+ व्याघ्राः सन्ति, तेषु अधिकांशतः कुनो राष्ट्रिय उद्याने वसन्ति। भारतम् अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स राष्ट्राणां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातॄणां द्विदिवसीय सम्मेलनस्य आयोजनं करोति। अस्य अध्यक्षताम् अजीत डोभालः करिष्यति। नीट यूजी 26+ पुनर्परीक्षा सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थायां सुसम्पन्ना। राष्ट्रिय परीक्षा अभिकरणस्य अनुसारेण देशे विदेशे च स्थितेषु 44+5,000 परीक्षा केन्द्रेषु लक्षशः अभ्यर्थिनः सहभागिनः अभवन्। दिव्यांग अभ्यर्थिभिः सह सर्वेषां परीक्षार्थीनां सुविधार्थाः विशेष व्यवस्थाः अपि कृताः। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यनेन 12 श्रेण्याः उत्तर पुस्तिका सत्यापनस्य पुनर्मूल्यांकनस्य च परिणामाः क्रमशः प्रकाशिताः। मण्डलेन प्राप्तेषु उक्तं यत् प्राप्तेषु आवेदनपत्रेषु 87.1% परिणामाः घोषिताः सन्ति, अवशिष्टपरिणामाः अपि शीघ्रमेव चरणबद्धरीत्या प्रकाश्यन्ते। छात्राः स्व आवेदनस्य स्थितिं डिजी लॉकर पटले परीक्षितुं शक्नुवन्ति। मण्डलेन निष्पक्षतां शुद्धतां च सुनिश्चित्य सर्वाः प्रक्रियाः सावधानतया सम्पन्नाः इति उक्तम्। छात्राः मिथ्या प्रचारेषु सामाजिक माध्यमेषु प्रसारितान् अप्रमाणित सन्देशान् च न विश्वसन्तु इति केवलं CBSE इत्यस्य आधिकारिक सूचनाः एव अनुसरन्तु इति परामर्शः दत्तः। तमिलनाडु राज्यस्य पेरियापालम क्षेत्रे स्थितायां समुद्री खाद्य निर्यात समवाये अमोनिया वायोः स्रवण घटनायां 7 जनाः मृताः, 77 श्रमिकाश्च प्रभाविताः जाताः। घटनास्थले उत्थार चिकित्सा कार्याणि निरन्तरं प्रचलन्ति। राष्ट्रिय आपद्मोचन बलस्य तथा रासायनिक जैविक परमाणु आपदा विशेष दलानां च सदस्याः त्वरितम् आपद उत्थार अभियानम् आरब्धवन्तः। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशं दत्त्वा 3-सदस्यीयां समितिं नियुक्तवान्। फीफा विश्व कप चषके केप वर्डे उरुग्वे च अनयोः दलयोः स्पर्धा तत्र 2-2 समतायाम् अभवत् इति वार्ता।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्र शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2-दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल

खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन दो पारियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF और सहायक प्रोफेसर के पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:05 हुए हैं।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत प्रस्तुत है हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले जानिए आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा मानद डी लिट से सम्मानित विजय दत्त श्रीधर से उनकी उपलब्धियों, जीवन यात्रा और पत्रकारिता पर की गई चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खां पुरस्कार से के लिए चयनित प्रसन्न सोनी के साथ रंगमंच, रचनात्मकता और अभिनय के सफर पर बातचीत। और इसी कार्यक्रम में सुनिएगा तनाव मुक्त जीवन के लिए योग और माइंडफुलनेस पर योगाचार्य शशि तिवारी और मन तिवारी से की गई चर्चा। आज का कार्यक्रम नमस्कार भोपाल प्रस्तुत करेंगी रूप सी नारंग। प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। प्रातः 9:15 पर लोक संगीत के अंतर्गत सुनिएगा अनुराग त्रिपाठी के गाए बघेली लोकगीत। उर्दू कार्य

कार्यक्रम आईना का वक्त होगा प्रातः 9:30। इसके तहत समाअत फरमाइएगा मेहताब आलम से उनकी तकरीर, मौजू है हैदर बियाबानी के अदबी खिदमात। साथ ही सुनिएगा सुल्ताना खानम हिजाब से अफसाना। ज़िले की चिट्ठी का समय होगा प्रातः 10:00। प्रातः 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला सुनिएगा प्रातः 10:30 पर। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा समरजीत सिंह का राग गुजरी तोड़ी में सितार वादन। और शाम 7:21 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा लोक रंग। ये थी जानकारी आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब जानिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। पूर्वाह्न 11:00 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय होगा दिन के 12:00 और दोपहर 2:30। संग्रहालय से के अंतर्गत दिन के 12:30 पर सुनिएगा धारावाहिक भुवन मोहिनी की चौथी कड़ी। दिन के 1:00 आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पार्किंसन रोग कारण लक्षण और उपचार, इस विषय पर डॉक्टर आशीष दुबे से की गई भेंटवार्ता। अनसुईया बोरलिया के गाए मालवी लोकगीत आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत में दोपहर 1:30 पर। सुगम संगीत आप सुन सकेंगे दिन के 1:45 पर, इसमें सुनिएगा रामस्वरूप साकेत की गाई गजलें। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज के ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति होगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:40 पर आप सुनेंगे आज कल। प्रादेशिक समाचार दर्शन का समय होगा शाम 6:45। रात 8:00 सुनिएगा सुर्खियों में। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले पब्लिक स्पीक आप सुनेंगे रात 9:30 पर। और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी सुनिएगा रात 10:30 पर। ये थी जानकारी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कुनो नेशनल पार्क में चीता परियोजना की प्रगति का जायजा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए दुनिया भर के लोगों का जताया आभार। सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 133 करोड़ रुपए से अधिक की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को दी मंजूरी। और प्रदेश में 26 जून तक हीटवेव, गर्मी और आंधी बारिश वाला मौसम। आज 21 से अधिक जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज श्योपुर जिले स्थित कुनो नेशनल पार्क में सफारी कर चीता पुनर्स्थापना परियोजना की प्रगति का जायजा लेंगी। इसके बाद वे सहरिया जनजाति के चीता मित्रों, चीता ट्रैकर्स, स्थानीय वन्य कर्मियों से मुलाकात करेंगी। कल राष्ट्रपति ने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा किया था, जहां उन्हें बताया गया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं, जिनमें से 49 कुनो नेशनल पार्क में हैं। दौरे के बाद आज राष्ट्रपति श्योपुर से ग्वालियर होते हुए नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कल जबलपुर सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच आत्मीय संवाद हुआ। संस्कृति और श्रद्धा के प्रतीक

0: स्वरूप स्मृति चिन्हों का आदान प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रपति के प्रदेश आगमन पर स्वागत करते हुए मां नर्मदा की सुंदर प्रतिमा भेंट की। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने मुख्यमंत्री को भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की तस्वीर तथा कोणार्क सूर्य मंदिर के विश्व प्रसिद्ध चक्र की प्रतिकृति उपहार स्वरूप प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए दुनिया भर के लोगों का आभार जताया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि योग विभिन्न देशों और क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि दिन आने वाले समय में अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्री क्षमता किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दुनाकिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता। उन्होंने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सीहोर जिले के इछावर और भैरुंदा में आयोजित जन कल्याण शिविर को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 67 ग्रामीण सड़कों के लिए 133 करोड़ रुपए से अधिक के स्वीकृति पत्र सरपंचों को प्रदान किए, जिनसे 36,000 से अधिक ग्रामीण लाभान्वित होंगे। वहीं भैरुंदा में श्री चौहान ने 28.53 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री वैष्णव ने इस दौरान मेगा कोचिंग टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। रेल मंत्री ने बताया कि टर्मिनल लगभग 450 रेलगाड़ियों के संचालन में सक्षम होगा, जिससे परिचालन दक्षता और यात्री सेवाओं में सुधार होगा। उन्होंने सीकर जिले के सुंदरपुरा में एक नए रेलवे स्टेशन के निर्माण की घोषणा भी की, जिससे खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। CBSE ने छात्रों से सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। घर के मुंडेर पर चहचहाती गौरैया अब शहरों से लगभग गायब हो चुकी है, लेकिन पन्ना जिले में एक शख्स ने इस नन्ही चिड़िया को फिर से बसाने की ऐसी मुहिम छेड़ दी है कि सैकड़ों गौरैया अब फिर से चहचहाने लगे हैं। आज सुनिए कि कैसे एक इंसान की संवेदनशीलता ने पूरे गांव को गौरैया का सुरक्षित आशियाना बना दिया। विस्तार से जानकारी दे रहे हमारे पन्ना संवाददाता दिलीप कुमार शर्मा।
3: पन्ना के पटना तमोली गांव में ग्राम पंच समिति अध्यक्ष अजय चौरसिया द्वारा बरसों से गौरैया संरक्षण के लिए अनूठा प्रयास किया जा रहा है। गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए दाना और पानी की भी नियमित व्यवस्था की जाती है। इसका लाभ केवल गौरैया ही नहीं बल्कि क्षेत्र के कई अन्य पक्षियों को भी मिल रहा है।
4: मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी छोटी सी मुहिम न जाने कितने पक्षियों की जिंदगी को संवार सकती है। प्रकृति संरक्षण का कार्य बड़े संसाधनों से नहीं बल्कि संवेदना से हो सकता है। आज सैकड़ों बच्चों ने उन पक्षी घरों में जन्म लेकर के चहचहा रहे हैं और उनकी चहचहाहट से पूरा घर आंगन गुलजार

0: रहा है।
1: इस पहल का सकारात्मक प्रभाव पूरे गांव में दिखाई देने लगा है। वन मंडलाधिकारी दक्षिण पन्ना वन मंडल अनुपम शर्मा का मानना है।
2: अजय चौरसिया जी जो कि पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता भी हैं, इन्होंने जो गोल वाली एक लौकी होती है उससे गौरैया के घोंसले बनाने का उन्होंने प्रण लिया और कई प्रयास भी किए। हर घोंसलों में गौरैया आई और उन्होंने दो दो तीन तीन बच्चे भी दिए। तो आज की डेट में ये काफी एक सक्सेसफुल मुहिम के तौर पर पटना तमोली में है।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए पन्ना से मैं दिलीप कुमार शर्मा।
3: प्रदेश पुलिस ने राज्य भर में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाते हुए पिछले 10 दिनों में करीब 2,90,00,000 रुपए के नशीले पदार्थ और अन्य संपत्ति जब्त की है। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर कल प्रदेश के 14 अंचलों में संस्कृति विभाग के तत्वावधान में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में खेले गए इस मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका के मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 26 जून तक हीटवेव, गर्मी और आंधी बारिश वाला मौसम बना रहेगा। मानसून के नहीं आने और प्री मानसून गतिविधि कम होने से उमस और गर्मी बढ़ गई है, जिसका असर पिछले 2 दिन से जबलपुर संभाग में लू के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में आज तेज आंधी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में 28 से 30 जून तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। आगरमालवा में दिव्यांग और वरिष्ठों के लिए आज से 25 जून तक जिले के विभिन्न स्थानों पर चिन्हांकन शिविर आयोजित होंगे। नीमच में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 कल जिले के 2 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। वहीं धार जिले में भी 3 निर्धारित केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से हुई। जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। अशोकनगर पुलिस को 3 जिलों में सक्रिय लूट गैंग का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है, जिसमें से एक आरोपी गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गुना में जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन हनुमान टेकरी परिसर में किया गया। वहीं नर्मदापुरम में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल पूरा जिला योगामय नजर आया। बड़ी संख्या में नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रूपसी नारंग और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 7:20 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। वैसे ख्याल बहुत ज़रूरी चीज़ है, चाहे अपना हो, अपनों का हो, पशु पक्षियों का हो, पर्यावरण का हो या रोज़मर्रा के जीवन का। और ऐसे में तनाव मुक्त रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने चर्चा करी योगाचार्य शशि तिवारी और मन तिवारी से। साथ ही रंगमंच के छात्र अपनी फील्ड में कैसे बेहतर बन सकते हैं जाना चर्चित अभिनेता प्रसन्न सोनी से। साथ ही पत्रकारिता के विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए विजय दत्त श्रीधर जी से चर्चा करी। आज के इस कार्यक्रम में इन सब पर चर्चा हुई

और होगी, साथ ही सुंदर सुंदर गीत भी होंगे। तो चलिए, गर्मा गर्म चाय की चुस्की आपका इंतजार कर रही है। दिन की शुरुआत करते हैं इस सुंदर से गीत से। गीत सुनिए और लुत्फ उठाइए।

0: दोस्तों, ये जो गीत आपने सुना, इसे गाया है फरहान अख्तर, अमिताभ बच्चन ने, और फिल्म का नाम है वजीर। अब बारी है देश और दुनिया से खबरों की, और आज की अपडेट के मुताबिक देश को राहत देने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून 2 हफ्ते बाद अब आगे बढ़ सकता है। देश में सामान्य से 42% कम बारिश। भोपाल के 32 सेंटर्स पर हुए एग्जाम, नीट से कठिन रहा रीनीट। भारतीय महिला T20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रविवार को इतिहास रच दिया। हरमनप्रीत 200 T20 इंटरनेशनल खेलने वाली पहली क्रिकेटर बनी। तो ये थी देश और दुनिया से अपडेट्स। अब बारी है एक गीत की, गीत सुनिए और लुत्फ उठाइए।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the

0: दोस्तों, ये जो गीत आपने सुना इसे गाया है लता मंगेशकर और एस पी बालसुब्रमण्यम ने, और फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। संकल्प, समर्पण और सतत प्रयास ही किसी व्यक्ति को विशिष्ट पहचान दिलाते हैं। और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्हें हाल ही में पत्रकारिता और शोध के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उन्हें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा मानद डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। आइए सुनते हैं वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, शोधकर्ता विजयदत्त श्रीधर जी से की गई चर्चा।
1: नमस्कार, मैं विजयदत्त श्रीधर, ज्ञान तीर्थ सपने संग्रहालय के संस्थापक। मुख्य धारा की पत्रकारिता में काम करते हुए मैंने 3 दशक से ज्यादा समय गुजारा है।
0: सर, सबसे पहले आपको मानद डीलिट के लिए बहुत बहुत बधाई। जब आपको इस सम्मान की सूचना मिली तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी?
1: जब ये डीलिट की उपाधि के बारे में हमको जानकारी मिली, चिट्ठी आई, वहाँ तो खुशी हुई। विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी उपाधि होती है डीलिट की, तो और फिर उस विश्वविद्यालय से मिले जिस विश्वविद्यालय से मैं पढ़ा हूँ, हमारी बड़ी उपलब्धि है ये। तो जब इसी श्रृंखला में हमको ये खबर मिली कि ये हो रहा है, तो मुझे लगा जो किया गया कार्य है, यदि उसमें सार्थकता है, उसमें सकारात्मकता है, उसमें रचनात्मकता है, तो समाज आंखें बंद करके नहीं बैठा है, ये देख रहा है आपको, परख रहा है आपको, और जब उसकी कसौटी पर आप खड़े उतर जाते हैं तो आपका मूल्यांकन भी करता है। इस डीलिट की उपाधि को मैं उसी भाव से देख रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरा मूल्यांकन किया।
0: अब जैसे आज के जो युवा पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं या इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उन्हें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
1: एक तो ये देख लें कि उसके ग्लैमर से प्रभावित होकर ना आए, ये बड़ा संघर्ष का काम, चुनौतीपूर्ण काम है। पत्रकार जो भी लिखे, प्रमाण और परिणाम का ध्यान रखते हुए लिखे,

0: पहले प्रमाण कि आपके पास प्रमाण है कि नहीं, वो सच्चे लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, तो कभी खबर का खंडन नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये, दूसरा परिणाम के बारे में आपको लिखते समय सावधान रहना चाहिए, सोचना चाहिए कि प्रमाण और परिणाम। दूसरी बात अध्ययनशीलता, पत्रकारों को यदि भविष्य में अच्छा बनाना है, अच्छा पत्रकार बनना है, अच्छा लेखक बनना है, अच्छा विश्लेषणकर्ता बनना है, तो उसे खूब पढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं कि आप यदि 1000 शब्द पढ़ोगे तो आप में 100 शब्दों का प्रयोग करने का सलीका आ जाएगा। हर पत्रकार के पास उसकी घर की टेबल पर भी और दफ्तर की टेबल पर भी एक डिक्शनरी होना चाहिए, शब्दकोश। खाली समय मिले तो आप पलट जाइए उसको, तो आपका शब्द भंडार बढ़ेगा। मुहावरा और लोकोक्तियों का, आप जिस इलाके में काम करते हैं वहाँ प्रचलन में बहुत सारे मुहावरे होंगे, लोकोक्तियाँ होंगी, कहावतें होंगी, वो हमारी संस्कृति का प्रतीक होती है। तो आप खूब पढ़ें, एटलस, शब्दकोश, एनसाइक्लोपीडिया, इनको देखते रहें, तो आपका जो विचार पक्ष है, जो आपका ज्ञान पक्ष है, वो समृद्ध होगा। जब ज्ञान पक्ष समृद्ध होगा तो आपकी पत्रकारिता निखरेगी। पत्रकारिता का भविष्य हमेशा उज्ज्वल था, आगे भी उज्ज्वल रहेगा। छपे और लिखे हुए शब्द का कोई विकल्प नहीं है, इसका महत्व क्योंकि इसमें प्रामाणिकता है, इसमें अध्ययन है, इसमें पृष्ठभूमि का भी विशेषण है और इस परिणाम का भी विशेषण है, तो इसका महत्व हमेशा बना रहने वाला है। कि सावधान, केवल आपको अपने आप को तैयार करना है उसके लिए। इसमें जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ।
1: अंत में हमारे श्रोताओं और पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए आपका कोई संदेश?
0: मेरी जो अभिलाषा है कि पत्रकारिता कल जिस तरह से समाज दिग्दर्शक बनी थी, समाज की प्रेरणा के स्रोत बनी थी और समाज के साथ खड़ी थी, वही युग हमें आगे भी नसीब हो, आगे भी उसका हमको अनुभव हो। और यह काम पत्रकारिता की नई पीढ़ी को करना है। नई पीढ़ी में बहुत अच्छे पत्रकार भी आ रहे हैं कई, उन पत्रकारों को हमें एक रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। और तब जो पत्रकारिता होगी तब वो सृजन की, निर्माण की, परिष्कार की, परिणाम की वो पत्रकारिता होगी और उस पत्रकारिता से हमेशा समाज का हित होगा।
1: दोस्तों, ये थी विजयदत्त श्रीधर जी से की गई चर्चा। अब बारी है गीत की, गीत सुनिए और आनंद लीजिए।

0: चेहरे पर मुस्कान सजाकर, दुनिया के गमों को छिपाकर, पर्दे के उस पार एक नई दुनिया बनाता हूँ। जनाब, मैं अभिनेता हूँ, हर किरदार निभाता हूँ। दोस्तों, एक ऐसी ही शख्सियत से हमने चर्चा करी जिन्होंने रंगमंच को केवल मनोरंजन से नहीं बल्कि समाज, संवेदनाओं और समकालीन मुद्दों से जोड़ा है। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने लेखन, अभिनय और निर्देशन तीनों क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। भोपाल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा का परचम लहराने वाले प्रसन्न सोनी जी को हाल ही में संगीत नाट्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रसन्न जी को ढेरों बधाई। आइए दोस्तों, आपको सुनाते हैं उनसे की गई चर्चा।
1: नमस्कार, मेरा नाम प्रसन्न सोनी है। मैं एक रंगकर्मी हूँ, अभिनेता, निर्देशन और नाट्य लेखक भी हूँ, साथ में प्रकाश परिकल्पनाएं भी करता हूँ स्टेज पर।
0: उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार के लिए चुने जाने की खबर मिली तो आपका पहला रिएक्शन क्या था?
1: पहला रिएक्शन तो अच्छा ही लगा, खुशी हुई। और मैं ट्रेन में था तो नेटवर्क नहीं था। इसके पहले मुझे एक फ़ोन आया और मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे बधाई दी। तो मैंने कहा दादा लिस्ट बोले भेजता हूँ, पहले नेटवर्क चला गया तो मेरे पास थी नहीं तो मैं देख नहीं सका। फिर मैंने अपने वाइफ से बीच में बात हो रही थी, मैंने शेयर किया तो मैंने कहा देख लेना क्योंकि नेटवर्क है नहीं, वेबसाइट नहीं खुल रही, तो उसको भी नहीं मिल रहा था। फिर लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कन्फर्म हो गया, फ़ोन पे खुल गया तो अच्छा लगा, खुशी हुई कि चलो एक रिकॉग्निशन मिला अपने काम को जो हम करते हैं उसको, एक क्योंकि पब्लिक का भी सपोर्ट बढ़ता है जब गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सम्मान मिलता है तो पब्लिक भी उसको सीरियसली लेती है, लोग भी सीरियसली लेते हैं, और अच्छे से काम कर पाएँ तो बहुत बढ़िया है। हाँ, लेकिन ये एक पड़ाव है और अच्छा लगा, खुशी तो हुई।
0: अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि भोपाल की रंगमंच यात्रा से राष्ट्रीय सम्मान तक का सफ़र कैसा रहा? ऐसा कोई पल है जो आज भी यादगार हो?
1: हाँ, बहुत सारे ऐसे पल हैं जो याद आते हैं, खासकर अपने गुरु अलकनंदन जी के साथ गुजारा हुआ समय। वो कितने ग्रेट टीचर थे या कितने बढ़िया लेखक भी थे, वो बहुत बढ़िया कवि भी थे, तो उनसे भी सीखने को मिला। और रंजीत कपूर साहब से जुड़ना एक बड़ा सौभाग्य का मेरे पास कुछ क्षण मिला मुझे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल में जब मैं पहले साल गया तो पहले ही वर्ष जो है रंजीत कपूर साहब ने मैसो प्रोडक्शन किया, और एक टूर हमने किया उत्तर प्रदेश का जिसमें वो कपूर साहब हमारे साथ ट्रेवल करते थे, तो वो एक महीना शायद बहुत मतलब अलग एक्सपीरियंस था और लर्निंग था, क्योंकि रंजीत कपूर साहब बहुत बड़े राइटर हैं और बड़े उन्होंने बहुत सारी अच्छी फिल्में लिखी, नाटक लिखे, तो उनसे राइटिंग स्किल पर मुझे सीखने को, जानने को बहुत सारी चीज़ें मिली, क्योंकि ट्रैवल भी था, आप शहर दर शहर बदल रहे हैं तो वो अनुभव भी शहर के जुड़ते जाते हैं, तो शायद बहुत समृद्धि वो समय, मैं उस समय को बहुत याद करता हूँ कि वो अगर वो समय नहीं आता तो शायद ये होता ना कि आपको पता ही नहीं चलता आपको करना क्या है, तो वहाँ से एक रास्ता और क्लियर दिखने लगा।
0: सर, आप लेखक, अभिनेता और निर्देशक, तो आपने तीनों भूमिकाएँ निभाई हैं, तो इनमें से कौन सी भूमिका आपके सबसे करीब है और क्यों?
1: भूमिकाएँ तीनों ही अपनी हैं, तीनों काम ही अच्छे लगते हैं, लेकिन लेखन कह सकती हैं कि मुझे ज़्यादा खुशी देता है। उसका कारण यह है कि वहाँ मैं पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रेशर नहीं होता, और ऐसा भी नहीं होता कि अब स्क्रिप्ट कुछ दिमाग में आया तो आप आराम से सोच के बार बार बदल सकते हैं। और निर्देशन में एक आज़ादी सारी रहती है, लेकिन फिर भी अभिनेता की एक सीमा है, उसके हिसाब से निर्देशन करना है, स्क्रिप्ट की अपनी सीमा है, उसके हिसाब से ही आपको करना है। यहाँ तो आप अपनी कल्पना को जितना उड़ान दे सकें तो एक ही स्क्रिप्ट को आप कई तरह से लिख सकते हैं, कई तरह से सोच सकते हैं, एक ही विचार को एक कैरेक्टर से कहलवा सकते हैं, 10 से कहलवा सकते हैं, और नई रचना करना तो शायद वो खुशी देता है कि इतने चरित्र कहीं तो होंगे, कल्पना में है लेकिन ऐसे लोग दुनिया में होंगे, तो वो मुझे एक अवसर मिलता है कि इतने चरित्र अलग अलग तरह के मैं रचूं।

0: पाता हूँ।
1: सर, आज के जो युवा कलाकार जो थिएटर या अभिनय में करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहते हैं?
0: मेरा अपना मानना यह है, मेरे अपने अनुभव से जो मैंने पाया है, कि आप अपना 100% दीजिए किसी भी फील्ड को, तो वो फील्ड आपको कुछ ना कुछ पलट के ज़रूर देता है, तो उसमें आप बेकार तो नहीं होंगे। तो आगे बढ़ना चाहिए जिनकी भी इच्छा हो, और अच्छे प्रशिक्षण के साथ बढ़ना चाहिए, और अच्छे काम को देखना, लगातार सीखना, अच्छा संगीत, अच्छा साहित्य, इन सब से जुड़कर, और अपने आप को जितना तैयार कर सके वैसी तैयारी रखिए कि जब आपको कोई अवसर मिले तो आपसे फिर कोई जो है 20 ना हो पाए, आप ही 20 रहे, वहाँ प्रयास करने चाहिए।
1: जानना चाहेंगे कि दर्शक और श्रोता आपको आने वाले समय में किस नए रूप में देख सकते हैं?
0: अभी मैं लगातार लिख रहा हूँ, एक नाटक और लिख रहा हूँ अभी, तो वो मैं जल्द स्टेज पर लाऊंगा, और इसके अलावा एक सीरीज है शायद आ जाएगी इसी साल, उसमें एक छोटा सा किरदार किया है, वो भी देखने को मिलेगा दर्शकों को।
1: तो ये थी प्रसन्न सोनी जी के साथ चर्चा। अब बारी है गीत की, गीत सुनिए और आनंद लीजिए।

0: दोस्तों, ये जो गीत आपने सुना है इसे गाया है शिल्पा राव ने और फिल्म का नाम है लेडीज वर्सेस रिकी बहल। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ और संतुलित रहना आसान नहीं है। ऐसे में योग एक ऐसी प्राचीन पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। योग केवल शारीरिक फिटनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, एकाग्रता और सकारात्मक सोच को भी बढ़ावा देता है। और इसी को विस्तार में जानने के लिए हमने चर्चा करी योगाचार्य शशि तिवारी और मन तिवारी से। आइए सुनते हैं।
1: मेरा नाम शशि तिवारी है और मैं 25-30 सालों से मैं योगा सिखाती हूँ।
2: नमस्ते, मेरा नाम मन तिवारी है और मैं अपने मम्मी से इंस्पायर होके आई हूँ योग के लिए। हमेशा उनने मुझे एक सहारा दिया है और एक पुश दिया है।
3: तो सबसे पहले शशि जी, आपसे कुछ सवाल।
4: हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग को आप कैसे परिभाषित करेंगी? क्या ये एक सिर्फ शारीरिक व्यायाम है या शरीर और मन के संतुलन की एक पूरी पद्धति है?
1: योग मन, आत्मा और शरीर का जो, जब हमारा मन दुखी होता है हम योग करते हैं तो वो दुख को हम दूर करते हैं। जब हम योग करते हैं तो हम जितनी भी हमारी निगेटिविटी होती है उसको हम दूर करते हैं। लोग बोलते हैं ना, योगा कर्मशु कौशलम, योग करने से कर्म की कुशलता बढ़ती है। और एक और है, हयम दुखम अनागतम, जब हम योग करते हैं ना तो उस दुख को हम दूर कर रहे हैं।
4: अब आप हमें बताइए कि तनाव और चिंता हमारे शरीर और मन में कैसे काम करते हैं और योग उन्हें कम करने में कैसे मदद करता है?
1: तनाव और चिंता हमारे मन को अशांत और जो शरीर को थका थका महसूस करवाते हैं, तो हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं? योग के जरिए। जब हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारा मन शांत और हम तनाव से दूर होते हैं। हम जो भी कार्य करें उसे पूरे ध्यान और अवेयरनेस के साथ करें। जो भी हम काम करते हैं उसमें अगर हम 50% देते हैं तो क्या वो सही है? जब हम कोई भी काम करें 100% देते हुए करें। और जैसे हम खाना खाते हैं तो लोग बोलते हैं खाना खाओ तो बिल्कुल टीवी नहीं देखना, ये नहीं देखना, चलो तो चलना ही है। आप इधर उधर ध्यान भटकाते हुए चलेंगे, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, उसमें गाड़ी चलाते हुए शीशे में अगर हम बार बार पीछे देखेंगे तो क्या होगा? तो जब हम पीछे देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। तो आपको पूरा 100% देना है, पूरा अवेयरनेस के साथ रहना, पूरे जागरूकता के साथ, ध्यान के साथ। तो हम कैसे रहेंगे? वर्तमान में रहेंगे तभी ये संभव हो सकता।
3: और अब कुछ सवाल मन तिवारी जी से।
4: आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या है और क्या वह उम्र के साथ बदलता है?
2: पीस ऑफ माइंड जब आप खुश रहते हैं, जब आपका शरीर रिलैक्स होता है, मन पूरी तरह वर्तमान में रहता है, सांसें स्थिर रहती हैं। योग हमें यही हेल्प करता है, जहाँ पे हम एक संतुलन बना पाते हैं, जहाँ हम एक सामंजस्य बना पाते हैं और उस सामंजस्य को बनाने में वो मदद करता है। एज के साथ हमने देखा है हमें अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं और हम अपने से छोटे लोगों को ये बोलते हैं कि ध्यान से रहना, ये काम मत करना। हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हम एक एक्सपीरियंस ले चुके हैं। तो ऐसे ही जब आप योग करते हैं तो आपको एज के साथ साथ, अगर आप पहले से चालू कर देंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं अगर आपको योग बाद में मिलता है तो भी आपको एज के साथ साथ पता पड़ने लगता है कि क्या आपके लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी।
4: क्या आप मानती हैं कि योगा या माइंडफुलनेस से फैमिली बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती है?
2: बिल्कुल, योग आपको स्थिर कर रहा है तो ये आपको एक बॉन्डिंग में मदद करता है। क्योंकि आप जब 100% अपना देते हैं, आप पूरे माइंडफुलनेस के साथ वर्तमान में रह के काम करते हैं, योग करते हैं, तो आपका पेशेंस इंक्रीज होता है, इमोशंस को आप कंट्रोल कर पाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाती है, आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाते हैं। और जब आप इमोशंस को कंट्रोल करने लगते हैं तो आप रिएक्ट कम करते हैं, आप सुनते ज्यादा हैं सामने वाले को, और उस कारण आपके जो शब्दों के प्रयोग हैं वो और अच्छे हो जाते हैं, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और आप पीसफुली जी पाते हैं।
4: आज की जनरेशन और पुरानी जनरेशन के स्ट्रेस हैंडल करने के तरीके में सबसे बड़ा फर्क क्या है?
2: आजकल सब डिजिटली अपना स्ट्रेस को रिलीव करने में लगे हुए हैं और

0: देखते हैं कि कुछ भी दिक्कतें होती हैं, भले ही वो आज की जनरेशन हो, और अब तो थोड़ी पुरानी जनरेशन भी जाने लगी है डिजिटली, वो ऑनलाइन सर्च करते हैं कि ये चीज मेरी कैसे दूर हो सकती। जबकि अगर हम अपने माता पिता को देखेंगे या पहले के लोगों को देखेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो हमें पता पड़ता है कि वो अपने चाचा, मामा, मामी, जो भी उनका रिलेटिव हो, माता पिता हो, उनसे वो पूछते थे कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं क्या करूं। तो मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन इज द की। आप कम्युनिकेट जितना करेंगे आपको अच्छा ही सोल्यूशन मिलने वाला है।
1: और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि श्रोताओं के लिए आपका कोई संदेश।
2: मेरा संदेश ये है कि आप अपने लिए समय निकालें, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, योग करें, सूर्य नमस्कार करें।
0: मुझे ऐसा लगता है जो मेरी माताजी ने कहा है, नाड़ी शोधन और सूर्य नमस्कार करें, वो आप अपने दिनचर्या में जरूर डालें, क्योंकि आप जब जल्दी उठेंगे, वॉक करेंगे, रनिंग करेंगे, या 15 से 20 मिनट भी अगर खुद को देंगे योग करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण है मेडिटेट करने के लिए, तो आप फिजिकली भी फिट रह पाएंगे और मेंटली भी।
2: स्ट्रेस फ्री जीवन की चाबी है योग।
0: रोज करो योग, रहो निरोग।
1: तो ये थी शशि तिवारी और मन तिवारी से योग के जरिए तनाव मुक्त जीवन पर चर्चा। अब आ रही है गीत की

0: दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। मैं तेनु फिर मिलांगी आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल पर। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और रूपसी नारंग को दिल से दुआओं में याद रखिएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, ये आकाशवाणी भोपाल है। सुनिए समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
3: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
2: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
3: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए

0: युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
0: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं।

0: बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
1: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
2: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
3: ऐसा करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
4: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्षविहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
5: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
6: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों

0: सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है, शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर ये परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज स्ट्रॉन्ग मैरिटाइम केपेबिलिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एंड इंटर इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host 2-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. US Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड दीज रिमार्क्स आफ्टर कमिशनिंग 3 इंडिजिनसली बिल्ट इंडियन नेवी प्लेटफॉर्म्स, INS दूनागिरी, INS संशोधक एंड INS अग्रय एट द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन कोलकाता यस्टरडे। Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying, and anti-submarine warfare.
3: जब समुद्री विरासत की बात होती है, तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी

हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। जिसे लेकर आज आपके साथ हूं मैं आकांक्षा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार श्रोताओं। कल मैं बाजार से गुजर रही थी तो प्लास्टिक के मुखौटों की एक दुकान दिखी। मन में अचानक एक ख्याल आया कि वो दुकानदार तो साल में एकाध बार त्योहारों पर मुखौटे बेचता है, लेकिन इस दुनिया के बाजार में तो लोग मुफ्त में रोज नए चेहरे लगाकर घूम रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उसी मशहूर बीमारी की जिसे कहते हैं दिल में कुछ और जुबां पर कुछ और। आज खोलेंगे इन दोहरे चेहरों के वाले किरदारों की परतें, तो आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए आकाशवाणी भोपाल के साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम सुरमई सवेरा। श्रोताओं, जब कोई सिर्फ औपचारिकता से हाल पूछे तो वो भी एक मुखौटा ही है। लोग अक्सर पूछते हैं खैरियत है, लेकिन क्या वो वाकई जानना चाहते हैं या बस ये एक रस्म है। तो चलिए इस रस्म को तोड़ते हैं और दिल से दिल की बात करते हैं।

आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सवेरा, जिसमें हम बात कर रहे हैं मुखौटों की। श्रोताओं, आज के दौर की हकीकत यही है कि लोग सिर्फ फिल्मों में नहीं, असल जिंदगी में भी एक्टिंग करते हैं और अपने चेहरे पर एक मुखौटा लिए रहते हैं। श्रोताओं, कई बार हंसाने और सोचने पर मजबूर कर देता है ये मुखौटा, क्योंकि इसकी कई वैरायटी भी होती हैं। जी हाँ, जैसे तारीफ करने वाला मुखौटा और हमदर्दी वाला मुखौटा। श्रोताओं, अगर आपने रणबीर कपूर की फिल्म देखी होगी तमाशा, जो इसी मुखौटे के कॉन्सेप्ट पर ही टिकी हुई थी। रणबीर कपूर का किरदार एक ऐसे ही मुखौटे के बोझ तले दबा था। हम में से हर कोई कभी ना कभी वो इंसान बन सकता है जो दुनिया के लिए काम तो कर रहा है, लेकिन अंदर से कुछ और ही खोज रहा होता है। क्या आपने भी अपनी खुशी का तमाशा बना रखा है?

0: शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: तो श्रोताओं, अब बात खुद को बचाने की। खुद को ऐसे लोगों से बचाना जो अपने चेहरे पर मुखौटा लगाए हुए रहते हैं, जो अंदर कुछ और बाहर कुछ और होते हैं। और जब आपको पता चल जाए कि सामने वाले के पास दो चेहरे हैं, तो उनसे लड़िए मत। बस एक बात याद रखिए, उनकी बातों को दिल पर नहीं सिर्फ कान पर लेना है हमें। दूरी बना लीजिए ऐसे लोगों से, क्योंकि नकली सिक्के और नकली इंसान वक्त आने पर बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से

कराता है जब हम किसी ऐसे इंसान के साथ होते हैं जो मुखौटा पहने होता है। हम अक्सर उन लोगों को अपना बना लेते हैं जो मुस्कुरा तो रहे होते हैं लेकिन उनका दिल कहीं और होता है। क्या आपने भी कभी किसी ऐसे अजनबी को अपना माना है जो सिर्फ मुखौटा लेकर आपके पास आया था?

श्रोताओं, मुखौटा पहनने या दिल की बात जुबान पर ना लाने का हमेशा मतलब धोखेबाजी नहीं होता। इसके पीछे कई सकारात्मक और व्यवहारिक वजह भी होती हैं। तो अब बात उन सकारात्मक पहलुओं की। श्रोताओं, कई बार हमारी मुलाकात ऐसे लोगों से हो जाती है जो चेहरे पर मुखौटा लिए घूमते हैं। हमें गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है उन लोगों पर, है ना? लेकिन ठहरिए, सिक्के का एक और पहलू भी है। क्या हर मुखौटा गलत होता है? जी नहीं। कैसे, इसे हम जानेंगे इस गीत के बाद।

श्रोताओं, हर मुखौटा गलत नहीं होता। इसका सीधा उदाहरण है एक डॉक्टर। ज़रा सोचिए, वो जिनके घर में जाते हैं जहाँ बहुत परेशानी चल रही है, लेकिन जब वो मरीज़ के सामने जाते हैं तो अपने चेहरे पर सब ठीक हो जाएगा वाला एक शांत मुखौटा पहन लेते हैं। क्यों? ताकि मरीज़ की हिम्मत ना टूटे। तो श्रोताओं, हर मुखौटा फरेब नहीं होता। कुछ मुखौटों के पीछे जिम्मेदारी, परवाह और दूसरों की खुशी भी छुपी होती है। तो चलिए आज मुखौटे के इस पॉजिटिव चेहरे से भी मुलाकात करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सवेरा, ये जारी रहेगा कुछ ही पलों बाद। ये आकाशवाणी भोपाल है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्योपुर जिले स्थित कुनू नेशनल पार्क में सफारी कर चीता पुनर्स्थापना परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। वे शहरी

जनजाति के चीता मित्रों, चीता ट्रैकर्स और स्थानीय वन्यकर्मियों से मुलाकात भी करेंगी। वहीं राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया, जहां उन्हें बताया गया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं, जिनमें से 49 कुनू नेशनल पार्क में हैं। दौरे के बाद आज राष्ट्रपति श्योपुर से ग्वालियर होते हुए नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्री क्षमता किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री ने कल कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों को समर्पित करते हुए कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। शेष परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। प्रदेश भर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। राज्य पुलिस ने पिछले 10 दिनों में 2,90,00,000 रुपए मूल्य के नशीले पदार्थ और अन्य संपत्ति जब्त की है। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 4 दिन तक जबलपुर, रीवा, सागर संभाग के जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। आज प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है। और महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9 बजे हैं। कार्यक्रम सुरमई सवेरा में आपका एक बार फिर स्वागत है। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम बात कर रहे हैं एक पॉजिटिव मुखौटे की। जी हाँ, ज़रा सोचिए, अगर हर इंसान अपने मन में आने वाली हर कड़वी बात, हर गुस्सा सामने वाले के मुंह पर सीधे सीधे बोलना शुरू कर दे, तो क्या कोई रिश्ता टिक पाएगा? कभी कभी हम मन में गुस्सा होने के बावजूद सामने मुस्कुराते हैं ताकि घर का माहौल ना बिगड़े या किसी का दिल ना दुखे। इसे दोहरापन नहीं, मैच्योरिटी कहते हैं। और ऐसा मुखौटा लगाए रखना अच्छी बात है।

और श्रोताओं, अब बात हिम्मत और हौसले वाले मुखौटे की। जब एक पिता ऑफिस की टेंशन और थकान के बाद घर लौटता है तो दरवाजे पर अपनी सारी परेशानियां छिपाकर बच्चों के लिए मुस्कुराता हुआ चेहरा ले आता है। वो अंदर से टूट रहा होता है लेकिन बाहर सुपरमैन का मुखौटा पहन लेता है। यहाँ मुखौटा धोखा नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए सुरक्षा कवच है जो जरूरी है।

श्रोताओं, हर कोई हमारी ज़िंदगी की हर किताब को पढ़े ये ज़रूरी नहीं। अपनी भावनाओं को काबू में रखना और हर किसी के सामने अपने दुख का तमाशा ना बनने देना भी एक कला है। यहाँ चेहरे का संयम दूसरों से खुद को सुरक्षित रखने का एक तरीका होता है। और इसके लिए हमें लगाना होता है अपने चेहरे पर एक मुखौटा, जिससे हम अपनी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में संतुलन बनाए रखें।

तो श्रोताओं, आज की हमारी इन बातों का सार यही है कि चेहरे पर मुखौटा होना हमेशा बुरा नहीं होता। देखना ये है कि उस मुखौटे के पीछे की नीयत क्या है। अगर नीयत किसी को चोट पहुंचाने की है तो वो मुखौटा गलत है, लेकिन अगर नीयत किसी का हौसला बढ़ाने की या किसी रिश्ते को बचाने की है तो वो मुखौटा खूबसूरत है। आपकी इस बारे में क्या राय है? सोचते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी भोपाल। इसी बात के साथ कार्यक्रम सुरमई सवेरा समाप्त करने की आकांक्षा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सवेरा। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में आज आप सुनेंगे अनुराग त्रिपाठी के गाए बघेली लोकगीत। तो कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए ये देवी गीत, स्वर अनुराग त्रिपाठी का है।

अनुराग त्रिपाठी के स्वर में अभी आपने सुनी गारी। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए बधाई गीत, स्वर अनुराग त्रिपाठी का है।

अनुराग त्रिपाठी के गाए बघेले लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम आईना।

मैदान में लिखने वालों की कमी इब्तिदा से रही है। अदब इतफाल में जो नाम मुल्क व बैरून मुल्क में मशहूर हुए उनमें साबिर संभली, डॉक्टर रऊफ कैर, फिरोज बख्त अहमद, शाह ताज खान, मसूद जावेद हाशमी, सुरैया जबीन, किश्वर सुल्ताना, जफर फारूकी, आतिका नूर, मजीद सिद्दीकी, डॉक्टर एम ए कदीर, सत्तार फैजी के नाम नुमाया हैं। लेकिन अगर इसमें सैयद हैदर शाह यानी हैदर बयाबानी का नाम शामिल न किया जाए तो बर्रसगीर में बच्चों के अदब का बाप मुकम्मल नहीं होगा। हैदर बयाबानी की विलायत 1 जुलाई 1948 को महाराष्ट्र के तारीखी मकाम एलिचपुर के करज गांव में नानिहाल में हुई थी। ये मकाम सिंधी औलिया तारीख के हवाले से मशहूर है। राजा ईल के बसाए हुए शहर में उर्दू अदब के इब्तदाई नकुश भी मिलते हैं। ईसा जिंदुल्ला, शेख सलमान सैफी वो शायर हैं जिन्होंने अहद अकबर में उर्दू शायरी की है और इनके नकुश मिलते हैं। 19 जनवरी 2022 को दार फानी से दार बका को कूच किया और अपने आबाई कब्रस्तान रम्मू का तख्ता में सुपुर्द खाक हुए। खास बात यह है कि हैदर बयाबानी के खानदान में कभी कोई अदीब या शायर पैदा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपने वसूल मुताला को रहनुमा बनाकर अदब इतफाल में ऐसी शायरी की कि उनकी शायरी बच्चों के अदब में निसाब का हिस्सा बन गई। हैदर बयाबानी की इब्तदाई तालीम 4th जमात तक प्राइमरी स्कूल कासिदपुर आचलपुर में, उसके बाद उन्होंने 5वीं जमात से हाई स्कूल तक की तालीम जिला परिषद स्कूल अचलपुर से हासिल की। 11वीं और 12वीं की तालीम उन्होंने रहमानिया स्कूल से हासिल की। हैदर बयाबानी ने जगदम्बा विद्यालय से बीए और बीएड की डिग्री हासिल की और दरस व तदरीस के पेशे से वाबस्ता हुए, लेकिन स्कूल की पाबंदियां उन्हें रास नहीं आईं और वो चाहते थे कि आज़ाद माहौल में, आज़ाद फ़जा में बच्चों की नफ्सियात को सामने रख कर अदब को तख्लीक किया जाए। फिर वो दिन भी आया कि उन्होंने अपनी मुलाजमत को, तदरीसी पेशे को तर्क किया और पूरी तरह से बच्चों के अदब के लिए मुंसलिक हो गए। अपने आप को इस तरह से कहा जाए कि बच्चों के अदब के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया और ऐसी शाहकार नज़में तख्लीक की कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में भी उनकी तख्लीकात अदब का निसाब का हिस्सा हैं। हैदर बयाबानी को नज़्म और नसर लिखने में एक साथ तौर पर कुदरत हासिल है। उन्होंने 1962 में पहली बार अदब इतफाल के कलम उठाया और 1984 में उनकी पहली किताब नन्ही मुन्नी बातें के नाम से मंजरेआम पर आई थी। इसके बाद उन्होंने नन्ही मुन्नी बातों का सिलसिला दराज होता गया और इस कदर दराज हुआ कि उसमें उनकी नन्ही मुन्नी बातों के हवाले से एक दो नहीं बल्कि एक दर्जन किताबें मंजरेआम पर आई। हैदर बयाबानी ने बच्चों के लिए जहाँ संजीदा नज़में तख्लीक की हैं वहीं उन्होंने मजाहिया नज़में, गीत और नसरी मजामिन भी बच्चों के लिए तख्लीक किए। बच्चों के लिए लिखे गए उनके गीतों का मजमुआ खट्टी मीठी बातें के नाम से 1986 में मंजरेआम पर आया था, जबकि उल्टी सीधी बातों के नाम से मजाहिया नज़मों का मजमुआ 1991 में मंजरेआम पर आया। 1991 में ही तंज़ो मज़ा पर उनका मजमुआ चश्मदीद के नाम से शाये हुआ था जिसे अदबी हलकों में खूब पसंद किया गया था। हैदर बयाबानी की दीगर किताबों की बात करें तो मंजूम लतीफ़ा, मासूम तितलियाँ, नबी मेरे, अल्लाह अकबर, फलों की दुनिया, अनमोल बदन, हमारे अपने, भारत दर्शन, साइंस की सौगातों के नाम काबिले जिक्र हैं। हैदर बयाबानी की किताबों में भारत दर्शन ऐसी किताब है जिसमें भारत की 25 तारीखी इमारतों पर बेहतरीन नज़में कही गई हैं। ये इमारतें जो हिंदुस्तान का फ़ख्र तसव्वुर की जाती हैं, भारत दर्शन के नाम से लिखी गई नज़मों की ज़बान आसान और सलीस तो हैं, इसमें तारीखी पस मंज़र, फ़न तामीर और उसकी अज़मत को जिस खूबी के साथ फनकाराना चाबुकदस्ती से बयान किया गया है वो अपनी मिसाल आप हैं। हैदर बयाबानी की तमाम किताबों की बात करें तो ये किताबों की तादाद 43 है। इनमें नन्ही मुन्नी बातें अव्वल, खट्टी मीठी बातें, चश्मदीद, उल्टी सीधी बातें, नन्ही मुन्नी बातें दोयम, बेजबान की दुनिया, नन्ही मुन्नी बातें सोयम, नन्ही मुन्नी बातें चहरुम, अल्लाह अकबर, नबी मेरे, मंजूम लतीफ़े, मंजूम पहलियाँ, नन्ही मुन्नी बातें पंजम, अनमोल बदन, फलों की दुनिया, नन्ही मुन्नी बातें शशम, हमारे अपने और फिर नन्ही मुन्नी बातें हफ्तुम, इतराफ, तालीमी जेवर, भारत दर्शन, नन्ही मुन्नी बातें हशतुम, अनोखी दुनिया, साइंस की सौगातें, नन्ही मुन्नी बातें दहुम, बच्चों के हैदर जी, हैदर जी के गीत, क्लास रूम की नज़में, हैदर जी की कहमकरानियाँ, हैदर जी की नज़मों के नाम काबिल जिक्र हैं। हैदर जी यानी हैदर बयाबानी उन अदीबों में से हैं जिनकी बच्चों के लिए लिखी गई दर्जन भर से ज्यादा नज़में सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि मुल्क की दूसरी रियासतों के निसाब का हिस्सा हैं। उनकी बात किताबें तो इस दर्जा मकबूल हुई कि उसके कई कई एडिशन शाये हुए। हैदर बयाबानी के हयात व खदमात पर उनकी हयात में ही पीएचडी के लिए मकाला भी लिखा गया।
حیدر بیبانی کی ایک دو نہیں بلکہ 40 نظمیں مدھ پردیش،

गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में बच्चों के निसाब का हिस्सा हैं। हैदर बाबानी की अदबी तख्लीक पर महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी ने एक दो बार नहीं बल्कि 7 मरतबा एजाज से सरफराज किया। बिहार उर्दू अकेडमी ने 4 मरतबा, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ने 3 मरतबा उनकी किताबों को एजाज से नवाजा। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी ने 2017-18 में हैदर बाबानी को उनकी खिदमात के एतराब में सूरज कला सहाय सूबाई एजाज से सरफराज किया था। हैदर बाबानी की विलादत, तालीम तरबियत और अदब लिखने का सिलसिला अचलपुर से जरूर हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल से उन्हें गहरा इश्क था। बैतूल में उनके बेटों की परवरिश कमर गौस, जफर इकबाल, नजर मोहम्मद,

आजिया जो फर्स्ट ईयर में थी और बेटा इद्रीस जो 12th में था। मगर इलियास शौहर थे, घर की बाहर की तमाम जिम्मेदारियों को संभालते। साइमा ने तो अब तक सिर्फ किचन से मुतालिक मामलात ही देखे थे, इसमें भी कभी कभी शौहर की सलाह दरकार होती। जैसे तैसे शाम हुई तो नाजिया चाय बना लाई, तीनों ने चाय पी, कुछ मूड बदला। एक पड़ोसन आ गई तो कुछ दिल बहला, फिर रात के खाने के इंतजाम में वक्त कटा। रात गहराई तो फिर वही एहसास से तन्हाई जागा। तमाम कामों से फारिग होकर बाहर के मेन गेट में ताला डाल दिया गया और वो सब एक ही कमरे में सिमट गए। साइमा ने दोनों बच्चों को अपने ही कमरे में सुलाने का फैसला किया। लाइट देर तक जलती रही, बच्चे माँ की मौजूदगी में खुश थे, बेफिक्र होकर सो गए। लेकिन माँ की आंखों में नींद नहीं थी, वो जागती रही। मकान दो मंजिला था, नीचे सब रहते थे, ऊपर एक बड़ा हाल, किचन और लेट बाथ था। ये पूरा हिस्सा इलियास के तसर्रुफ में था। हाल के एक हिस्से में उनकी लाइब्रेरी थी, जहां अमूमन रोजाना और छुट्टी वाले दिन खुसूसन दोस्तों की महफिलें आरास्ता होती। दुनिया के हर मसले पर तबादला ख्याल होता, चाय नाश्ते के दौर चलते, कभी कभी बच्चे भी वहां खेलते और साइमा अक्सर कपड़े वहीं धोती और सुखाती थी। खुली आंखों में गए दिनों की यादें उभरती रहीं और रात आधी से ज्यादा गुजर गई। वो लेटे लेटे छत को ताकती रहीं, ख्यालों का दरिया बहता रहा। तभी कोई धम की आवाज उनके कानों से टकराई। कोई चीज गिरी थी या कोई कूदा था। आवाज छत की तरफ से आई थी। उनकी सांसें बेतरतीब होने लगीं और कान जैसे छत पर जा पहुंचे। कुछ देर खामोशी रही, फिर लगा कोई चीज घसीटी जा रही है। वो पसीने में तरबतर हो गई, हिम्मत करके लाइट बंद कर दी और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसके सुराख से आंख लगा दी। जीने खामोश थे, बरामदे में भी कोई न था। बहुत देर खड़ी रही, फिर वापस आकर बिस्तर पर लेट गई। लेकिन कान मोहतात रहे। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि उनकी आंखें भी झपकने लगीं और जहन डूबने सा लगा कि अचानक फिर कोई आहट जैसे दरवाजा खोला गया हो। कच्ची नींद थी, जरा में टूट गई और फिर न लगी। यहाँ तक कि सुबह की अजानें शुरू हो गईं, गली में हलचल सी होने लगी। पड़ोस के करीम भाई ने दरवाजा खोला, किसी को सलाम किया, तब साइमा की जान में जान आई। उन्होंने उठकर वुजू किया, नमाज पढ़ी और बिस्तर पर दराज हो गईं। सुबह 5 बजे बेदार होने वाली 8 बजे सुबह तक सोती रही। दिन में बच्चों के साथ ऊपर जाकर देखा, सब नॉर्मल था। दरवाजा, उसके ताले चेक किए, जमीन को गौर से देखा, दीवारों पर गहरी गहरी नजरें डाली, कुछ भी खिलाफ मामूल न था। फिर जब बच्चे स्कूल चले गए तो साइमा ने अपनी नींद पूरी की। रात को आना था, वो फिर आई और शब गुज़िश्ता की मानिंद अंदेशों और खौफ से भरपूर आई। अब साइमा ने अपने बड़े भाई आसिम को बुलाया, जो इसी महल्ले में रहते थे। उन्हें सारी बात बताई, सुनकर वो हंसे और बहन को समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार न हुई। जो उन पर बीत रही थी, वे किसी तरह वहम मानने को तैयार न थी। हफ्ते को इलियास आए, सुनकर वो भी हंसे, लेकिन बीवी को परेशान देखकर सोच में पड़ गए। आसिम को फिर बुलवाया गया और देर तक सर जोड़कर सोच विचार करते रहे। बाद में ये तय पाया कि बालाई मंजिल किराए पर उठा दी जाए और ये जिम्मेदारी आसिम के सर डालकर इलियास फिर रवाना हो गए। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों आसिम के एक दोस्त का मकान जेरे तामीर था और उनके बेटे के लिए उन्हें एक अलग मकान की ज़रूरत थी, जिसकी नई नई शादी हुई थी। उन्हें साइमा का मकान पसंद आया और वो लोग किराएदार बनकर आ गए। दोनों के मिजाज बहुत अच्छे थे। साइमा से और खुसूसन नाजिया से नई नवेली दुल्हन मानूस हो गई। बड़े अच्छे दिन गुजरे, लेकिन 6 माह देखते देखते ही ख़त्म हो गए और वो लोग चले गए। अब मकान पहले से ज़्यादा सुनसान लगने लगा। मकान किराए से देना है का बोर्ड दरवाजे पर आवेशा कर दिया गया। कुछ लोग आए मगर बात न बनी। उस दिन एक खातून अपनी 2 बेटियों के साथ आईं। बेवा थीं, बेटियों के अलावा एक बेटा था जो किसी फैक्ट्री में काम करता था। उसकी ड्यूटी कभी दिन में होती और कभी रात में। उन्होंने मजीद बताया कि वो मौजूदा मकान इसलिए खाली कर रही हैं कि मालिक मकान की बेटी उनके बेटे पर डोरे डाल रही हैं, जो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। बकौल उनके, ऐसी आवारा लड़कियां उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। साइमा उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहीं। उन्होंने भाई को बताया, मिजाज की तेज हैं मगर उन्हें होना भी चाहिए, आखिर 2 बेटियों का साथ है। सीधी बनकर

0: हैंगी तो लुट जाएंगी, शोहर है नहीं। बेचारी का फिर भी हिम्मत है कि वो लड़कियों के साथ रह रही हैं और दुनिया का मुकाबला कर रही हैं। लिहाजा उन्हें हरी झंडी दिखा दी गई और वो जल्द ही घर में मुंतकिल हो गईं। उन लोगों के आने से घर में चहल पहल हो गई। वो अक्सर छत से गली में आने वाले फेरी वालों को आवाज़ देकर रोक लेतीं, मोल भाव होते चीज़ें खरीदी जातीं, आसपास के लोगों से भी बातचीत होती। लड़कियां दसवां पास कर चुकी थीं और अब घर में माँ के साथ सिलाई करती थीं, फैशन करती और माँ के साथ ही बाहर जाती, जिनका इरादा उन्हें जल्द ही रुख्सत करने का था। लड़का अलबत्ता बहुत कम नजर आता था, घर में उसका होना ना होना बराबर था। बहरहाल कुल मिलाकर वक्त ठीक ठाक गुजर रहा था। फिर इम्तहानात का जमाना आया और गर्मी अपने शबाब पर पहुंच गई। नाजिया के तमाम पेपर निपट चुके थे और वो आखिरी पेपर था। वो कूलर के सामने बैठी किताब में गर्क थी। रात के 11 बज चुके थे तभी लाइट गायब हो गई। नाजिया ने कुछ देर इंतजार किया, फिर मोमबत्ती रोशन कर ली, मगर गर्मी और घुटन से परेशान होकर उठ बैठी। मौके को देखकर मच्छर भी चले आए। आधा घंटा गुजर गया लेकिन लाइट ना आई। न वो पढ़ सकती थी न आराम कर सकती थी। अचानक उसे कुछ ख्याल आया। अम्मी मैं छत पर जाकर पढ़ लूं, उसने कहा। लेकिन बेटा वो लोग तो शादी में गए हैं, दरवाजा बंद होगा। देखती हूँ, कहकर नाजिया सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ऊपर पहुंचकर देखा दरवाजा सिर्फ भिड़ा हुआ था। वो खुश हो गई और छत पर चली आई। हवा तो कुछ खास नहीं थी मगर हाँ घुटन नहीं थी। और फिर सड़क की दूसरी तरफ लगे लैंप पोस्ट से रोशनी आ रही थी जो उसके लिए काफी थी। उसने टहल टहल कर याद करना शुरू कर दिया। अंदर कमरे में किराएदार लड़का सो रहा था। उसकी दिन की ड्यूटी थी। रात को उसने शादी में जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो सोना ज्यादा बेहतर समझता था। गहरी नींद काफी देर बाद टूटी क्योंकि कूलर बंद हो चुका था, लेकिन वो गुनूदगी के आलम में बिस्तर पर ही लेटा रहा आंखें बंद किए हुए। फिर उसने दीवार की जानिब करवट ली तो धुंधली आंखों को दीवार पर कोई परछाई नजर आई। उसने आंखें मसल कर देखा, परछाई इधर से आती उधर चली जाती। क्या कोई है, उसने सोचा। यकीनन कोई है। उसने पलट कर छत की जानिब देखा, अंधेरे में कोई चल रहा था। कौन होगा, सब लोग तो शादी में गए हुए हैं। अचानक उसे ख्याल आया कोई चोर तो नहीं है, और ये सोचकर वो सिर्फ हाफ पैंट पहने हुए छत की तरफ लपका और सख्त आवाज में बोला, कौन है? नाजिया ने सुना और किसी को अपनी जानिब आते देखा तो लरस कर रह गई। बेख्तियार कदम जीनों की जानिब उठ गए। पहले जीने पर कदम रखते ही लाइट आ गई, साथ ही कुछ आवाजें सीढ़ियों से ऊपर की जानिब आती हुई महसूस हुई। नाजिया ने पलट कर ऊपर देखा, नीम बिरहना लड़का पहली सीढ़ी पर खड़ा और वो आगे बढ़ी। जीने का मोड़ आ गया था तभी सामने देखा किराएदार खातून मैं अपने दोनों बेटियों के सामने खड़ी हूँ। उसे देखकर और फिर अपने बेटे को देखकर उनके चेहरे का रंग अजीब हो गया। एक तीखी आवाज गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं मम्मी, कहकर लड़का तेजी से वापस मुड़ गया और नाजिया सीढ़ियाँ उतर गई। ऊपर से बहुत देर तक चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहीं और नाजिया जारो कतार रोती रही।
1: सामईन, अभी आपने अफसाना यूं बनते हैं अफसाने समाअत फरमाया, जिसे सुल्ताना खानम हिजाब ने तहरीर किया है। इसी के साथ हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम आईना अपने इख्तिताम को पहुंचता है। रुखसत होने से पहले हमारा पता नोट फरमा लीजिए। हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम आईना, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी, शामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 4620002। इसी के साथ रुजदा को इजाजत दीजिए। आदाब।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम आईना। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है।
1: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक

0: यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने, सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
4: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शाजापुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत पराशर, वाचन स्वर दीपा सिंह। शाजापुर जिले में किसान खरीफ फसल की बुआई की तैयारियों में लग गए हैं। जिले में हर साल करीब 3 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोई जाती है। किसान अब अच्छे मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं। पर्याप्त बारिश होने पर अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरी तरफ शुजालपुर और काला पीपल विकासखंड के किसानों के लिए प्राकृतिक और जैविक खेती पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के सिद्धांत, कम लागत में अधिक उत्पादन और मृदा स्वास्थ्य संरक्षण की तकनीक की जानकारी दी। खेत बचाओ अभियान के तहत मृदा और जल संरक्षण के महत्व पर भी चर्चा हुई। खेती की तैयारियों के बीच जिले के स्कूल भी बच्चों की चहल पहल से गुलजार हो गए हैं। स्कूल चले अभियान के तहत नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हुई है। नए बस्ते, किताबें और कक्षाओं को लेकर बच्चों में उत्साह दिखाई दे रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के संदेश के साथ जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया गया। शाजापुर में हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। इस दौरान स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। इसी क्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 41 प्रतिभा बालिकाओं का सम्मान किया गया। उन्हें कुल 2,05,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। कलेक्टर ने बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के टिप्स भी दिए। समाज में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के बीच काला पीपल के बेरावल गांव में बावड़ी उत्सव आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन का संदेश दिया गया। ग्रामीणों ने जल स्रोतों को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाते हुए प्रशासन ने बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ सख्ती दिखाई है। होटल ढाबों और औद्योगिक इकाइयों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। विकास के मोर्चे पर भी जिले के लिए अच्छी खबर है। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल होने से शाजापुर के 546 गाँव को फायदा मिलेगा। इससे निवेश, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होने की उम्मीद है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित हुई। टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य सुविधाओं की निगरानी के तहत कलेक्टर रिजु बाफना ने ज्योति नगर में करीब 22 लाख रुपए की लागत से बने मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण न होने पर कलेक्टर ने नगरपालिका इंजीनियर पर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने CMHO डॉ कमला आर्य को समिति बनाकर जाँच करने और दोषी इंजीनियर से राशि वसूलने के निर्देश दिए। दूसरी तरफ जिले में मुस्लिम समाज के मोहर्रम पर्व की शुरुआत हो गई है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से सौहार्द और शांति के साथ पर्व मनाने की अपील की। युवाओं और समाज को नशे से दूर रखने के लिए जिले में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मास्टर वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया गया है। श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए श्रम विभाग ने बिना लाइसेंस काम करने वाले ठेकेदारों पर निगरानी बढ़ा दी है। सभी ठेकेदारों के लिए पंजीयन और लाइसेंस अनिवार्य बताया गया है। महिला और बाल विकास विभाग ने कुपोषण मुक्ति अभियान की समीक्षा की है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जा रहे पोषण आहार की गुणवत्ता की जाँच की गई। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मत्स्य विभाग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मत्स्य प्रजनन काल को देखते हुए जिले में 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सिंहस्थ के समय उज्जैन और शाजापुर जिले में होने वाले धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए पुलिस ने एक नई पहल की है। अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशन में यातायात पुलिस ने यातायात मित्र फोर्स गठित करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत 18 साल से अधिक उम्र के जागरूक छात्र छात्राओं और युवाओं का पंजीयन किया जाएगा, जो यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा जागरूकता में पुलिस का सहयोग करेंगे। जन कल्याण शिविरों में भी लोगों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। विभिन्न विभागों ने नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी दिया। जिले की सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने के लिए प्राचीन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण किया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर

0: ग्रामीणों को सीपीआर और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया। करीब 300 लोगों ने इसमें भाग लिया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे शाजापुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत पराशर का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। प्रातः के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर।

कीजिए स्वीकार आकांक्षा का प्यार और नमस्कार। श्रोताओं, परिंदों को तो पंख मिलते हैं आसमान नापने के लिए, लेकिन हम इंसानों को क्या मिलता है? हम इंसानों को मिले हैं सपने। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बात होगी सपनों की उड़ान की। आपके सपने क्या हैं? क्या आप उन्हें पूरा करने के लिए कभी उड़ान भरी है आपने, या जिम्मेदारी के पिंजरे में वो कहीं दुबक कर बैठ गए हैं? आज इसी पर होगी हमारी ढेर सारी बातें। बने रहिए कार्यक्रम गीत सागर के साथ।

श्रोताओं, आपसे एक सवाल पूछूं, आपके बचपन का सपना क्या था? जी हाँ, जब हम छोटे थे तो हर कोई कुछ ना कुछ अलग बनना चाहता था। आपका वो बचपन का सपना क्या था और आज आप कहाँ हैं? क्या वो सपना कहीं पीछे छूट गया? श्रोताओं, कहते हैं ना कि सपनों की उड़ान में सबसे बड़ी बाधा डर होती है। आपको अपनी उड़ान भरने में किस चीज से सबसे पहले ज्यादा डर लगता था? जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो था कि लोग क्या कहेंगे इसका, या नाकामयाबी, कहीं हमें मिल ना जाए, कहीं हमारा सपना टूट ना जाए, है ना? पर वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। बस आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, आप अपना हर सपना पूरा कर लेंगे।

आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सागर, जिसमें हम बातें कर रहे हैं सपनों के उड़ान की। श्रोताओं, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पल आया है जब सबने कहा कि ये तुमसे नहीं होगा, लेकिन आपने अपने सपनों की उड़ान भरी और कर दिखाया? उम्मीद है ऐसा जरूर हुआ होगा और यही है आपकी सफलता की कहानी। जी हाँ, क्योंकि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मुश्किल वक्त में भी अपने सपनों पर भरोसा रखना ही असली उड़ान है।

श्रोताओं, सपनों की उड़ान भरने के लिए उम्र का कोई लेना देना नहीं है। 60 साल की उम्र में भी नया बिजनेस शुरू किया जा सकता है और 16 साल की उम्र में भी दुनिया बदली जा सकती है। सपना सिर्फ चांद पर जाना नहीं होता, सपना वो होता है जो आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी पूरा कर सके। छोटे छोटे सपने देखना, उन्हें पूरा करना ही आपके सपनों की असली उड़ान है।

श्रोताओं, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक शब्द में अपना सपना बताइए, आपके सपने का नाम क्या है? जानती हूं बहुत से लोगों का सपना होगा आज़ादी, कामयाबी, सुकून या कोई खास करियर, है ना? और जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स या नौकरी पेशा लोग, तो उनसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि वे अपने आप पर भरोसा करना कभी ना छोड़ें। आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और आपका सपना ज़रूर पूरा होगा।

बताऊँ, जाते जाते यानी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले आपसे बस ये कहूँगी कि सपने देखना मत छोड़िए, क्योंकि जब तक सपने हैं तब तक उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है तब तक जिंदगी में उड़ान बाकी है। अपनी उड़ान को पंख दीजिए, डर को पीछे छोड़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी भोपाल। फिलहाल आकांक्षा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम समाप्त करने की, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सागर, ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रातः के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग माला। आज इसमें सुनिए समरजीत सिंह का राग गुजरी तोड़ी में सितार वादन।

0: अभी आप सुन रहे थे सितार पर बजाया राग गुजरी तोड़ी। वादक कलाकार थे समरजीत सेन। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्योपुर जिले स्थित कुरु नेशनल पार्क में सफारी कर चीता पुनर्स्थापना परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। राष्ट्रपति मुर्मू का चीता मित्रों, चीता ट्रैकर्स, स्थानीय वन्यकर्मियों ने संवाद का भी कार्यक्रम है। इसके बाद राष्ट्रपति श्योपुर से ग्वालियर होते हुए नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए दुनिया भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक पोस्ट में उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह दिन आने वाले समय में अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री डॉ एल मुरुगन आज प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉ मुरुगन शाम को भोपाल कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे। डॉ मुरुगन कल देवास जिले के दौरे के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सीहोर जिले में आयोजित जनकल्याण शिविर में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह आज भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर अकादमी द्वारा प्रकाशित प्रगति पथ ब्रोशर और द्विमासिक पत्रिका का विमोचन और शिक्षा विद्या को भी सम्मानित किया गया। और पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं मैं छाया पाठक। नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो
2: हेलो
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल मैडम
1: जी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल, कौन बोल रहे हैं?
2: कालीचरण यादव।
1: कालीचरण यादव, फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। पसंद बताएं अपनी
2: फिल्म का नाम। खुली फिल्म का गाना सुनना मुझे। पीने का शौक नहीं, गम बजाने
1: मुझे
2: पीने का शौक नहीं। अमिताभ बच्चन पिक्चर है ना?
1: जी जी,
2: वही गाना सुनना, गाना पसंद है
1: जी। नमस्कार,
2: आप कौन बोल रही हैं?
1: छाया पाठक बोल रही हूँ।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, फ़ोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: अरे
0: नाम बताएं
1: नमस्कार बहन
0: अपना।
1: जी
0: नमस्कार।
1: जी, मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ बहन जी।
0: सैनी जी स्वागत है। बताएं क्या करते हैं आप।
1: जी मैं सिलाई करता हूँ और इस समय सिलाई कर रहा था, मशीन चला रहा था और नंबर भी डाल करता जा रहा था और यहाँ पे कॉल चालू हो गई, मैं ध्यान नहीं दे पाया। फिर मैंने देखा अरे कॉल चालू है।
0: अच्छा जी, चलिए
1: जी
0: बताएं आज क्या सुनना चाहेंगे।
1: जी आज आप सुनवा देना, सावन आया बादल छाए बुलबुल जय की फूल खिले। ये
0: अच्छा,
1: गीत है शायद साजन का घर, हाँ
0: साजन का घर
1: उस फिल्म का गीत
0: जी, बिल्कुल सुनवाएंगे, लेकिन सावन तो अभी आया नहीं है।
1: बस इंतजार है, उस इंतजार ही कर रहे हैं क्योंकि बहुत
0: जी
1: तेज गर्मी पड़ रही इस समय।
0: जी चलिए,
1: जी
0: कार्यक्रम में
1: और
0: फोन
1: एक
0: करने के लिए।
1: मेरी
0: हाँ
1: रिक्वेस्ट है कार्यक्रम के बारे में, जो फोन वो का नाम बात आपकी जीत हमारे कार्यक्रम चलता है, अगर उसमें लास्ट में जब जैसे कार्यक्रम समापन होता है और अगला दशा बता दिया जाए तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा, फिर बनेगा
0: सर होता
1: कार्यक्रम।
0: क्या है,
1: जी
0: कार्यक्रम
1: जी
0: प्रस्तुत करने वाले अलग अलग होते हैं, तो अब किसी को विषय पहले से पता नहीं रहता कि सामने वाला क्या लेने वाला है विषय अगला, इसलिए नहीं बता पाते। और सभी लोग तब भी नहीं सुनते हैं, नए श्रोता भी जुड़ते हैं या उस समय नहीं लगाते हैं फोन,
1: ठीक
0: तो किसी को पता नहीं पड़ पाता, तो इसलिए उसी समय बताना रहता है। ठीक है,
1: नमस्ते।
0: चलिए नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, नाम बताएं अपना।
1: खूबसूरत सी जिंदगी में खुशियां आपके चेहरे पर बरकरार रहे, और मेरी दुआ है रब से कि आपको खुशियों का नहीं बल्कि खुशियों को आपका इंतजार
0: इंतजार रहे। बहुत बढ़िया, आप नाम भी बता दें अपना।
1: है। हम आपके नियमित श्रोता बोल रहे हैं, पालदा नाका इंदौर से, मोहम्मद रफी मंसूरी।
0: मोहम्मद
1: मोहम्मद रफी मंसूरी, पालदा नाका इंदौर से।
0: जी,
1: कैसे मैडम आप?
0: बस बढ़िया है। आप बताएं, आप कैसे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं मैडम।
0: अच्छा, तो आपका नाम जो है, तो आप मोहम्मद रफ़ी के गाने पसंद करते हैं कि नहीं?
1: हाँ, गाने पसंद है मैडम, और बहुत ज्यादा गाने सुनते हैं उनके हम।
0: जी, तो आज भी कुछ वही सुनना चाहेंगे?
1: जी मैडम, आप कौन बोल रहे हैं?
0: छाया पाठक बोल रही हूँ।
1: जी, फिल्म का नाम है सुहाग, ये शशि
0: जी।
1: कपूर और अमिताभ बच्चन वाली। इसमें गाना है बॉबी परवीन बॉबी और शशि कपूर का है, क्या तुमको सुनाऊं मैं अपना फसाना, मैं तो बेघर हूं अपने घर ले चलो।
0: मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो। जी बिल्कुल,
1: जी
0: सुनवाती।
1: जी
0: चलिए, फ़ोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: जी नमस्कार।

0: हेलो, नमस्कार
1: भूपेंद्र कुमार गुप्ता
0: जी। स्वागत है
1: बेटा,
0: कार्यक्रम में।
1: राजस्थान से।
0: राजस्थान से बोल रहे हैं। अभी
1: हाँ,
0: गर्मी कैसी है वहाँ?
1: बहुत गर्मी हो रही है अभी तो। हाँ,
0: गर्मी हो रही है जी। तो आप वहाँ पे क्या खेती किसानी करते हैं?
1: नहीं, खेती किसानी नहीं, हम जो सीनियर सिटीजन
0: अच्छा, सीनियर सिटीजन है
1: है।
0: जी। तो आज कार्यक्रम है, फोन करें, गीत सुने, तो आप क्या सुनेंगे
1: गाना बताऊं,
0: जी बताएं।
1: ये सांझो सवेरे का है क्या?
0: आप तो फरमाइश रख
1: ओ
0: दें।
1: सजना मेरे घर आना।
0: अच्छा जी
1: हम तो पुराने गाने सुनते हैं, लिस्ट बना रखी है बहुत पहले से। लिया
0: जी सुनिएगा कल आप ये गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: धन्यवाद।

0: फोन करें, गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जसराम जाटव बोल लो मैडम, जवराई से जिला शिवपुरी।
0: जसराम जाटव
1: हाँ
0: जी, पहले भी आपसे बात हुई है कई बार?
1: हाँ मैडम, बात हुई है। कौन कौन बोल रही मैडम तुम?
0: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ
1: हाँ मैडम, आपसे बात मेरी हो गई।
0: जी। आज क्या पसंद है आपकी?
1: हमको मैडम सुनना है दिलवाले पिक्चर का गाना रहेगा मैडम, जीता
0: दिलवाले का कौन सा?
1: हूँ जिसके लिए मरता।
0: आप अक्सर यही गाना सुनते हैं और कोई फरमाइश नहीं है आपकी?
1: नहीं मैडम, क्या वो मेरे को ये गाना अच्छा लगता है।
0: जी चलिए,
1: नमस्कार
0: नमस्कार।
1: मैडम।

0: हेलो
1: हेलो, फोन करेंगी सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश
0: जी। हाँ
1: जी, फादर डे की पूरे मध्य प्रदेश टीम को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।
0: जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं
1: और बड़ी बहन आप बढ़िया हो
0: जी। बढ़िया है
1: जी। हम ग्राम छातेर तहसील उदयपुरा जिला रायसेन से भगत जी बैरागी बात कर रहे हैं और आपको कार्यक्रम हम आकाशवाणी जबलपुर से सुन रहे हैं।
0: आकाशवाणी जबलपुर से सुन रहे हैं। साफ सुनाई दे रहा है?
1: हाँ बिल्कुल, जबलपुर तो एकदम क्लियर सुनाई देता और वहाँ पे भी साफ क्लियर सुनाई देता मध्य प्रदेश
0: अच्छा, तो आप रोज सुनते हैं?
1: जी। हम प्रतिदिन सुनते हैं रेगुलर 11 बजे 3 बजे तक।
0: 11 बजे से 3 बजे तक शाम को नहीं
1: हाँ
0: सुनते?
1: हाँ हम शाम को यो वाणी सुना था वापस 5:30 बजे तक मध्य प्रदेश को प्रसारण सुनाई देता जबलपुर पर जी।
0: जी। चलिए अब फिर गीत भी बता दीजिए, आज क्या सुनेंगे?
1: फिल्म को नाम है बीवी नंबर वन और गाना के बोल है मुझे माफ करना ओम साई राम
0: बिल्कुल सुनाएंगे आपको।
1: जी।
0: फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: हेलो।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रधान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी,
1: और सबसे पहले आपको योग दिवस की ढेर ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी मैडम,
0: क्या कर रहे थे इस समय?
1: आज मेरा मैडम ड्यूटी नहीं था, घर पे था, नहा धो के वही घर का काम कर रहा था। कई केंद्रों में फोन किया, रिकॉर्डिंग में जुड़ा और प्रसारण भी सुन रहा था, नई पे भी लगा और आपके केंद्र में भी रिकॉर्डिंग में जुड़ा
0: जी।
1: हूँ। आकाशवाणी भोपाल में
0: जी,
1: बातचीत हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है और फोन लगा अच्छा लगा। मौसम बेहाल है,
0: मौसम
1: परसों पानी गिरा
0: बेहाल
1: था,
0: है कि
1: बादल
0: अच्छा है
1: किया,
0: मौसम?
1: आज धूप किया है, बादल का नामो निशान नहीं है,
0: अच्छा, आज
1: इस
0: धूप
1: तरह उलट
0: निकली।
1: पुलट मौसम हो रहा है।
0: चलिए, कोई बात नहीं, आज धूप है तो कल छाया मिलेगी। बताएं, क्या सुनेंगे आज?
1: फिल्म का नाम है हादसा और गीत के बोल है योगा योगा, गायक अमित कुमार। ये गीत है मैडम।
0: जी।

0: प्रणाम। मैं महर्षियों का चेला, किसी की खातिर देखने आया हूँ आपका ये मेला।
1: महाराज?
0: Yes.
1: योगी?
0: That's right.
1: Welcome.
0: Thank you.
1: Welcome.

0: जी हेलो, आकाशवाणी फोन का जी सुन करके हूँ
1: जी।
0: जी मैं मछेरा कला जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ, पवन विश्वकर्मा।
1: पवन विश्वकर्मा
0: जी
1: जी, वहाँ पे क्या आपका व्यवसाय है, कारोबार है, दुकान है, खेती है, क्या करते हैं?
0: ये दीदी हमारी खेती है, किसानी करते हैं।
1: खेती किसानी करते हैं। तो अभी क्या बोया, धान?
0: जी दीदी अब धान।
1: अच्छा, तो पानी वानी आ रहा है बराबर?
0: जी दीदी नलकूप है।
1: अच्छा, नलकूप से। बाकी बारिश का पानी?
0: जी अब बारिश हो रही, जब वो धान लगेगी बनने भरा जाएंगी जब लगेगी धान।
1: अच्छा, अभी धान बोई नहीं है। बताएं आज कार्यक्रम में आपकी पसंद कौन सी है?
0: दीदी आज हमको सुनना है, हमने नहीं प्यार किया है, मुबारक हो तुमको ये सारी तुम्हारी।
1: जी
0: दीदी मेरा फोन दीदी 4 महीने बाद लगा है मेरा।
1: अच्छा, ने प्रयास नहीं किया?
0: जी
1: प्रयास
0: हर दिन करता था, लगती नहीं तो कॉल।
1: अच्छा, चलिए अच्छी बात है, आप इतने समय से

0: खेती है। किसानी करते हैं,
1: खेती किसानी करते हैं। तो अभी क्या बोया, धान?
0: गिरी दिया धान।
1: अच्छा, तो पानी वानी आ रहा है बराबर?
0: जी, नलकूप है।
1: अच्छा, नलकूप से। बाकी बारिश का पानी?
0: जी, बारिश हो रही जब धान लगेगी। बनिए भरा जाएंगी जब लगेगी धान।
1: अच्छा, अभी धान बोई नहीं है। बताएं आज कार्यक्रम में आपकी पसंद कौन सी है?
0: जी, आज हमको सुनना है हमने प्यार किया है मुबारक हो तुमको ये सारी तुम्हारी।
1: जी
0: जी, मेरा फोन दे रही 4 महीने बाद लगा है मेरा।
1: अच्छा, ने प्रयास नहीं किया?
0: जी
1: प्रयास
0: हर दिन करता था, लगती नहीं थी कॉल।
1: अच्छा, चलिए अच्छी बात है, आप इतने समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन अब आपका कॉल लग गया। इसी तरह अगर प्रयास करते रहिए, कभी ना कभी कॉल लगता ही है ना। फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो,
1: नमस्कार,
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना,
1: अनोखे सिंह,
0: कहाँ से?
1: जिला धार,
0: धार से। पसंद बताएं अपनी
1: प्रसन्न, राम जी की लीला है निहारी। सर
0: फिल्म कौन सी है?
1: ये फिल्म का तो नहीं, बाकी ये बहुत अच्छा गाना है, आ सकता है।
0: सुनवाते हैं। नमस्कार।
1: धन्यवाद सर जी।

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: हाथेगांव से बोल रहा था, गोविंद जलोदिया।
0: गोविंद जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी बताएं, कैसे हैं?
1: मैं बढ़िया है सर, पानी की रास्ता देख रहे
0: पानी का रास्ता देख रहे हैं आप? क्या सभी
1: हैं।
0: देख रहे हैं, हम सभी को इंतजार है पानी का। एक झलक दिखलाता है कभी और एकदम से चला जाता है ना। चलिए तो पानी आप क्या है, बिल्कुल बरसा भी नहीं क्या?
1: नहीं, पानी रुक गया, छीटे छाटे आके रह जाते हैं।
0: हाँ ये बात सही है। तो आज क्या धूप निकली है,
1: हाँ,
0: ऐसा ही है इंतजार। खैर ये भी कहते हैं इंतजार
1: जो
0: का
1: इंतजार में
0: फल
1: है
0: मीठा
1: वो
0: होता है।
1: मिलने में नहीं है फिर।
0: जी अब देखिए इस बार किस तरह से बारिश होती है, कितनी होती है बताएं
1: सर ये
0: कौन।
1: गाना था सर, वो जो है बहुत दिन से मतलब अटका हुआ है, बेजू बावरा का है सर, तू गंगा की मौज जमुना की धारा।
0: जी, तू गंगा की मौज में जमुना की धारा। जी सुनवाएंगे आपकी पसंद का गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम फोन करें गीत सुने कार्यक्रम यही समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति छाया पाठक की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ ही उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने संस्कृत श्लोक साझा करते हुए कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री डॉ एल मुरुगन आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉ मुरुगन शाम को भोपाल कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे। डॉ मुरुगन कल देवास जिले के दौरे के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक पोस्ट में कहा कि गरीबों युवाओं और महिलाओं तथा किसानों के अटूट विश्वास से मध्यप्रदेश सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहा है। हमारी सरकार अग्रणी मध्यप्रदेश की भावना के साथ हर वर्ग के कल्याण हेतु कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह आज भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर अकादमी द्वारा प्रकाशन प्रगति पथ ब्रोशर और द्विमासिक पत्रिका रचना के विमोचन के साथ ही शिक्षाविदों को सम्मानित भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक जबलपुर रीवा और सागर संभाग के जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। प्री मानसून के चलते आज प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में 30 आंधी और बारिश का अलर्ट है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 14 जुलाई से शुरू होने वाले आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए शुभमन गिल की कप्तानी में भारत की 15 सदस्यीय एक दिवसीय टीम की घोषणा कर दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

गीता कृष्णमूर्ति ने। बोल समीर के हैं, संगीत नदीम श्रवण का है और पसंद है आप सभी श्रोताओं की। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म अग्नि साक्षी का ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं और ये समय है आपके पसंद के गीतों से सजे कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। तो कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं अग्नि साक्षी के इस गीत के साथ, जिसे गाया है कविता।

बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, माही पूजा, छुटकी शरद, पूनम श्रेया और समस्त माखीजा परिवार, आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाड़कर, सरिता गुहाड़कर, सिद्धांत गुहाड़कर, प्रिंस एकांश गुहाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश, वैशाली, श्वेता, सुमित और ध्वनि गुहाड़कर। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म मन का गीत उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। बोल समीर के हैं, संगीत संजीव दर्शन का। लीजिए सुनिए।

कृष्णा। इस फिल्म का गीत सुनिए अलका याग्निक की आवाज़ में। बोल आनंदराज आनंद के हैं और संगीत है अनु मलिक का। फरमाइश करता है आप सभी सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली की।

घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। आप सभी ने सुनना चाहा है आनंद बख्शी का लिखा कल्याण जी आनंद जी का संगीत से सजाया हुआ गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और मनहरो दास ने, और फिल्म का नाम है त्रिदेव।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आखिरी गीत सुनिए, जिसे हमने लिया है फिल्म इश्क से। आवाज़ें कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की हैं। गीत लिखा है राहत इंदौरी ने और संगीतबद्ध किया है अन्नू मलिक ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की। साथ ही सुना चाहा है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी,
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक भुवन मोहिनी की चौथी कड़ी।

0: पिछली कड़ियों में आपने सुना कि धारा नगरी के महाराज द्युम्न सेन ने राजकुमार विजय श्रवा को प्यार करने के कारण नर्तकी भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया। राजमाता ने ताने कसे तो राजकुमार राजमहल छोड़कर चल पड़ा। उसे पता चला कि भुवन मोहिनी इंद्रप्रस्थ गई है, सो इंद्रप्रस्थ पहुंचकर यमुना तट पर एक आश्रम में ठहर गया। उसने खुद को धारा नगरी का एक श्रेष्ठ बताया ताकि वो कहाँ है ये राज परिवार को पता न चले। अब इसे संयोगी समझिए कि इंद्रप्रस्थ के राजा आदित्य सेन ने ही भुवन मोहिनी को आश्रय दे रखा था। राजा आदित्य सेन अपनी बहुत ही सुंदर पुत्री चंद्रहासिनी के लिए उपयुक्त वर की खोज में थे ही। उन्हें पता चला कि यमुना तट पर उनके आश्रम में एक श्रेष्ठी ठहरा हुआ है जो दिखने में श्रेष्ठी नहीं बल्कि कोई राजवंशी लगता है। उन्होंने पता लगाने के लिए नर्तकी भुवन मोहिनी को कहा। चंद्रहासिनी को राग दीपक रागिनी सिद्ध करने आश्रम जाना ही था। भुवन मोहिनी तो उसकी गुरु ही थी। दोनों वहां गए और जान गए कि वो आगंतुक विजय श्रवा ही है। चंद्रहासिनी का गायन सुनकर राजकुमार उस पर मुग्ध हो गया। जब दोनों रथ पर लौट रही थी तो राजकुमार ने दोनों को देखा भी। अब आगे की कथा सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की चौथी कड़ी में।
1: महाराज आदित्य सेन की जय हो। महाराज, नर्तकी भुवन मोहिनी आपके दर्शन चाहती हैं।
2: उसे अंदर ले आओ।
3: महाराज को प्रणाम।
2: कुछ पता लगा भुवन मोहिनी? राजोद्यान में ठहरने वाला युवक धारा नगरी के सर्वश्रेष्ठ का पुत्र है या सम्राट द्युम्न सेन के उत्तराधिकारी, भारत के भावी सम्राट?
3: यही सत्य है महाराज, वो राजकुमार विजय श्रवा ही है।
2: अच्छा,
3: और आपको प्रसन्नता होगी ये जानकर कि ये सत्य राजकुमारी चंद्रहासिनी भी जान गई हैं।
2: राजकुमारी को कैसे ज्ञात हुआ?
3: उनके पास राजकुमार विजय श्रवा का चित्र पहले से ही है। वे चित्र के साथ मिलाकर पहचान गईं कि वो युवक वास्तव में राजकुमार ही हैं।
2: नर्तकी, आज तुमने मुझे वांछित प्रसन्नता दी है। ये लो तुम्हारा पुरस्कार।
3: धन्यवाद महाराज।
2: भावी सम्राट के सम्मान में समस्त राजकार्य स्थगित किए जाते हैं और इंद्रप्रस्थ में सर्वत्र महोत्सव मनाया जाएगा। नर्तकी।
3: आज्ञा महाराज।
2: तुम्हारे लिए आदेश है कि महोत्सव में तुम हमारे द्वारा दिए गए इन्हीं आभूषणों को धारण करके अपने नृत्य और संगीत से राजकुमार व्रजेश्वर और सारे सभासदों का मनोरंजन करोगी।
3: आदेश शिरोधारी है महाराज।
4: युवराज, युवराज, युवराज, तनिक बताइए तो परिसर में कौन आ रहा है आपसे मिलने?
5: भुवन मोहिनी।

0: सेवन करे, इसका मिलन इस परिसर में तो क्या इस जन्म में भी आपसे ना हो।
1: कौन आ रहा है मित्र?
0: अरे मित्र, आपसे मिलने स्वयं महाराज आदित्य सेन आ रहे हैं।
1: महाराज आदित्य सेन कहाँ है?
0: वो देखिए।
1: महाराज आदित्य सेन को सादर प्रणाम।
2: प्रणाम राजकुमार विजय श्रवा। निश्चित ही आप अत्यंत गोपनीय विधि से यहाँ पर रुके थे, परंतु हमें ज्ञात हो गया। हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप अब हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए।
1: हमें स्वीकार है महाराज।
2: आभारी हूँ युवराज। भारत के भावी सम्राट के सम्मान में इंद्रप्रस्थ नगरी में महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर आप अपने समस्त साथियों सहित सादर आमंत्रित हैं।
0: मित्र, आमंत्रण स्वीकार करिए।
1: आपका निमंत्रण हमें स्वीकार है महाराज।
2: आइए राजकुमार, आपका आसन ये है।
1: धन्यवाद महाराज।
0: सारथ।
3: हाँ रण्यक।
0: कुछ समझ रहे हो?
3: अवश्य रण्यक। महाराज आदित्य सेन हमारे राजकुमार को अपना पाहुन बनाना चाह रहे हैं।
0: तात्पर्य ये कि हमने जो सोचा था सब कुछ उसके अनुरूप ही हो रहा है।
3: वो कैसे?
0: अरे युवराज का विवाह राजकुमारी चंद्रहासिनी जैसी अपूर्व सुंदरी से हो रहा है, तो फिर वो भला उस नर्तकी के मोह में क्यों पड़ेंगे?
3: ये तुमने ठीक कहा।
0: अब तो भगवान से बस इतनी विनती है कि बस कुछ दिन और भुवन मोहिनी को दूर रखें हमारे राजकुमार से।
4: शांत शांत, कृपया शांत रहें। महाराज आदित्य सेन और हमारे माननीय अतिथि राजकुमार विजय शर्मा महोत्सव स्थल पर पधार कर अपने अपने आसनों को ग्रहण कर चुके हैं और अब प्रस्तुत हैं राजकुमार के स्वागत में अद्भुत नृत्य और संगीत। महाराज, आपके आदेश की प्रतीक्षा है।
2: आदेश है, कार्यक्रम आरंभ किया जाए।

0: वाह वाह अरण्यक, नर्तकी की पदगतियों और अनावृत हाथों से लगता है कि वो अत्यंत ही सुंदर है, परंतु मुखड़े पर घूंघट व्यवधान बन रहा है।
1: चिंता न करो, वो आगे आकर महाराज और राजकुमार को प्रणाम करेगी और फिर अपने चेहरे से घूंघट उठाएगी।
0: अरे हाँ, तुमने सही कहा, अब वो घूंघट उठा रही है।
1: ये कहीं भुवन मोहिनी तो नहीं?
0: क्या कह रहे हो, तब तो अनर्थ हो जाएगा।
1: अरे ये तो वही है,
0: भुवन मोहिनी।
1: हाँ
0: तो फिर उठो।
1: क्यों?
0: युवराज को यहाँ से दूर ले चलें।
1: अरे अब ये प्रकरण हमारे हाथ से निकल चुका है।
0: अच्छा तो फिर देखो कि युवराज की प्रतिक्रिया क्या है।
1: लगता है युवराज ने भुवन मोहिनी को पहचाना ही नहीं।

कितना सुंदर स्वर है, कहीं ये भुवन मोहिनी तो नहीं? ओह, ये तो मेरी मेरी प्राण प्रिया ही है।

0: कितनी विडंबना है कि ऐसे समय में जब मेरी प्राणेश्वरी गीत के माध्यम से अपनी असह्य पीड़ा मुझे सुना रही है, मुझे अपने पास बुलाने का प्रयत्न कर रही है, उस समय मैं राजसी बंधनों में जकड़ा हुआ हूँ।
1: कितनी पीड़ा है सखी भुवन मोहिनी के स्वर में। मैं देख रही हूँ कि राजकुमार विजयश्रवा भुवन मोहिनी की पीड़ा से कितने एकरस हो चुके हैं। मानो ये उन्हीं के लिए गाया जा रहा हो।
2: वाह, तुम्हें धन्यवाद है भुवन मोहिनी, तुम अपने संगीत नृत्य

0: राजकुमार विजय श्रवा पवन मोहिनी की पीड़ा से कितने एक रस हो चुके हैं। मानो मानो ये उन्हीं के लिए गाया जा रहा हो।
1: वाह, तुम्हें धन्यवाद है भुवन मोहिनी, तुम अपने संगीत नृत्य से राजकुमार का हृदय जीत रही हो। अवश्य ही मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, परंतु मैं देख रहा हूँ कि राजकुमार भुवन मोहिनी की ओर वैसे ही खींचे जा रहे हैं जैसे चुंबक की ओर लोहा खींचता है। भय लग रहा है कहीं भुवन मोहिनी की कला पर राजकुमार कुछ अधिक ही मोहित न हो जाए।
2: भुवन मोहिनी, अर्धरात्रि की इस निस्तब्ध वेला में हृदय को चीर देने वाली तुम्हारी ये विहाग रागनी ऐसे लग रही है मानो कोई देवकन्या शाप वशात स्वर्ग भ्रष्ट होकर अपने जीवन की करुण गाथा सुना रही हो। अब मैं अधिक समय तक यहाँ नहीं ठहर सकता, नहीं देख सकता अपनी जीवन दाहिनी को इस प्रकार अश्रु निर्झर करते।
1: क्या हुआ युवराज, आप चल दिए?
2: महाराज, चौथा प्रहर होने को है, अब विश्राम चाहता हूँ।
1: नृत्य रोक दिया जाए।
3: बहुत सुंदर, अति सुंदर, संपन्न हुआ। माननीय अतिथि अब विश्राम हेतु जा रहे हैं, सभी लोग शांतिपूर्वक अपने अपने गृह की ओर प्रस्थान करें।
4: कितना सुंदर गायन हुआ भुवन मोहिनी का। राजकुमारी, ये है आपका रथ, इधर आइए।
0: राजकुमार का रथ कहाँ है?
4: ठीक आपके पीछे।
5: अर्ण्यक?
6: हाँ मित्र,
5: तुम मेरे साथ ही रहना।
6: साथ ही हूँ मित्र, और राजकुमारी जी भी साथ ही हैं।
5: साथ ही हैं?
6: हाँ।
5: कहाँ?
6: अरे वो आगे आगे उन्हीं का रथ जा रहा है।
4: सुनो सारथी, रथ को बहुत तीव्र मत भगाना।
0: तुमने ऐसा क्यों कहा सारथी से?
4: ताकि आपका और आपके राजकुमार जी का रथ साथ साथ चले।
6: क्या सोच रहे हैं मित्र?
5: अरे ये पुष्पहार कहाँ से आ पड़ा मेरे गले में?
6: पुष्पहार? अरे हाँ, संभवतः ये लीला आगे वाले रथ से कराई गई है।
4: राजकुमारी जी, देखिए तो, एक चंद्रदेव ऊपर आकाश में हास कर रहे हैं और एक दूसरे चंद्रदेव पीछे रथ से आपका पीछा कर रहे हैं। तनिक देखिए तो पीछे मुड़कर।
0: अरे उनके गले में तो वही पुष्पमाला है जो मैंने पहन रखी थी, वो वहां कैसे पहुंच गई?
4: मैंने फेंकी थी, ठीक उनके गले में जाकर पड़ी। राजकुमार जी, राजकुमारी जी कह रही हैं कि ये उनके पूजा के पुष्प हैं, आप स्वीकार करेंगे ना?
6: अरे मित्र, उत्तर दीजिए ना।
5: मैं क्या बोलूं मित्र, मेरी स्थिति तो दो नावों पर सवार व्यक्ति जैसी है।
6: तात्पर्य?
5: एक ओर मेरी प्रिया भुवन मोहिनी और दूसरी ओर अनुपम सुंदरी राजकुमारी जो मन ही मन मेरा वरण कर चुकी है।
6: अरे मित्र, ये बाद में सोचना, पहले उस दासी के प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। अरे देवी जी, राजकुमारी जी से कहिए कि राजकुमार जी को उनका पुष्प स्वीकार है।
4: धन्यवाद, बहुत सोचकर उत्तर दिया, चलो फिर भी मान लेते हैं। अब कृपा करके उनसे ये भी कह दीजिए कि भूले नहीं, ऊपर चंद्रदेव उनके इस कथन के साक्षी हैं।
6: अरे देवी जी, आप चिंता न करिए, ऊपर चंद्रदेव हैं, नीचे मैं भी हूँ।
5: क्या कह रहे हो मित्र?
6: अरे मैं तो साक्षी की बात कर रहा था।
0: अनुकूल समय आने दो सखी, फिर स्मरण कराने की आवश्यकता ही न रह जाएगी।
4: अरे अरे, अनर्थ हो गया, सारथी रथ रोको।
7: क्या हुआ?
6: अरे मित्र, राजकुमारी का रथ रुक गया, और ये लो, अपना भी सारथी अत्यंत निपुण है, दोनों ही रथ रुक गए हैं। अब आप नीचे उतरिए।
0: क्या हुआ सखी, रथ को क्यों रुकवा दिया?
4: आपकी मणिमाला।

0: खो गई।
1: क्या? अरे अभी तो मैंने अपने गले से उतार कर तुझे रखने के लिए दिया था, तूने पेटी में क्यों नहीं रखा था? कहीं कहीं मार्ग में तो नहीं गिरा दिया?
0: कह नहीं सकती।
1: तो फिर रथ वापस लौटाओ और पीछे जाकर खोज करो।
2: अरण्यक? हाँ, क्या हुआ? आज्ञा दीजिए मित्र, अभी पता लगाता हूँ।
3: चलो मैं भी चलता हूँ।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं,
0: यही देखिए ना, यहीं पे तो यहीं पे हो सकती है।
2: हम जान सकते हैं कि रथ क्यों रुक गया यहाँ पर?
0: राजकुमारी जी की मणिमाला खो गई है।
2: अरे किससे खो गई?
0: मुझसे।
2: ये तो होना ही था।
0: क्या मतलब?
2: अरे जिस राजकुमारी की सखी आप जैसी हो तो मणिमाला को तो खोना ही था।
0: अरे मुझ पर आरोप लगाने वाले आप कौन हैं?
2: मैं राजकुमार विजय शर्मा जी का बाल सखा हूँ अरण्यक, इसलिए अनुभव से कह रहा हूँ। और देवी जी आप कौन हैं?
0: मैं भी कम अनुभवी नहीं हूँ।
2: वो तो लग ही रहा है।
0: मैं राजकुमारी जी की सबसे प्रिय सखी हूँ।
2: अच्छा?
0: हाँ।
3: अरण्यक चलो मणिमाला को खोजने में सहायता करें।
0: आप युवराज, जब आप सहायता करेंगे तो मिल जाने में कोई संदेह ही नहीं है।
3: किधर गिरी होगी?
0: राजकुमार वो उधर दूर उस तरफ।
2: ओ, राजकुमार जी तो मणिमाला खोजने में लग गए, अब हम दोनों सखा सखी को क्या करना होगा?
0: ढूंढते ढूंढते कहीं दूर से सब देखना होगा।
2: अच्छा तो फिर आओ।
0: हाय, राजकुमार जी मेरी सखी के समीप जा रहे हैं।
2: दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं।
0: हमारी लाडो लजा रही हैं।
2: और मेरे सखा और पास आ रहे हैं।
0: आगे कुछ मत बोलो।
2: लो चुप हो गया।
0: ऊपर चंद्रदेव को निहारो।
2: ये लो।
3: आह चंद्रहासिनी, अद्भुत सौंदर्य है तुम्हारा।
4: ये रूप का देवता जो मेरे सामने खड़ा है, न जाने कितनी नारियों का महान आकर्षण बना होगा, न जाने कितनी चंद्रमुखी नारियां इसके प्रेम से निराश होकर या तो इसे अभिशाप दे रही होंगी या दर्द भरी टीस लिए हृदय के टूटने का परिणाम भुगत रही होंगी।
3: चंद्रहासिनी, तुम्हारी ये गुथी हुई केश राशियां जो त्रिविध समीर के झोंके खा खा कर नाच पिलाई हुई नागिन की तरह लोचे खा रही हैं, तुम्हारी हल्की बासंती रेशमी साड़ी सुरभित द्रव्यों के मद को वायुमंडल में बिखेरती हुई मेरी सुप्त रति भावना को जागृत कर रही है।
4: ओह, मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रही हूं, परंतु मैं जानती हूं कि पुरुष सौंदर्य मद में आकर अनेक कोमल प्रसून हृदय समर्पित नारियों के सर्वस्व समर्पण को ठुकरा देता है। यदि ऐसे पुरुष की समर्पित अभिलाषाओं पर मैं प्रहार करूं तो?
0: आए!
2: क्या हुआ?
0: मेरी सखी तो हमारी ओर आ रही है।
2: अच्छा,
0: आओ यहीं विशाल शिला के पीछे छुप जाएं।
2: अरे रुको, तो मेरे सखा उनसे कुछ कह रहे हैं।
3: इंद्रप्रस्थ नगर की राजपुत्री को धारा नगरी के युवराज का अभिवादन स्वीकार करना होगा। ये तो आमंत्रित अतिथि का सबसे बड़ा अपमान है। राजकुमारी, अभिवादन स्वीकार हो।
4: प्रणाम राजकुमार।
3: हमारी ये अमूल्य एकांत घड़ियां वरदायिनी सिद्ध हो।
4: कुछ कहा आपने?
3: नहीं तो।
4: भाभी सम्राट, हम क्षमा चाहते हैं आपसे।
3: क्यों, किस लिए राजकुमारी? मुझे तो अपराध का ज्ञान ही नहीं, फिर क्षमा कैसी? नहीं बताएंगी? चलिए अपने मणिमाल के विषय में ही बताइए, कब और कहां गिरा था और कैसे?
4: मुझे स्वयं कुछ ज्ञात नहीं है देव। वो तो मेरी सखी थी जिसने खो जाने की चर्चा चलाई।
3: क्या मैं जान सकता हूं कि उस निर्जीव मणिमाला से क्या अपराध हो गया था कि राजकुमारी ने उसे अपने हृदय से दूर किया?
4: देव, इसमें मेरा नहीं, मेरी सखी का हठ था, उसे निकाह था

0: क्या?
1: जो अपने हृदय स्थल को इन मणियों की माला से सजाएगा वो प्रत्येक नेत्र की प्रिय अतिथि बनेगी और साम्राज्य भी।
0: चंद्रहासिनी,
1: क्या भाभी सम्राट मुझ पर सदैव होकर मुझे एक दो प्रश्न करने का अधिकार देंगे?
0: अवश्य राजकुमारी।
1: मुझे भय है कि मेरा प्रश्न कहीं भाभी सम्राट को ना रुचे और मुझे कोप भाजन बनना पड़े।
0: नहीं नहीं, शंकाओं का समाधान आवश्यक है।
1: तो फिर कहती हूँ, मुझे संदेह है कि आज की राजसभा में भाभी सम्राट को मनोरंजन के स्थान पर मनोवेदना प्राप्त हुई है।
0: वो कैसे राजकुमारी?
1: स्वयं अपने नेत्रों से देखा कि कैसे भुवन मोहिनी संगीत लहरियों में अतीत के वेदनापूर्ण संस्मरणों को भावात्मक ढंग से व्यक्त कर रही थी और कैसे उस पर आपकी भावभंगिमाएं मानो किसी प्रच्छन्न प्रेम कथा को प्रकट कर रही थी। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन सी भाग्यशालिनी रमणी है जिसने भारत के भाभी सम्राट के हृदय पर वियोग, तीस और जलन के बीज बोए हैं? यदि मेरे प्रश्न ने भाभी सम्राट को विचलित कर दिया हो तो मैं क्षमा याचना करते हुए अपना प्रश्न लौटा लेती हूँ।
0: नहीं राजकुमारी, तुम्हारा प्रश्न उचित है। प्रत्येक नर नारी के जीवन में एक ऐसा क्षण अवश्य उपस्थित होता है जब वो अपना सर्वस्व एक दूसरे के लिए समर्पित करते हैं। किंतु राजकुमारी, प्रेम की गोपनीयता में जो शांति और संतोष है वो उसके प्रकाशन में नहीं। प्रकाशन करने में तो प्रेम तुच्छ और स्वार्थपूर्ण हो जाता है। इस प्रथम परिचय में ही अपने जीवन के गोपनीय तथ्यों को कैसे प्रकट करूं? राजकुमारी, आज की रात कितनी रम्य और परस्पर परिचय की मधुर भावना से कितनी सलोनी प्रतीत हो रही है। गिनती किए थोड़े से क्षण मेरे जीवन में अमूल्य संस्मरणों के प्रतीक बनेंगे जिन्हें भुलाया ना जा सकेगा।
1: यही तो मैं भी सोचती हूँ, किंतु
0: किंतु क्या?
1: यही कि पुरुष मधुर हृदय न जाने कितने बार ऐसे मधुर मिलनों को भूलते हुए पाए गए हैं।
0: ये तो अपवाद मात्र है राजकुमारी, कोई निश्चित सिद्धांत नहीं। ज्ञात होता है कि राजकुमारी का वो मूल्यवान हृदय हार सचमुच खो गया है, क्योंकि आपकी सखी और मेरे सखा दोनों ही उसे ढूंढते हुए न जाने कहाँ चले गए।
1: हाँ भाभी सम्राट, वो हृदय हार मेरे लिए सचमुच में अमूल्य है और कोई भी अमूल्य वस्तु एक बार खो जाने पर पुनः प्राप्त नहीं होती।
0: चंद्रहासिनी, ये मेरा हृदय हार तुम ग्रहण करो।
1: ये क्या, आपने अपनी मणि जड़ित माला मुझे पहना दी? इसके बदले क्या मैं कुछ दे सकती हूँ? अपना हाथ इधर देने की कृपा करेंगे क्या?
0: क्यों,
1: ये मेरी ओर से प्रेमोपहार।
0: अंगूठी?

0: भुवन मोहिनी। इसकी चौथी कड़ी का प्रसारण अभी आपने सुना संग्रहालय से के अंतर्गत। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 12:58 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्योपुर जिले स्थित कूनो नेशनल पार्क में सफारी कर चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। राष्ट्रपति आज अपना 5 दिवसीय प्रदेश दौरा समाप्त कर श्योपुर से ग्वालियर होते हुए नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ ही उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा है। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने संस्कृत श्लोक साझा करते हुए कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ मुर्गन शाम को भोपाल कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे। डॉ मुर्गन कल देवास जिले के दौरे के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक पोस्ट में कहा कि गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के अटूट विश्वास से प्रदेश सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहा है। हमारी सरकार अग्रणी मध्य प्रदेश की भावना के साथ हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह आज भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। समारोह में अकादमी द्वारा प्रकाशित प्रगति पथ ब्रोशर और द्विमासिक पत्रिका रचना के विमोचन के साथ ही शिक्षाविदों को सम्मानित भी किया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक जबलपुर, रीवा और सागर संभाग के कुछ जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। प्री मानसून के चलते आज प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 1:01 अब प्रस्तुत है स्वास्थ्य दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान है।

नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनुराधा पिंड से। श्रोताओं, आजकल डिजिटल युग है, तो स्वास्थ्य सेवा भी डिजिटल क्यों ना हो। हम सभी को जरूरत पड़ने पर डिजिटल हेल्थ सर्विस का लाभ उठाना चाहिए। ये एक ऐसी सेवा है जिसमें इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य तकनीकी उपकरणों की मदद से घर बैठे या आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। टेलीमेडिसिन और टेलीहेल्थ के माध्यम से घर बैठे वीडियो कॉल या फ़ोन के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में बात कर सकते हैं या सलाह ले सकते हैं, और मोबाइल ऐप्स के इस्तेमाल से डॉक्टर के पर्चे को अपलोड कर घर बैठे दवाइयां भी मंगवा सकते हैं। वहीं स्मार्टफोन ऐप्स, स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर हमारे रोज़ाना चले गए कदमों, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और हमारी नींद का पूरा रिकॉर्ड हमें देती है, जिसके ज़रिए हम वक्त रहते समझ सकते हैं कि हमारी सेहत का मीटर ठीक चल रहा है या नहीं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा भी हम सभी के लिए उपलब्ध है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ABHA, या इसे आभा नंबर भी कहते हैं। जिस तरह हम बैंक लॉकर में अपने कीमती सामान को रखते हैं, उसी तरह आपके स्वास्थ्य से संबंधी सभी रिपोर्ट्स, डॉक्टर के पर्चे डिजिटल हेल्थ लॉकर में रहते हैं। यानी कि पूरा लेखा जोखा कंप्यूटर पर सुरक्षित रहता है, तो आपको अस्पतालों के पर्चों को लेकर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। बस आपको 14 अंकीय पहचान की ज़रूरत है, जिसे देश भर में किसी भी अस्पताल में बताने पर आपको आपके स्वास्थ्य की पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। आप ये खाता आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वेबसाइट पर जाकर अपने आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर बना सकते हैं, या फिर मोबाइल ऐप पर आभा डाउनलोड करके भी अकाउंट बनाया जा सकता है। ये खाता न सिर्फ स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है, बल्कि कागज पत्री रखने की ज़रूरत को भी कम करता है। लेकिन हम आपके आनंद में कोई कमी आने नहीं देंगे। सुनवाते हैं आपको ये गीत।

हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

0: श्रोताओं, बारिश की दस्तक हो चुकी है और ऐसे में कई बार बच्चों को बड़ी दिक्कत होने लगती है। खास तौर पे देखा जाता है कि कभी सर्दी, जुखाम, फिर कभी कह रहे हैं कि पेट दुख रहा है। तो इन सब मौसमी समस्याओं का समाधान हम कैसे करें, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर पंकज जायसवाल जी। आप होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। आज हम इनसे बात करेंगे बाल्यावस्था की सामान्य समस्याएं और होम्योपैथिक चिकित्सा। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि होम्यो चिकित्सा पद्धति क्या है और किस तरह से इलाज किया जा सकता है।
1: होम्योपैथी छोटी बीमारियों के लिए नहीं है। ऐसा जो सोचते हैं कि केवल सर्दी, जुखाम या मीठी गोलियां हैं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े से हमारे मानसिक बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या डाइजेशन की कोई भी समस्या, किसी भी स्किन की समस्या, महिलाओं की समस्या, सभी पर बहुत ही अच्छा जो है इसका योगदान भी है और उपचार भी है।
0: ज्यादातर अभिभावक बच्चों को कोई समस्या होते ही अन्य किसी पद्धति में चले जाते हैं, तो क्या होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बच्चों के लिए सुरक्षित है?
1: बिल्कुल सुरक्षित है। किसी भी तरीके से किसी भी अवस्था में होम्योपैथी का उपयोग किया जा सकता है। बच्चों को लेकर के गार्जियन उनके प्रति प्रेम रहता है, अपने आप को ये मान लेता है कि नहीं, मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। तो हम इस बात में कहेंगे कि होम्योपैथी का जो उपयोग है, जो दवाइयों का जो चुनाव किया जाता है, जो आपके लक्षण के आधार पर उसका चुनाव होता है, सर्दी, खांसी, निमोनिया, जैसे बारिश के समय में क्या लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, सर्दी, जुखाम, गले में प्रॉब्लम आ जाता है, या उसको बहुत तेजी से फीवर आ जाता है, निमोनिया की दिक्कत हो जाती है, तो बच्चों को उसको होम्योपैथी प्रथम दृष्टया में लोगों को दिखाना चाहिए। अगर इमरजेंसी कोई बचती है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। हम वहाँ पर किसी भी विषय में ये बात नहीं कहता हूँ कि हमें उनका सहारा नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमारा ये सोचना है कि ज़्यादा भारी दवाइयों को एक बार में बच्चों को देने से पहले होम्योपैथी का जरूर सहारा लेना चाहिए।
0: सामान्य तौर पर बच्चों में किस तरह की समस्याएं हैं जो देखने में आती हैं, सुनने में आती हैं, और होम्योपैथी इसमें कितनी कारगर रहती है?
1: सामान्य तरह से अभी जैसे बारिश का मौसम आ रहा है, हर मौसमी बीमारियां होती हैं, बारिश के मौसम में संक्रमण ज़्यादा होता है, क्योंकि उस समय बारिश के समय में बहुत सारे हमारे जीवाणु हैं, फंगस हैं, ये हमारे गंदगी की वजह से घरों में और किसी भी तरीके से काफ़ी नमी की वजह से हमारे शरीर में उनका उत्पन्न हो जाता है। तो अगर हम जो है रोकथाम चाहते हैं तो सबसे पहले सुरक्षा हमारी ज़रूरी है। ज़रूरी किस तरीके से है कि बारिश का मौसम है, बचें, शाम के समय भीगते हुए आए और पंखे के नीचे

0: हो गए, सर्दी हो जाता है। सर अगर ठंडा हुआ, सर अगर हमारा किसी तरीके से नमी बनी रही, तो वो हमें गले को वायरल को लेकर के बहुत तेजी से संक्रमण फैल जाता है। तो बच्चों को बारिश में भीगना हम मना नहीं करते, भीगना चाहिए, लेकिन बच्चों के शरीर से जो पानी रहता है उसको तावल से अच्छे से साफ करके, सोते समय हल्का सा कुनकुना सरसों का तेल है उसको बॉडी के हर पार्ट में उसको थोड़ा सा मालिश करना चाहिए, लगाना चाहिए, हल्के कपड़े पहनना चाहिए। तो रोकथाम में कुछ होम्योपैथी की जैसे दवाइयां शुरुआती दौर में गले में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी जुकाम की आशंका लग रही है या बुखार आने का मुझे लग रहा है, शरीर में टूटन आ रहा है, तो वहाँ पर हमारे यहाँ दो दवाइयों का बहुत अच्छा जो है उसका परिणाम है, जैसे आर्सेनिक है और मर्कसॉल, इनको दवाइयों को जरूर दे देना चाहिए, एक ही डोज में या दो डोज में ही उसका असर आ जाता है।
1: जी, जैसे आपने बताया कि बरसात में बच्चों में संक्रमण का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो बच्चों में हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, मैंने अभी जो दवा का जिक्र किया, मैंने आर्सेनिक एक अपने में इतनी बड़ी दवा है कि अगर हमने उसको सुबह खाली पेट 3 दिन दवा दे दिया, तो बारिश के मौसम में जितने फंगल इन्फेक्शन होते हैं, खाने में कुछ दिक्कत आ जाती है तो फूड पॉइजनिंग की दिक्कत आ जाती है, बारिश में भीग गए तो लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, या किसी भी तरीके से कुछ भी अगर उसमें बात आती है, तो आर्सेनिक अपने में पूरी दवाई है।
1: जी।
0: 3 डोज उसको सुबह खाली पेट 3 दिन ले लें, लेकिन अगर उस प्रतिरोधक दवाइयों के बाद किसी भी तरीके से अगर वो भारी समस्या में या उसका जो रोग है वो बढ़ रहा है, तो जरूर डॉक्टर से परामर्श ले।
1: तो ये कितने समय तक लेना चाहिए और कितने समय तक लेने के बाद इसे बंद कर देना चाहिए?
0: आर्सेनिक दवाइयां सिंगल डोज है 200 पावर में, 3 दिन लेना चाहिए खाली पेट सुबह 3 दिन, 2 से 3 महीने के बाद फिर से रिपीट कर ले, घर के सभी सदस्य ले सकते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो।
1: आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि और किस तरह के उपाय हो सकते हैं जिनसे बच्चों को बार बार बीमार पड़ने से बचाया जा सके।
0: ये बात करूंगा मैं मोबाइल के बारे में, बच्चे की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, चक्कर आ रहा है, कोई भी टेस्ट कराने के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है। अभिभावक से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को मोबाइल में क्या चीजें उनके लिए जरूरी है उन पे निगरानी रखें और कितना समय दें। सुबह का नाश्ता सबसे पहली ड्यूटी है कि सुबह उठाना, उसको योगा प्राणायाम अनुलोम विलोम सूर्य नमस्कार जैसा हम सिखाएंगे बच्चा वैसे बनेगा।
1: होम्योपैथिक दवाइयों के साथ में क्या खाने पीने का भी कोई परहेज रहता है?
0: बीमारियां किस तरीके की है, जैसे अब डाइजेशन की कोई बीमारियां है, दस्त का पेशेंट आ गया, तो हम दस्त में थोड़ी कहेंगे कि कुछ चीज खाना है, तो दस्त के हिसाब से जो मूंग की खिचड़ी खाने को डॉक्टर बोलता है उसके पीछे रीजन होता है। मूंग और चावल जो पका करके जब बनाते हैं तो उसमें एक श्लेष्म बनता है जिससे हमारे आंतों को पचाने में सुपाच्य होता है और वो दस्त को रोकता भी है। तो जो बीमारियां जिस तरीके की रहती हैं उसमें रोकथाम खाने का जरूर रहता है, हर बीमारियों में नहीं रहता है। होम्योपैथी में ये बात जरूर करते हैं कि भाई होम्योपैथी में तो ये नहीं खाना, कच्चा लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ये समाज में एक होम्योपैथी के प्रति एक धारणा है कि यार बड़ा वहाँ पर परहेज बताया जाता है। होम्योपैथी का जो सिद्धांत है ये अपने में इतनी मजबूत है कि इसमें वो छोटे छोटे खानों की चीजों से वो उसकी बीमारियों की जो क्षमता है ठीक करने की वो कमजोर नहीं पड़ती है, बशर्ते हमें ये समझना जरूर होता है कि कौन सी बीमारियों को किसमें हमें रोकथाम करना है।
1: अब हम बात करते हैं जो बच्चे स्कूल जाते हैं, बाहर रहते हैं काफी समय तक, खेलते कूदते हैं, तो उन बच्चों के संक्रमित होने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, खास तौर पर बारिश के मौसम में, तो उसे बचाने के लिए होम्योपैथी में क्या कोई कारगर उपाय है?
0: सबसे पहले तो हम जितनी बीमारियां हैं अपनी सुरक्षा खुद से करें, जैसे बारिश के मौसम में संक्रमण ज्यादा रहता है उसका कारण रहता है कि नमी, ह्यूमिडिटी बॉडी में मौसम में होने के नाते कहीं भी हर जगहों पर नमी की वजह से फंगस का बढ़ने का जो सिरा होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए कभी भी कुछ काम करें तो अपना साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि साफ जितना रखेंगे संक्रमण उतना कम होगा। बड़े बच्चे हैं, अपनी बातों को डॉक्टर के सामने बता सकते, छुपाने की जरूरत नहीं है, जैसे बड़े बच्चे किसी कुछ बड़े बीमारी में कुछ रहते हैं तो छुपा ले जाते हैं और वो छुपाने के साथ में बताते सोचते हैं कि गार्जियन को बताऊंगा तो वो डांटेंगे मुझे, तो जो बच्चे हैं इसलिए गार्जियन से बताते नहीं, तो बताना जरूर चाहिए, नहीं वो गंभीर समस्याओं का संक्रमण बारिश के समय में होता है। वायरल इन्फेक्शन, इसमें सबसे बड़ी बात जो हमने देखा है एक निमोनिया, सर्दी जुकाम हुआ, खांसी आ रही है, धीरे से भीग

0: क्या बारिश में आए सो गए, पंखे की हवा लगा, लंग्स पूरी तरीके से कंजेस्ट हो गए। हम यहाँ पर सचेत करूंगा कि अगर ऐसी दिक्कत है तो डॉक्टर से परामर्श लें। अब रही बात होम्योपैथी की, बच्चों में अगर कुछ इसी तरीके से है तो हम सब नर्सिंग मेडिसिन बोलते हैं सैंडोगस नाइग्रा 30 potency में 3 बार। बड़े बच्चे हैं, कभी भी सर्दी जुखाम बुखार खांसी के साथ में अगर किसी भी समस्या का रोग अगर उत्पन्न हो रहा है तो फेरोमफॉस 6x, इसको जरूर याद कर लें। मैं इस दवा के बारे में इतनी कॉन्फिडेंस में और अपने 15 सालों का अनुभव मैं आपसे शेयर करूंगा कि फेरोमफॉस 6x अगर मैंने बच्चों को दे दिया, चाहे छोटे बच्चों को दे दिया चाहे बड़े बच्चों, बिल्कुल भी आप इस दवाई को दे दीजिए पूरे कफ को जो कंजेस्ट है, पूरे धीरे धीरे बाहर कर देगा आपकी खाने की क्षमता, आपकी जो बुखार है जो कंजेशन है धीरे धीरे वो अपने आप में नॉर्मल कर देगा।
1: हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत छोटे जो नवजात बच्चे रहते हैं तो जब हम उन्हें दवाई दी जाती है तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए?
0: देखिए नवजात बच्चे, हम होम्योपैथी में 10 दिन का बच्चा हुआ और दवाई दीजिए, अब उसमें दवाइयाँ देना उचित है? बिल्कुल दिया जाता है, तो उसकी माँ साथ में रहे, तो क्योंकि वो माँ ही सब कुछ सिम्टम उसका बता सकता है कि मेरा बच्चा किस तरीके का हरकत करता है
1: जी,
0: दस्त कितनी बार किया, दस्त का कलर क्या था, खांसी किया तो किस तरीके से उसके सिम्टम आए कि सांस फूल रही थी, शरीर नीला पड़ गया, डिस्निया की कंडीशन हो जाती, निमोनिया आ गया। हमारा डॉक्टर का अब मैंने स्टेथोस्कोप लगाया, उसको समझा, देखा, सब कुछ समझ के उसको दवाइयां दिया, क्योंकि बच्चा बता नहीं सकता अपने मुंह से। छोटे बच्चों के लिए देर नहीं करना चाहिए, दस्त कई बार हो रहे हैं, एक बार हुआ तो ठीक है, बुखार तेज आ गया, या कभी कभी बुखार इंसेफ्लाइटिस एक कंडीशन होती है कि मस्तिष्क ज्वर, ये कभी अगर बच्चों को छोटे समय पर अगर वो बीमारियां हुआ, बुखार आया, अगर सही समय पर उसकी दवाइयां नहीं मिली तो बच्चों को देखते देखते अचानक उसको इतनी गंभीर रूप में ताप आ जाएगा उसके शरीर में कि वो मुंह से बड़बड़ाने लगता है, छटपटाने लगता है और गार्जियन उसमें बेचैन हो जाता है कि मेरे बेटे को क्या हो। तो कुछ समस्याएं होती हैं, उसको अभिभावक को जब डॉक्टर के पास जाए, जो लक्षण आपने जो समझा है अपनी भाषा में डॉक्टर को, अच्छी भाषा में आप बताइए, डॉक्टर खुद समझेगा और आपका वो लक्षण बताना कितना गंभीर है और कितना कारगर डॉक्टर के लिए सिद्ध हो सकता है, इस बात को छुपाना नहीं चाहिए।
1: ये बताइएगा कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति और सामान्य जीवन शैली में अगर हम सुधार करते हैं तो किस तरह से हमें क्या बेहतर परिणाम उसके मिल सकते हैं?
0: देखिए हम तो होम्योपैथी के डॉक्टर हूँ, तो होम्योपैथी की रही बात, हमारे लिए हर बीमारियां अपने आप में बड़ी ही सैद्धांतिक और तथ्यात्मक रूप से लक्षणों के आधार पर इसका उपचार किया जाता है और इसको बहुत ही गहन चिकित्सा के रूप में गहन करके इसकी दवाइयों का सिलेक्शन होता है। अपने श्रोताओं से जरूर कहूंगा कि होम्योपैथी दवाइयों का एक बार जरूर चुनाव करें, क्योंकि ये किसी भी रोग को दबाती नहीं है, ये उनके लक्षणों के आधार पर, उसके जो सिम्टम आप बताते हैं उनके आधार पर चिकित्सक जो है चिकित्सा करता है। जैसे आप कहेंगे टीबी की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, बीमारियों के नाम से ये होम्योपैथी नहीं जानी चाहिए, लक्षणों के आधार पर जानी जाती है।
1: जी, हमसे बात करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आइए अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अब समय हो गया है क्रम, उसका नाम है हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी का। आज हम इसमें बात करेंगे कॉन्टैक्टलेस हेल्थ टेक्नोलॉजी की। श्रोताओं, कॉन्टैक्टलेस हेल्थ टेक्नोलॉजी को सरल भाषा में समझना चाहें तो इसे संपर्क रहित स्वास्थ्य तकनीक कह सकते हैं। इसमें शरीर को छुए बिना या किसी तार या उपकरण को लगाए बिना भी दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन को मापा जा सकता है। इसके लिए मरीज के गद्दे के नीचे पतले सेंसर लगाए जाते हैं जो शरीर की बारीक हलचल पर भी नज़र रखते हैं। इसके अलावा फेशियल स्कैनिंग कैमरा आपके चेहरे के रंग या त्वचा में होने वाले बदलाव से तनाव के स्तर या दिल की धड़कन को भी माप सकता है। ये टचलेस तकनीक जल्द ही सब जगह उपलब्ध होगी और आशा है इसमें सभी लोग आनंदित होंगे।

this message, eh?

0: बदलते मौसम में सुरक्षित रहने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कच्ची चीज़ें खमकाए, पत्ता गोभी और सलाद जैसी कच्ची सब्जियों को खाने से बचें और अच्छे से उबाल कर या पका कर खाएं, और साथ ही पानी भी बहुत सारा पीते रहिए। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको स्वस्थ रखेगा। तो बस अब अनुराधा पेंडसे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम का प्रसारण अभी आपने सुना, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं, और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली तान।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 1:30 हुए हैं। ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में आप सुनने जा रहे हैं अनसुईया बोरलिया से कुछ मालवी गीत। कार्यक्रम का आरंभ इस लोक भजन से।

इसी गंगा गीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र का योगदान था। 1:45 हुए हैं, ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में आप सुनने जा रहे हैं राम स्वरूप साकेत से चंद गज़लें। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। कार्यक्रम का आगाज़ हम कर रहे हैं अहमद फराज की इस गज़ल से।

0: और इसी गज़ल के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 1:57 होने जा रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
4: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
3: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ।
4: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
3: पानी को रखें हम हमेशा ढककर,
4: और उसको पिएं छानकर उबालकर।
3: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
4: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
3: आओ मिलकर करें प्रयास,
4: शुद्ध पानी हो सबके पास।
5: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
2: आओ मिलकर पेड़ लगाए, धरती की खुशियाँ लौटाए।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार

0: शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। 2 बज चुके हैं, आप सुनिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का ये पहला नगमा आ रहा है ऐ दिल है मुश्किल फिल्म से। अरिजीत सिंह ने इसे गाया है, अमिताभ भट्टाचार्य ने शब्द दिए हैं और धुन तैयार की है प्रीतम ने।

ये गीत आप सुन रहे हैं श्रेय घोषाल और अरिजीत सिंह का गाया हुआ। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और धुन तैयार की है। प्रीतम ने, फिल्म का नाम है एजेंट विनोद।

ये गीत आपने सुना एजेंट विनोद फिल्म से। श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने इसे अपनी आवाज़ें दी थी। अमिताभ भट्टाचार्य इस गीत को लिखने वाले थे और धुन तैयार की थी प्रीतम ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और फिल्म संगीत

0: कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। 2:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की और कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी अहम भूमिका निभा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति का कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: श्योपुर के बाद राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ग्वालियर पहुंची, जहां वायुसेना के विमान से ग्वालियर से दिल्ली रवाना हुई। इसके साथ ही उनका 5 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा संपन्न हुआ। ग्वालियर विमानतल पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाहा एवं महापौर शोभा सिकरवार ने उन्हें विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुँच रहे हैं। भोपाल पहुँचकर श्री मुर्गन शाम को भोपाल कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे। कल डॉक्टर मुर्गन देवास जिले की कन्नौद तहसील स्थित ग्राम डोकाकुई पहुंचेंगे। यहां सुबह वे सांसद आदर्श ग्राम योजना यानी MPLAD के तहत स्वीकृत विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसी के तहत UCC ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक भोपाल स्थित नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी में चल रही है। बैठक के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अपने अपने सुझाव और प्रस्तुतियां कमेटी के समक्ष रख रहे हैं। इसके बाद मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। वहीं दोपहर बाद विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। अब रुख करते हैं मौसम का। मानसून की रफ्तार धीमी होने और प्री मानसून गतिविधियों में कमी के कारण तापमान और उमस दोनों बढ़ गए हैं। राजधानी भोपाल में आज दोपहर में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, मैहर, अनूपपुर, कटनी और दमोह तथा सागर, विदिशा और अशोकनगर में तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। छिंदवाड़ा जिले में नेशनल हाईवे पर सावरी पुलिस चौकी क्षेत्र में 8 मजदूरों से भरे पिकअप वाहन और बेकाबू ट्रक के बीच सीधी भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 20 अन्य घायल हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के अस्पतालों, होटलों और व्यावसायिक भवनों में निर्धारित मानदंडों और नियमों का पालन जांचने के लिए निरीक्षण दल का गठन किया गया। पन्ना जिले में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सूचनादाता प्रोत्साहन योजना लागू की गई है, जिसके तहत सही सूचना देने वाले को 1,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। आगरमालवा के सुसनेर में गीता भवन निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया। और नर्मदापुरम के पचमढ़ी में लगने वाला प्रसिद्ध नागद्वारी मेला और यात्रा 7 अगस्त से 17 अगस्त नागपंचमी तक आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 2 बजने जा रहे हैं। आप दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन ₹5,000 बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में ₹5,000 की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, BJD और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में

0: अभी 52 चीते हैं जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज CISF के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि CISF के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल STF ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
2: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
1: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आप

आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टार्मर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा।
नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से

0: आकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:30 हुए हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आनंद बख्शी के संगीत निर्देशन में इस गीत को शब्द दिए थे आनंद, माफ़ कीजिएगा, आनंद बख्शी ने शब्द दिए थे और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गाया था किशोर कुमार ने और फिल्म का नाम महबूब की मेहंदी। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे ये सभी दोस्त पाकिज़ा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि रक्षित एवं उनका पूरा परिवार इसी गीत को सुनना चाहता था। करूला मुरादाबाद से अगली चिट्ठी आई है अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान की, और इसी गीत को सुनना चाहते थे सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी।

अमित त्रिवेदी का गाया हुआ गीत उन्हीं के संगीत निर्देशन में बोल अमिताभ भट्टाचार्य की फिल्म का नाम ब्लैकमेल। ख्वाहिशमंद हमारे दोस्त उनके नाम इस गीत के बाद।

आपकी फरमाइश के इस गीत को सुनवाने के लिए हमारे सभी दोस्तों ने चिट्ठी लिखी थी। ये हैं दत्तरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिगारपुर से सालिक पुजारी, अमरावती महाराष्ट्र सरोज चौक से ये ख़त आया है कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुस्तबा खान और राऊ भाई शाह शहीद भाई, गांधीबाग आकोला से रमेश काटनकर और वैशाली काटनकर ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। अब हम सुनवा रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश, जिनके नाम हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजौरिया। इन्होंने ये चिट्ठी लिख भेजी है पटेल नगर मालोट पंजाब से, कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। ये गीत है तेजाब फिल्म से लिया गया। अमित कुमार और साथियों ने इसे अपनी आवाज़ें दी है। धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, बोल जावेद अख्तर के।

ये गीत आप सुन रहे हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों का गाया हुआ। अप्पू राजा फिल्म से इस गीत को हमने लिया है। प्रेम धवन ने इस गीत को शब्द दिए हैं और धुन है इलैयाराजा की। इस गीत को सुनवाने के लिए चिट्ठी लिख भेजी थी हमारे इन सभी दोस्तों ने, संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, घंटा घर चौक खंडवा से। प्रभाकर जोंघले, आरती जोंघले ने ये चिट्ठी लिख भेजी थी गौतम नगर ज़िला नांदेड़ से। और कार्यक्रम के आखिरी गीत के लिए फरमाइश करता हैं हमारे ये सभी दोस्त, सपना संगीता रोड इंदौर से, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, सुनीता, संगीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। ये चिट्ठी भी इंदौर से ही आई है, गुमाश्ता नगर स्कीम नंबर 71 से। अनिल कवचाले, नेहा फर्नीस, सीमा, सबीहा, पूजा, सुषमा और स्मिता की। इन्होंने सुनना चाहा है श्रेया घोषाल को। गीतकार है कुमार फरहान सईद ने धुन तैयार की है, आवाज़ है श्रेया घोषाल और फरहान सईद की। फिल्म का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड।

0: हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म के इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की और कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी अहम भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्री स्टारमर का कहना है कि वे परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुर्गन शाम को भोपाल कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे। डॉक्टर मुर्गन कल देवास जिले के दौरे के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह आज भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। मानसून की रफ्तार धीमी होने और प्री मानसून गतिविधियों में कमी के कारण तापमान बढ़ गया है। राजधानी भोपाल में दोपहर में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी से उमस बढ़ गई है। और फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा संपन्न हो उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:02 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र का योगदान होगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6:00।

कार्यक्रम आजकल का प्रसारण किया जाएगा शाम 6:40 पर। प्रादेशिक समाचार दर्शन आप सुन सकते हैं 6:45 पर। ग्राम सभा का प्रसारण समय रहेगा 7:21 और सुर्खियों में इसे आप सुनेंगे रात 8:00। आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। प्रसारण समय रहेगा रात्रि 9:30 और आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी कार्यक्रम आपकी फरमाइश में रात 10:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेंगे 10:30 संगीत गोस्वामी से राग यमन में ख्याल गायन। ये थी संक्षिप्त सी जानकारी उन कार्यक्रमों की जिन्हें आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में सांध्यकालीन सभा में सुन सकते हैं। 3:02 होने को हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी ये सभा संपन्न होती है। मीडियम वेव पर आप हमारी सभा का प्रसारण शाम 5:00 से सुन सकते हैं। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। नमस्कार। DTH के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। अब सुनिए लोक संगीत। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति। कलाकार हैं अनुसुईया बोरेलिया। इनसे आप सुन सकते हैं कुछ मालवी गीत। कार्यक्रम का आरंभ इस मीरा भजन से।

और इसी लोकगीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। अब सुगम संगीत के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं रामस्वरूप साकेत की गाई हुई कुछ गज़लें। कार्यक्रम का आगाज़ इस गज़ल से। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र का योगदान है।

और इसी गज़ल के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। आप सुनिए चित्रपट संगीत।

जिसे तुम भटकना कहती हो ना मानसी, मैं उसे और जानने की तलाश कहता हूं, एक दूसरे को जानने की तलाश। मैं इस जमीन पे भटकता हूं कितनी सदियों से, गिरा है वक्त से कट के जो लम्हा उसकी तरह, वतन मिला तो गली के लिए भटकता रहा, गली में घर का निशान ढूंढता रहा बरसों। तुम्हारी रूह में अब जिस्म में भटकता हूं, तुम्ही से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले।

0: इसी नगमे के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 3:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण किया। इसके साथ ही उनका मध्य प्रदेश का 5 दिवसीय दौरा पूरा हुआ। राष्ट्रपति सुबह 10:30 पर वायुसेना के विमान से ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। श्री मुरुगन शाम को भोपाल कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे, वहीं कल देवास जिले के डोकाकुई में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह आज भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। नर्मदापुरम के पचमढ़ी में लगने वाला प्रसिद्ध नागद्वारी मेला और नागद्वारी यात्रा 7 अगस्त से 17 अगस्त तक नागपंचमी तक आयोजित की जाएंगी। मानसून की रफ्तार धीमी होने और प्री मानसून गतिविधियों में कमी के कारण तापमान बढ़ गया है। राजधानी भोपाल में दोपहर में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी से उमस बढ़ गई है। और फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच रात 10:30 से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से। 4 बज चुके हैं। आप सुनिए उर्दू कार्यक्रम आईना।

लेकिन कान मोहतात रहे। वक्त गुजरता रहा यहाँ तक कि उनकी आंखें भी झपकने लगीं और जहन डूबने सा लगा कि अचानक फिर कोई आहट जैसे दरवाजा खोला गया हो। कच्ची नींद थी, जरा में टूट गई और फिर न लगी। यहाँ तक कि सुबह की अजानें शुरू हो गईं, गली में हलचल सी होने लगी। पड़ोस के करीम भाई ने दरवाजा खोला, किसी को सलाम किया, तब साइमा की जान में जान आई। उन्होंने उठकर वुजू किया, नमाज पढ़ी और बिस्तर पर दराज हो गईं। सुबह 5 बजे बेदार होने वाली 8 बजे सुबह तक सोती रही। दिन में बच्चों के साथ ऊपर जाकर देखा, सब नॉर्मल था। दरवाजा, उसके ताले चेक किए, जमीन को गौर से देखा, दीवारों पर गहरी गहरी नजरें डाली, कुछ भी खिलाफ मामूल न था। फिर जब बच्चे स्कूल चले गए तो साइमा ने अपनी नींद पूरी की। रात को आना था, वो फिर आई और शब गुज़िश्ता की मानिंद अंदेशों और खौफ से भरपूर आई। अब साइमा ने अपने बड़े भाई आसिम को बुलाया, जो इसी महल्ले में रहते थे। उन्हें सारी बात बताई, सुनकर वो हंसे और बहन को समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार न हुई। जो उन पर बीत रही थी, वे किसी तरह वह मानने को तैयार न थी। हफ्ते को इलियास आए, सुनकर वो भी हंसे, लेकिन बीवी को परेशान देखकर सोच में पड़ गए। आसिम को फिर बुलवाया गया और देर तक सर जोड़कर सोच विचार करते रहे। बाद में ये तय पाया कि बालाई मंजिल किराए पर उठा दी जाए, और ये जिम्मेदारी आसिम के सर डालकर इलियास फिर रवाना हो गए। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों आसिम के एक दोस्त का मकान जेर तामीर था और उनके बेटे के लिए उन्हें एक अलग मकान की ज़रूरत थी, जिसकी नई नई शादी हुई थी। उन्हें साइमा का मकान पसंद आया और वो लोग किराएदार बनकर आ गए। दोनों के मिजाज बहुत अच्छे थे। साइमा से और खुसूसन नाजिया से नई नवेली दुल्हन मानूस हो गई। बड़े अच्छे दिन गुजरे, लेकिन 6 माह देखते देखते ही ख़त्म हो गए और वो लोग चले गए। अब मकान पहले से ज़्यादा सुनसान लगने लगा। मकान किराए से देना है का बोर्ड दरवाजे पर आवेशा कर दिया गया। कुछ लोग आए मगर बात न बनी। उस दिन एक खातून अपनी 2 बेटियों के साथ आईं। बेवा थीं, बेटियों के अलावा एक बेटा था जो किसी फैक्ट्री में काम करता था। उसकी ड्यूटी कभी दिन में होती और कभी रात में। उन्होंने मजीद बताया कि वो मौजूदा मकान इसलिए खाली कर रही हैं कि मालिक मकान की बेटी उनके बेटे पर डोरे डाल रही हैं, जो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। बकौल उनके, ऐसी आवारा लड़कियां उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। साइमा उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहीं। उन्होंने भाई को बताया, मिजाज की तेज़ हैं मगर उन्हें होना भी चाहिए, आखिर 2 बेटियों का साथ है। सीधी बनकर रहेंगी तो लुट जाएंगी, शोहर है नहीं बेचारी का, फिर भी हिम्मत है कि वो लड़कियों के साथ रह रही हैं और दुनिया का मुकाबला कर रही हैं। लिहाजा उन्हें हरी झंडी दिखा दी गई और वो जल्दी घर में मुंतकिल हो गईं। उन लोगों के आने से घर में चहल पहल हो गई। वो अक्सर छत से गली में आने वाले फेरी वालों को आवाज़ देकर रोक लेती। मोल भाव होते, चीज़ें खरीदी जाती, आसपास के लोगों से भी बातचीत होती। लड़कियां 10वां पास कर चुकी थीं और अब घर में माँ के साथ सिलाई करती थीं, फैशन करती और माँ के साथ ही बाहर जाती, जिनका इरादा उन्हें जल्द ही रुख्सत करने का था। लड़का अलबत्ता बहुत कम नज़र आता था, घर में उसका होना ना होना बराबर था। बहरहाल कुल मिलाकर वक्त ठीक ठाक गुजर रहा था। फिर इम्तहानात का ज़माना आया और गर्मी अपने शबाब पर पहुंच गई। नाजिया के तमाम पेपर निपट चुके थे और वो आखिरी पेपर था। वो कूलर के सामने बैठी किताब में गर्क थी। रात के 11 बज चुके थे, तभी लाइट गायब हो गई। नाजिया ने कुछ देर इंतज़ार किया, फिर मोमबत्ती रोशन कर ली, मगर गर्मी और घुटन से परेशान होकर उठ बैठी। मौके को देखकर मच्छर भी चले आए। आधा घंटा गुजर गया लेकिन लाइट ना आई। ना वो पढ़ सकती थी ना आराम कर सकती थी। अचानक उसे कुछ ख्याल आया, अम्मी मैं छत पर जाकर पढ़ लूँ, उसने कहा। लेकिन बेटा, वो लोग तो शादी में गए हैं, दरवाज़ा बंद होगा। देखती हूँ, कहकर नाजिया सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ऊपर पहुँच कर देखा, दरवाज़ा सिर्फ भिड़ा हुआ था। वो खुश हो गई और छत पर चली आई। हवा तो कुछ खास नहीं थी, मगर हाँ घुटन नहीं थी। और फिर सड़क की दूसरी तरफ लगे लैम्प पोस्ट से रोशनी आ रही थी, जो उसके लिए काफ़ी थी। उसने टहल टहल कर याद करना शुरू कर दिया। अंदर कमरे में किराएदार लड़का सो रहा था। उसकी दिन की ड्यूटी थी। रात को उसने शादी में जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो सोना
ज्यादा बेहतर समझता था। गहरी नींद काफी देर बाद टूटी।

उर्दू कार्यक्रम आईना का प्रसारण अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया गया। अब सुनिए संग्रहालय से, इसके अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं भुवन मोहिनी। आज इसकी चौथी कड़ी का प्रसारण किया जा रहा है, आइए सुनते हैं।

पिछली कड़ियों में आपने सुना कि धारा नगरी के महाराज द्युम्न सेन ने राजकुमार विजय श्रवा को प्यार करने के कारण नर्तकी भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया। राजमाता ने ताने कसे तो राजकुमार राजमहल छोड़कर चल पड़ा। उसे पता चला कि भुवन मोहिनी इंद्रप्रस्थ गई है, सो इंद्रप्रस्थ पहुंचकर यमुना तट पर एक आश्रम में ठहर गया। उसने खुद को धारा नगरी का एक श्रेष्ठ बताया।

0: ताकि वो कहाँ है ये राज परिवार को पता न चले। अब इसे संयोगी समझिए, अब इसे संयोगी समझिए कि इंद्रप्रस्थ के राजा आदित्य सेन ने ही भुवन मोहिनी को आश्रय दे रखा था। राजा आदित्य सेन अपनी बहुत ही सुंदर पुत्री चंद्रहासिनी के लिए उपयुक्त वर की खोज में थे ही। उन्हें पता चला कि यमुना तट पर उनके आश्रम में एक श्रेष्ठी ठहरा हुआ है जो दिखने में श्रेष्ठी नहीं बल्कि कोई राजवंशी लगता है। उन्होंने पता लगाने के लिए नर्तकी भुवन मोहिनी को कहा। चंद्रहासिनी को राग दीपक रागिनी सिद्ध करने आश्रम जाना ही था। भुवन मोहिनी तो उसकी गुरु ही थी। दोनों वहां गए और जान गए कि वो आगंतुक विजय श्रवा ही है। चंद्रहासिनी का गायन सुनकर राजकुमार उस पर मुग्ध हो गया। जब दोनों रथ पर लौट रही थी तो राजकुमार ने दोनों को देखा भी। अब आगे की कथा सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की चौथी कड़ी में।
1: महाराज आदित्य सेन की जय हो। महाराज, नर्तकी भुवन मोहिनी आपके दर्शन चाहती हैं।
2: उसे अंदर ले आओ।
3: महाराज को प्रणाम।
2: कुछ पता लगा भुवन मोहिनी? राजोद्यान में ठहरने वाला युवक धारा नगरी के सर्वश्रेष्ठ का पुत्र है या सम्राट द्युमत सेन के उत्तराधिकारी, भारत के भावी सम्राट?
3: यही सत्य है महाराज, वो राजकुमार विजय श्रवा ही है।
2: अच्छा,
3: और आपको प्रसन्नता होगी ये जानकर कि ये सत्य राजकुमारी चंद्रहासिनी भी जान गई हैं।
2: राजकुमारी को कैसे ज्ञात हुआ?
3: उनके पास राजकुमार विजय श्रवा का चित्र पहले से ही है। वे चित्र के साथ मिलाकर पहचान गईं कि वो युवक वास्तव में राजकुमार ही हैं।
2: नर्तकी, आज तुमने मुझे वांछित प्रसन्नता दी है। ये लो तुम्हारा पुरस्कार।
3: धन्यवाद महाराज।
2: भावी सम्राट के सम्मान में समस्त राजकार्य स्थगित किए जाते हैं और इंद्रप्रस्थ में सर्वत्र महोत्सव मनाया जाएगा। नर्तकी,
3: आज्ञा महाराज।
2: तुम्हारे लिए आदेश है कि महोत्सव में तुम हमारे द्वारा दिए गए इन्हीं आभूषणों को धारण करके अपने नृत्य और संगीत से राजकुमार व्रजेश्वर और सारे सभासदों का मनोरंजन करोगी।
3: आदेश शिरोधारी है महाराज।
4: युवराज, युवराज, युवराज, तनिक बताइए तो परिसर में कौन आ रहा है आपसे मिलने?
5: भुवन मोहिनी।
4: भगवान करे इसका मिलन इस परिसर में तो क्या इस जन्म में भी आपसे ना हो।
5: कौन आ रहा है मित्र?
4: अरे मित्र, आपसे मिलने स्वयं महाराज आदित्य सेन आ रहे हैं।
5: महाराज आदित्य सेन कहाँ है?
4: वो देखिए।
5: महाराज आदित्य सेन को सादर प्रणाम।
2: प्रणाम राजकुमार विजयश्रवा। निश्चित ही आप अत्यंत गोपनीय विधि से यहाँ पर रुके थे, परंतु हमें ज्ञात हो गया। हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप अब हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए।
5: हमें स्वीकार है महाराज।
2: आभारी हूँ युवराज। भारत के भावी सम्राट के सम्मान में इंद्रप्रस्थ नगरी में महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर आप अपने समस्त साथियों सहित सादर आमंत्रित हैं।
4: मित्र, आमंत्रण स्वीकार करिए।
5: आपका निमंत्रण हमें स्वीकार है महाराज।
2: आइए राजकुमार, आपका आसन ये है।
5: धन्यवाद महाराज।
6: सारथ।
7: हाँ रण्यक।
6: कुछ समझ रहे हो?
7: अवश्य रण्यक। महाराज आदित्य सेन हमारे राजकुमार को अपना पाहुन बनाना चाह रहे हैं।
6: तात्पर्य ये कि हमने जो सोचा था सब कुछ उसके अनुरूप ही हो रहा है।
7: वो कैसे?
6: अरे युवराज का विवाह राजकुमारी चंद्रहासिनी जैसी अपूर्व सुंदरी से हो रहा है, तो फिर वो भला उस नर्तकी के मोह में क्यों पड़ेंगे?
7: ये तुमने ठीक कहा।
6: अब तो भगवान से बस इतनी विनती है कि बस कुछ दिन और भुवन मोहिनी को दूर रखें हमारे राजकुमार से।
8: शांत शांत, कृपया शांत रहें। महाराज आदित्य सेन और हमारे माननीय अतिथि राजकुमार विजय श्रवा महोत्सव स्थल पर पधारे।

0: कर अपने अपने आसनों को ग्रहण कर चुके हैं और अब प्रस्तुत है राजकुमार के स्वागत में अद्भुत नृत्य और संगीत। महाराज, आपके आदेश की प्रतीक्षा है।
1: आदेश है, कार्यक्रम आरंभ किया जाए।

0: वाह वाह अरण्यक, नर्तकी की पदगतियों और अनावृत हाथों से लगता है कि वो अत्यंत ही सुंदर है, परंतु मुखड़े पर घूंघट व्यवधान बन रहा है।
1: चिंता न करो, वो आगे आकर महाराज और राजकुमार को प्रणाम करेगी और फिर अपने चेहरे से घूंघट उठाएगी।
0: अरे हाँ, तुमने सही कहा, अब वो घूंघट उठा रही है।
1: ये कहीं भुवन मोहिनी तो नहीं?
0: क्या कह रहे हो, तब तो अनर्थ हो जाएगा।
1: अरे ये तो वही है,
2: भुवन मोहिनी।
1: हाँ
0: तो फिर उठो।
1: क्यों?
0: युवराज को यहाँ से दूर ले चलें।
1: अरे अब ये प्रकरण हमारे हाथ से निकल चुका है।
2: अच्छा तो फिर देखो कि युवराज की प्रतिक्रिया क्या है।
1: लगता है युवराज ने भुवन मोहिनी को पहचाना ही नहीं।

कितना सुंदर स्वर है, कहीं ये भुवन मोहिनी तो नहीं? ओह, ये तो मेरी मेरी प्राण प्रिया ही है।

0: कितनी विडंबना है कि ऐसे समय में जब मेरी प्राणेश्वरी गीत के माध्यम से अपनी असह्य पीड़ा मुझे सुना रही है, मुझे अपने पास बुलाने का प्रयत्न कर रही है, उस समय मैं राजसी बंधनों में जकड़ा हुआ हूं।
1: कितनी पीड़ा है सखी भुवन मोहिनी के स्वर में। मैं देख रही हूँ कि राजकुमार विजयश्रवा भुवन मोहिनी की पीड़ा से कितने एक रस हो चुके हैं। मानो ये उन्हीं के लिए गाया जा रहा हो।
2: वाह, तुम्हें धन्यवाद है भुवन मोहिनी, तुम अपने संगीत नृत्य से राजकुमार का हृदय जीत रही हो। अवश्य ही मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, परंतु मैं देख रहा हूँ कि राजकुमार भुवन मोहिनी की ओर वैसे ही खींचे जा रहे हैं जैसे चुंबक की ओर लोहा खींचता है। भय लग रहा है कहीं भुवन मोहिनी की कला पर राजकुमार कुछ अधिक ही मोहित न हो जाए।
0: भुवन मोहिनी, अर्धरात्रि की इस निस्तब्ध वेला में हृदय को चीर देने वाली तुम्हारी ये विहाग रागनी ऐसे लग रही है मानो कोई देवकन्या शाप वशात स्वर्ग भ्रष्ट होकर अपने जीवन की करुण गाथा सुना रही है। अब मैं अधिक समय तक यहाँ नहीं ठहर सकता, नहीं देख सकता अपनी जीवन दाहिनी को

0: निर्झर करते।
1: क्या हुआ युवराज, आप चल दिए?
0: महाराज, चौथा प्रहर होने को है, अब विश्राम चाहता हूँ।
1: नृत्य रोक दिया जाए।
2: महोत्सव संपन्न हुआ, माननीय अतिथि अब विश्राम हेतु जा रहे हैं। सभी लोग शांतिपूर्वक अपने अपने गृह की ओर प्रस्थान करें।
3: कितना सुंदर गायन हुआ भुवन मोहिनी का। राजकुमारी, ये है आपका रथ, इधर आइए।
4: राजकुमार का रथ कहाँ है?
3: ठीक आपके पीछे।
0: अर्ण्यक?
5: हाँ मित्र,
0: तुम मेरे साथ ही रहना।
5: साथ ही हूँ मित्र, और राजकुमारी जी भी साथ ही हैं।
0: साथ ही हैं?
5: हाँ।
0: कहाँ?
5: अरे वो आगे आगे उन्हीं का रथ जा रहा है।
3: सुनो सारथी, रथ को बहुत तीव्र मत भगाना।
4: तुमने ऐसा क्यों कहा सारथी से?
3: ताकि आपका और आपके राजकुमार जी का रथ साथ साथ चले।
5: क्या सोच रहे हैं मित्र?
0: अरे ये पुष्पहार कहाँ से आ पड़ा मेरे गले में?
5: पुष्पहार? अरे हाँ, संभवतः ये लीला आगे वाले रथ से कराई गई है।
3: राजकुमारी जी, देखिए तो, एक चंद्रदेव ऊपर आकाश में हास कर रहे हैं और एक दूसरे चंद्रदेव पीछे रथ से आपका पीछा कर रहे हैं। तनिक देखिए तो पीछे मुड़कर।
4: अरे उनके गले में तो वही पुष्पमाला है जो मैंने पहन रखी थी, वो वहां कैसे पहुंच गई?
3: मैंने फेंकी थी, ठीक उनके गले में जाकर पड़ी। राजकुमार जी, राजकुमारी जी कह रही हैं कि ये उनके पूजा के पुष्प हैं, आप स्वीकार करेंगे ना?
5: अरे मित्र, उत्तर दीजिए ना।
0: मैं क्या बोलूं मित्र, मेरी स्थिति तो दो नावों पर सवार व्यक्ति जैसी है।
5: तात्पर्य?
0: एक ओर मेरी प्रिया भुवन मोहिनी और दूसरी ओर अनुपम सुंदरी राजकुमारी, जो मन ही मन मेरा वरण कर चुकी है।
5: अरे मित्र, ये बाद में सोचना, पहले उस दासी के प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। अरे देवी जी, राजकुमारी जी से कहिए कि राजकुमार जी को उनका पुष्प स्वीकार है।
3: धन्यवाद, बहुत सोचकर उत्तर दिया, चलो फिर भी मान लेते हैं। अब कृपा करके उनसे ये भी कह दीजिए कि भूले नहीं, ऊपर चंद्रदेव उनके इस कथन के साक्षी हैं।
5: अरे देवी जी, आप चिंता न करिए, ऊपर चंद्रदेव हैं, नीचे मैं भी हूँ।
0: क्या कह रहे हो मित्र?
5: अरे मैं तो साक्षी की बात कर रहा था।
4: अनुकूल समय आने दो सखी, फिर स्मरण कराने की आवश्यकता ही न रह जाएगी।
3: अरे अरे, अनर्थ हो गया, सारथी रथ रोको।
6: क्या हुआ?
5: अरे मित्र, राजकुमारी का रथ रुक गया, और ये लो, अपना भी सारथी अत्यंत निपुण है, दोनों ही रथ रुक गए हैं। अब आप नीचे उतरिए।
4: क्या हुआ सखी, रथ को क्यों रुकवा दिया?
3: आपकी मणिमाला खो गई।
4: क्या? अरे अभी तो मैंने अपने गले से उतार कर तुझे रखने के लिए दिया था, तूने पेटी में क्यों नहीं रखा था? कहीं मार्ग में तो नहीं गिरा दिया?
3: कह नहीं सकती।
4: तो फिर रथ वापस लौटाओ और पीछे जाकर खोज करो।
0: अर्ण्यक?
5: हाँ,
0: क्या हुआ?
5: आज्ञा दीजिए मित्र, अभी पता लगाता हूँ।
0: चलो मैं भी चलता हूँ।
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं,
3: यही देखिए ना, यही पे तो यही पे हो सकती है।
5: हम जान सकते हैं कि रथ क्यों रुक गया यहाँ पर?
3: राजकुमारी जी की मणिमाला खो गई है।
5: अरे किससे खो गई?
3: मुझसे।
5: ये तो होना ही था।
3: क्या मतलब?
5: अरे जिस राजकुमारी की सखी आप जैसी हो, तो मणिमाला को तो खोना ही था।
3: अरे मुझ पर आरोप लगाने वाले आप कौन हैं?
5: मैं राजकुमार विजय शर्मा जी का बाल सखा हूँ, अरण्यक, इसलिए अनुभव से कह रहा हूँ। और देवी जी, आप कौन हैं?
3: मैं भी कम अनुभवी नहीं हूँ।
5: वो तो लग ही रहा है।
3: मैं राजकुमारी जी की सबसे प्रिय सखी हूँ।
5: अच्छा?
3: हाँ।

0: अरण्यक, चलो मणिमाला को खोजने में सहायता करें।
1: जब आप सहायता करेंगे तो मिल जाने में कोई संदेह ही नहीं है।
0: किधर गिरी होगी?
1: राजकुमार, वो उधर दूर उस तरफ।
2: ओ, राजकुमार जी तो मणिमाला खोजने में लग गए। अब हम दोनों सखा सखी को क्या करना होगा?
1: ढूंढते ढूंढते कहीं दूर से सब देखना होगा।
2: अच्छा, तो फिर आओ।
1: हाय, राजकुमार जी मेरी सखी के समीप जा रहे हैं।
2: दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं
1: हमारी लाडो लजा रही हैं।
2: और मेरे सखा और पास आ रहे हैं।
1: आगे कुछ मत बोलो,
2: लो, चुप हो गया।
1: ऊपर चंद्रदेव को निहारो।
2: ये लो।
0: आह, चंद्रहासिनी, अद्भुत सौंदर्य है तुम्हारा।
3: ये रूप का देवता जो मेरे सामने खड़ा है, न जाने कितनी नारियों का महान आकर्षण बना।

0: आगे कुछ मत बोलो।
1: लो चुप हो गया।
0: ऊपर चंद्रदेव को निहारो।
1: ये लो।
2: आह चंद्रहासिनी, अद्भुत सौंदर्य है तुम्हारा।
3: ये रूप का देवता जो मेरे सामने खड़ा है, न जाने कितनी नारियों का महान आकर्षण बना होगा, न जाने कितनी चंद्रमुखी नारियां इसके प्रेम से निराश होकर या तो इसे अभिशाप दे रही होंगी या दर्द भरी टीस लिए हृदय के टूटने का परिणाम भुगत रही होंगी।
2: चंद्रहासिनी, तुम्हारी ये गुथी हुई केश राशियां जो त्रिविध समीर के झोंके खा खाकर नाच पिलाई हुई नागिन की तरह लोचे खा रही हैं, तुम्हारी हल्की बासंती रेशमी साड़ी सुरभित द्रव्यों के मद को वायुमंडल में बिखेरती हुई मेरी सुप्त रति भावना को जागृत कर रही है।
3: ओह, मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रही हूं, परंतु मैं जानती हूं कि पुरुष सौंदर्य मद में आकर अनेक कोमल प्रसून हृदय समर्पित नारियों के सर्वस्व समर्पण को ठुकरा देता है। यदि ऐसे पुरुष की समर्पित अभिलाषाओं पर मैं प्रहार करूं तो।
4: आई,
1: क्या हुआ?
4: मेरी सखी तो हमारी ओर आ रही है।
1: अच्छा,
4: आओ यहीं विशाल शिला के पीछे छुप जाएं।
1: अरे रुको तो, मेरे सखा उनसे कुछ कह रहे हैं।
5: इंद्रप्रस्थ नगर की राजपुत्री को धारा नगरी के युवराज का अभिवादन स्वीकार करना होगा। ये तो आमंत्रित अतिथि का सबसे बड़ा अपमान है। राजकुमारी, अभिवादन स्वीकार हो।
3: प्रणाम राजकुमार।
2: हमारी ये अमूल्य एकांत घड़ियां वरदायिनी सिद्ध हो।
3: कुछ कहा आपने?
2: नहीं तो।
3: भाभी सम्राट, हम क्षमा चाहते हैं आपसे।
5: क्यों, किस लिए राजकुमारी? मुझे तो अपराध का ज्ञान ही नहीं, फिर क्षमा कैसी? नहीं बताएंगी? चलिए अपने मणिमाल के विषय में ही बताइए। कब और कहां गिरा था और कैसे?
3: मुझे स्वयं कुछ ज्ञात नहीं है देव। वो तो मेरी सखी थी जिसने खो जाने की चर्चा चलाई।
5: क्या मैं जान सकता हूँ कि उस निर्जीव मणिमाला से क्या अपराध हो गया था कि राजकुमारी ने उसे अपने हृदय से दूर किया?
3: दी, इसमें मेरा नहीं, मेरी सखी का हट था। उसे निकाह था।
5: क्या?
3: जो अपने हृदय स्थल को इन मणियों की माला से सजाएगा वो प्रत्येक नेत्र की प्रिय अतिथि बनेगी और साम्राज्य भी।
2: चंद्रहासिनी,
3: क्या भाभी सम्राट मुझ पर सदैव होकर मुझे एक दो प्रश्न करने का अधिकार देंगे?
2: अवश्य राजकुमारी।
3: मुझे भय है कि मेरा प्रश्न कहीं भाभी सम्राट को ना रुचे और मुझे कोप भाजन बनना पड़े।
2: नहीं नहीं, शंकाओं का समाधान आवश्यक है।
3: तो फिर कहती हूँ, मुझे संदेह है कि आज की राजसभा में भाभी सम्राट को मनोरंजन के स्थान पर मनोवेदना प्राप्त हुई है।
2: वो कैसे राजकुमारी?
3: स्वयं अपने नेत्रों से देखा कि कैसे भुवन मोहिनी संगीत लहरियों में अतीत के वेदनापूर्ण संस्मरणों को भावात्मक ढंग से व्यक्त कर रही थी और कैसे उस पर आपकी भावभंगिमाएं मानो किसी प्रच्छन्न प्रेम कथा को प्रकट कर रही थी। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन सी भाग्यशालिनी रमणी है जिसने भारत के भाभी सम्राट के हृदय पर वियोग, टीस और जलन के बीज बोए हैं? यदि मेरे प्रश्न ने भाभी सम्राट को विचलित कर दिया हो तो मैं क्षमा याचना करते हुए अपना प्रश्न लौटा लेती हूँ।
2: नहीं राजकुमारी, तुम्हारा प्रश्न उचित है। प्रत्येक नर नारी के जीवन में एक ऐसा क्षण अवश्य उपस्थित होता है जब वो अपना सर्वस्व एक दूसरे के लिए समर्पित करते हैं, किंतु राजकुमारी, प्रेम की गोपनीयता में जो शांति और संतोष है

0: उसके प्रकाशन में नहीं। प्रकाशन करने में तो प्रेम तुच्छ और स्वार्थपूर्ण हो जाता है। इस प्रथम परिचय में ही अपने जीवन के गोपनीय तथ्यों को कैसे प्रकट करूं? राजकुमारी, आज की रात कितनी रम्य और परस्पर परिचय की मधुर भावना से कितनी सलोनी प्रतीत हो रही है। गिनती किए थोड़े से क्षण मेरे जीवन में अमूल्य संस्मरणों के प्रतीक बनेंगे, जिन्हें भुलाया ना जा सकेगा। किंतु
1: यही तो मैं भी सोचती हूं, किंतु
0: क्या?
1: यही कि पुरुष मधु हृदय न जाने कितने बार ऐसे मधुर मिलनों को भूलते हुए पाए गए हैं।
0: ये तो अपवाद मात्र है राजकुमारी, कोई निश्चित सिद्धांत नहीं। ज्ञात होता है कि राजकुमारी का वो मूल्यवान हृदय हार सचमुच खो गया है, क्योंकि आपकी सखी और मेरे सखा दोनों ही उसे ढूंढते हुए न जाने कहाँ चले गए।
1: हाँ भाभी सम्राट, वो हृदयहार मेरे लिए सचमुच में अमूल्य है। और कोई भी अमूल्य वस्तु एक बार खो जाने पर पुनः प्राप्त नहीं होती।
0: चंद्रहासिनी, ये मेरा हृदयहार तुम ग्रहण करो।
1: ये क्या आपने अपनी मणिजड़ित माला मुझे पहना दी? इसके बदले क्या मैं कुछ दे सकती हूं? अपना हाथ इधर देने की कृपा करेंगे क्या?
0: क्यों?
1: ये मेरी ओर से प्रेमोपहार।
0: अंगूठी?

संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक भुवन मोहिनी का चौथा भाग। यह आकाशवाणी भोपाल है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

नमस्कार, मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 5 बजने वाले हैं, अब हमारा मीडियम वेव पर प्रसारण आरंभ होता है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्र सरकार ने दिशा कार्यक्रम न्याय तक समग्र पहुंच के लिए नए समाधानों की तलाश के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। ये कार्यक्रम इस वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च 2031 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए नए रूप में लागू किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मुलाकात की। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान श्री मुरुगन कल देवास जिले के डोकाकुई में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर में भस्म आरती के लिए आज से नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब श्रद्धालु बाबा महाकाल की भस्म आरती की अनुमति के लिए 3 माह में सिर्फ 1 बार अपने मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकेंगे और 19वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में डॉक्टर बीना उन्नीकृष्णन की डॉक्यूमेंट्री Y64 विस्पर्स ऑफ द अनसीन का प्रदर्शन हुआ। प्रदेश के संस्कृति विभाग के सहयोग से बनी ये फिल्म मुरैना जिले के मितावली स्थित मंदिर पर आधारित है। आप सुन रहे थे इस घंटे

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

नमस्कार आकाशवाणी के प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त वंशिका श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कुछ नए विचार, कुछ नई जानकारियां और बेहतरीन फिल्मी गीतों का शानदार संगम। तो अगले आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे ग्रीन ट्रांसपोर्ट के बारे में, जानेंगे कुछ खास बातें जनरेटिव एआई के बारे में और सुनेंगे कुछ मधुर फिल्मी गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत फिल्म कॉकटेल से। स्वर थे नीरज श्रीधर, कविता सेठे, गीतकार इरशाद कमल और संगीतकार प्रीतम। दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि हम पृथ्वी अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं लेते बल्कि आने वाली पीढ़ियों से उधार लेते हैं। इसलिए आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें। इसी सोच के साथ आज का विषय है ग्रीन ट्रांसपोर्ट, यानी ऐसा परिवहन जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। आज हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी न किसी वाहन का उपयोग करते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारणों में से एक हैं। बढ़ता धुआं केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि हमारी सेहत पर भी बुरा असर डालता है। सांस से जुड़ी बीमारियां, बढ़ता तापमान और जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती बन चुके हैं। ऐसे में ग्रीन ट्रांसपोर्ट एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आया है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन, साइकिल, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसें और सार्वजनिक परिवहन जैसे साधन शामिल हैं। इनका उपयोग करने से ईंधन की बचत होती है, प्रदूषण कम होता है और शहरों में ट्रैफिक की समस्या भी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। लेकिन दोस्तों ग्रीन ट्रांसपोर्ट केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसकी शुरुआत हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी कर सकते हैं। यदि कार्यालय, कॉलेज या बाजार घर के पास हो तो पैदल चलना या साइकिल का उपयोग करना एक अच्छा विकल्प है। यदि संभव हो तो कार की बजाय बस या मेट्रो का इस्तेमाल करें। छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। आज दुनिया के कई देश स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत भी इस दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही है और चार्जिंग स्टेशन भी तेजी से विकसित किए जा रहे हैं। दोस्तों प्रकृति हमें बिना किसी भेदभाव के बहुत कुछ देती है। अब हमारी बारी है कि हम भी उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि एक स्वच्छ वातावरण ही स्वच्छ जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और इसी सकारात्मक संदेश के साथ बढ़ते हैं अपने अगले खूबसूरत फिल्मी गीत की ओर।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत फिल्म चलते चलते से। स्वर थे अभिजीत और अलका याग्निक के, गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार जतिन ललित। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में एक शब्द आपने कई बार सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, और इसी का एक आधुनिक रूप है जनरेटिव AI, जो आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जनरेटिव AI ऐसी तकनीक है जो केवल जानकारी खोजने तक सीमित नहीं है, बल्कि नई सामग्री भी तैयार कर सकती है। यह लेख लिख सकती है, चित्र बना सकती है, संगीत तैयार कर सकती है, वीडियो बनाने में मदद कर सकती है और कई तरह के रचनात्मक कार्यों को आसान बना सकती है। दोस्तों, इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे इस प्यारे से गीत के बाद।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म जिंदगी मिलेगी ना दोबारा से। स्वर थे फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन और अभय देओल के, गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार शंकर एहसान लॉय। दोस्तों हम बात कर रहे थे जनरेटिव एआई की। आज छात्र पढ़ाई में कठिन विषयों को समझने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। शिक्षक बेहतर नोट्स और अध्ययन सामग्री की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर्स, लेखक, डिजाइनर्स और व्यवसायी भी अपने अपने क्षेत्र में इस तकनीक की मदद से समय बचा रहे हैं और अधिक प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन हर तकनीक के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जनरेटिव एआई से मिलने वाली हर जानकारी को आंख बंद करके सही मान लेना उचित नहीं है। कई बार यह गलत या अधूरी जानकारी भी दे सकता है, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य जांचना चाहिए। युवाओं के लिए यह तकनीक एक बड़ा अवसर भी है। जो लोग नई तकनीकों को सीखते हैं वे भविष्य के रोजगार और नए करियर विकल्पों के लिए एक बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। आने वाले समय में एआई से जुड़े कौशल कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, एआई हमारी मदद कर सकता है, हमारी जगह नहीं ले सकता। इंसान की कल्पना शक्ति, नैतिक सोच और निर्णय लेने की क्षमता आज भी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए तकनीक को अपना सहायक बनाइए, उसका पूरी समझदारी और जिम्मेदारी के साथ उपयोग कीजिए और इसी उम्मीद के साथ कि तकनीक हमारे जीवन को और बेहतर बनाएगी, आइए सुनते हैं आज का अगला शानदार फिल्मी गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत फिल्म आजा नटले से। स्वर है राहत फतेह अली खान के, गीतकार जयदीप साहनी और संगीतकार सलीम सुलेमान। दोस्तों अब समय हो गया है आज की रोजगार सूचना का। कर्मचारी चयन आयोग SSC द्वारा SSC CGL 2026 की अधिसूचना 12,256 पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट SSCG पर जारी की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी 22 जून 2026 है। इस पद के लिए आयु सीमा 18 से 32 वर्ष के बीच है। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म बार बार देखो से। स्वर थे अमर अर्शी, बादशाह और नेहा कक्कर के। गीतकार अमरिक सिंह कुमार और संगीतकार जसलीन रॉय। और दोस्तों आपसे बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला, वक्त है आपसे विदा लेने का। और दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और दीजिए आपकी रेडियो होस्ट वंशिका श्रीवास्तव को इजाज़त। नमस्कार।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
6: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
7: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
5: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
6: आकाशवाणी है ना,

0: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
2: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं आतिफ असलम की आवाज़ में फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी का बहुत ही खूबसूरत गीत। इरशाद कामिल के बोल हैं और प्रीतम का संगीत।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म प्रेम रतन धन पायो से। आवाज़ें हैं मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुछाल की। बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और संगीत प्रीतम का, और आवाज़ें हैं अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, शादाब और फारिकी

अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, शादाब फरीदी और अल्तमाश फरीदी की आवाज़ में इस खूबसूरत गीत के साथ आइए सुनते हैं अगला गीत। सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और स्वानंद किरकिरे की आवाज़ में, लागा चुनरी में दाग फिल्म से। इस गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत से सजाया है शांतनु मोइत्रा ने।

सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, स्वानंद किरकिरे और प्रणव विश्वास की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म लागा चुनरी में दाग का बहुत ही खूबसूरत गीत, जिसे संगीत से सजाया था शांतनु मोइत्रा ने और बोल थे स्वानंद किरकिरे के। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण देखी, लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है।

0: Evergreen, wie her Kahani's ever been told. Gen Z bhi hai, also Gen Old, nahi purani, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। केंद्र सरकार ने दिशा कार्यक्रम न्याय तक समग्र पहुंच के लिए नए समाधानों की तलाश के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। ये कार्यक्रम इस वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च 2031 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए नए रूप में लागू किया जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मुलाकात की। 2 दिवसीय अपने प्रवास के दौरान श्री मुरुगन कल देवास जिले के डोकाकुई में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर 23 जून से उनकी जयंती 6 जुलाई तक विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगरीय निकायों के महापौर तथा नगरपालिका अध्यक्ष को वीसी के माध्यम से संबोधित करते हुए ये निर्देश दिए। उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर में भस्म आरती के लिए आज से नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब श्रद्धालु बाबा महाकाल की भस्म आरती की अनुमति के लिए 3 माह में सिर्फ 1 बार अपने मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकेंगे। और फीफा विश्व कप 2026 में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा

पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं, इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताज़ा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए

राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको

बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी।

0: उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था?
1: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
0: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
1: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
0: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
1: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
0: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आनंद फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ। आवाज़ है मुकेश की और योगेश का लिखा हुआ ये गीत है। धुन बनाई है सलिल चौधरी ने।

आनंद आश्रम, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। इंदिवर ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है श्यामल मित्रा ने।

नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है योग। केवल कसरत नहीं, नए भारत के आत्मबल और सशक्त अर्थव्यवस्था का आधार। आलेख श्री जगदीश देवड़ा का है। आप मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री हैं। वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सदियों पहले भारत की पावन भूमि से उपजा योग आज वैश्विक चेतना का सबसे बड़ा संवाहक बन चुका है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी, तब वह केवल एक पद्धति का सम्मान नहीं था, बल्कि भारत की प्राचीन वसुधैव कुटुंबकम की भावना को वैश्विक स्तर पर स्वीकार करना था। आज योग धर्म, जाति, भूगोल और सीमाओं के बंधनों को तोड़कर पूरी मानवता को एक सूत्र में पिरो रहा है। लेकिन 21वीं सदी के इस दौर में हमें योग को सिर्फ शारीरिक व्यायाम या कुछ आसनों तक सीमित रखने की भूल नहीं करनी चाहिए। योग एक पूर्ण जीवन दर्शन है जो व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक प्रगति को तो सुनिश्चित करता ही है, इसके साथ ही राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास का अदृश्य इंजन भी है। एक अर्थशास्त्री या वित्त मंत्री के दृष्टिकोण से जब मैं योग को देखता हूं, तो मुझे इसमें भारत के सकल घरेलू उत्पाद, GDP और नागरिकों की क्रय शक्ति को मजबूत करने का एक बड़ा माध्यम दिखाई देता है। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में आज भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर यानी बीमारी पर अपनी जेब से होने वाला खर्च परिवारों के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ है। योग मुख्य रूप से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रणाली है। यदि देश का नागरिक हर दिन सिर्फ 30 मिनट योग को देता है, तो वह जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों जैसे मधुमेह, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन और मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस से दूर रहता है। स्वस्थ नागरिक का सीधा अर्थ है अस्पतालों और दवाओं पर होने वाले खर्च में कमी। यही बची हुई पूंजी परिवारों की बचत बनती है, जो आगे चलकर देश के वित्तीय चक्र को गति देती है। भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी इस युवा आबादी का लाभ हमें तभी मिल सकता है जब यह युवा कार्यबल न केवल डिग्रीधारी हो, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी ऊर्जावान हो। कॉरपोरेट जगत से लेकर सरकारी विभागों तक बर्नआउट और मानसिक तनाव कार्यक्षमता को प्रभावित कर रहे हैं। योग और प्राणायाम व्यक्ति की एकाग्रता और

लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं। जब कार्यबल की कार्यक्षमता बढ़ती है तो उसका सीधा सकारात्मक असर उद्योगों के उत्पादन और अंततः देश की आर्थिक विकास दर पर पड़ता है। योग भारत के युवाओं को भीतर से सशक्त कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति दे रहा है। मध्य प्रदेश सरकार योग को केवल आयोजनों तक सीमित न रखकर इसे अपनी विकास नीतियों का हिस्सा बना रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीतियां तैयार की हैं। हमारे अमरकंटक, पचमढ़ी और उज्जैन जैसे सांस्कृतिक केंद्र आज न केवल आध्यात्म बल्कि योग और आयुर्वेद के बड़े हब के रूप में उभर रहे हैं। हमने स्कूली शिक्षा में खेल और योग को प्राथमिकता दी है ताकि आने वाली पीढ़ी बचपन से ही इस जीवन शैली को अपनाए। इसके अलावा हमारे प्रदेश का आयुष विभाग लगातार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योग शिविरों के माध्यम से जन जन को निरोगी बनाने के मिशन में जुटा हुआ है। आज योग ने दुनिया भर में एक नई अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है जिसे वेलनेस इकोनॉमी कहा जा सकता है। योग मैट और परिधानों से लेकर डिजिटल योग एप्लीकेशन और अंतर्राष्ट्रीय वेलनेस रिट्रीट का बाजार अरबों डॉलर का हो चुका है। भारत इस वैश्विक योग अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। हमारे देश के युवा आज दुनिया भर में योग विद्या के ट्रेनर और थेरेपिस्ट के रूप में रोजगार पा रहे हैं। यह लोकल टू ग्लोबल का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। योग हमें जोड़ना सिखाता है, स्वयं को प्रकृति से, व्यक्ति को समाज से और नागरिक को राष्ट्र से। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अमृतकाल में विकसित भारत के उस सपने को पूरा करने का मार्ग है जहां नागरिक केवल भौतिक रूप से समृद्ध न हो बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी सुदृढ़ हो। तो आइए हम सब योग को साल में सिर्फ एक दिन का उत्सव न मानकर अपने दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाएं, क्योंकि जब एक एक नागरिक स्वस्थ और संकल्पवान होगा तभी एक समर्थ, सक्षम और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण संभव है। आजकल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल, विषय था योग केवल कसरत नहीं, नए भारत के आत्मबल और सशक्त अर्थव्यवस्था का आधार। आलेख श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार दर्शन।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं शेख महजबी अलमास। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। इस सप्ताह हमारा प्रादेशिक समाचार दर्शन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 सालों के दौरान उनके द्वारा आम नागरिक के लिए चलाई महत्वपूर्ण योजनाओं पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी महत्वपूर्ण पहलों से कैसे आम नागरिक के जीवन में बड़े बदलाव आए हैं। पहले हम बात करेंगे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि
1: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है।
0: अब हम बात करेंगे उन हितग्राहियों की जिनके जीवन में केंद्र सरकार की योजनाओं ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की हितग्राही एकता टकरानी बताती हैं कि
2: मेरा नाम एकता टकरानी है, मैं

0: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की अधिकारी हूँ और जिससे जिसकी अंतर्गत मुझे 6,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। से मैंने अपना इलाज जो भी जांचें की उनको सही समय पर कराया, अपने बच्चे का पालन पोषण किया। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी का, आभार व्यक्त करती हूँ।
1: प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से पहली बार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने वाले मिश्री लाल चौधरी बताते हैं,
2: मुझे जनधन योजना में खाता खुलवाने का प्रथम लाभ मिला। उस योजना से मेरा अन्य किसी भी प्रकार का पैसा सीधा मेरे खाते में आता है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ।
1: तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है जबलपुर जिले से, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य आतिथ्य में राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेश है जबलपुर से हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी की यह रिपोर्ट।
3: संस्कारधानी का ऐतिहासिक गैरिसन ग्राउंड आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगमय नजर आया। महामहिम राष्ट्रपति के मुख्य आतिथ्य में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने मां नर्मदा की पावन भूमि से देशवासियों को योग दिवस

0: राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेश है जबलपुर से हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी की यह रिपोर्ट।
1: संस्कारधानी का ऐतिहासिक गैरिसन ग्राउंड आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगमय नजर आया। महामहिम राष्ट्रपति के मुख्य आतिथ्य में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने मां नर्मदा की पावन भूमि से देशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि
2: मैं देश विदेश में सक्रिय सभी योग साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज हम यहां भारत की उस महान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं जिसने मानवता को स्वस्थ संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिया। योग विश्व समुदाय को हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य उपहार है। ये हमारे ऋषियों और मुनियों की हजारों वर्षों की साधना का परिणाम है। हमारे शास्त्रों में शरीर मन और आत्मा के संतुलन को जीवन की सफलता का आधार माना गया है। योग उसी संतुलन को स्थापित करने के मार्ग है। मुझे बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ सक्रिय आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है। योग बढ़ती आयु से भी व्यक्ति के सक्रिय और आत्मनिर्भर बने रहने की सहायक होते हैं, साथ ही मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी।
0: हमारी दूसरी खबर है इंदौर से, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले में अनेक स्थान पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे इंदौर संवाददाता मनिंद्र कुमार दुबे।
3: इंदौर जिला मुख्यालय पर केंद्रीय जनजाति कार्य विभाग राज्य मंत्री दुर्गादास उइके के मुख्य आतिथ्य में विश्व योग दिवस पर सामूहिक योग का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला प्रशासन, आयुष विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री उइके ने कहा कि योग केवल व्यायाम तक सीमित नहीं है, यह हमें आध्यात्मिक और अनुशासित रूप से समृद्ध बनाता है। आयोजन की विस्तार से जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर शांता स्वामी भार्गव ने आकाशवाणी को बताया।
4: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत इंदौर जिले के जिला स्तरीय कार्यक्रम बास्केटबॉल स्टेडियम में किया गया। यहाँ पर 10 से 12 स्कूलों के बच्चे, जिनकी संख्या लगभग 250 से 300 थी, कार्यक्रम में शामिल हुए। इंदौर जिले में विभिन्न विद्यालयों में छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया और जो इंदौर जिले का मुख्य कार्यक्रम था इसमें 500 से अधिक लोग सहभागी बने। विद्यालय में जो योग करने वाले बच्चे थे उनका ऑनलाइन पंजीयन भी किया गया, जिसकी संख्या 1200 के।
3: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर के शासकीय अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्राध्यापक और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश भार्गव ने योग को स्वस्थ जीवन का गुरु मंत्र बताया।
5: योग भारतवर्ष की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा एवं चिकित्सा पद्धति है, जिसको पूरे विश्व में आत्मसात किया है। योग करने से शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। योग जीवन का आवश्यक अंग है। प्रतिदिन प्रातः 30 मिनट योग के लिए अवश्य निकालना चाहिए। योग का प्रमुख उद्देश्य है कि मनुष्य बीमार ही न हो। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, क्योंकि देश का पैसा अनावश्यक रूप से अस्पताल बनाने, इंस्ट्रूमेंट खरीदने, दवाइयां खरीदने में खर्च होने से बचता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को योग की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि वह बीमार न हो।
3: इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर में गोपुर चौराहे पर 10,000 से ज्यादा साधकों ने 3 मिनट से ज्यादा सामूहिक भ्रामरी प्राणायाम कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इस आयोजन में इंदौर की 70 से अधिक योग संस्थाएं, खेल संगठन, 150 से अधिक सामाजिक संस्थाएं और समाज के विभिन्न वर्ग के लोग शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मनिंद्र कुमार दुबे।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर खंडवा जिले से है, जहां प्रधानमंत्री जनधन योजना जिले में वित्तीय सशक्तिकरण का मजबूत आधार बनकर उभरी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं खंडवा से हमारे संवाददाता हीरा लाल लोंगरे।
6: प्रधानमंत्री जनधन योजना और उससे जुड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं खंडवा जिले में वित्तीय सशक्तिकरण का मजबूत आधार बन रही है। जिले के अग्रणी जिला प्रबंधक श्री गणेश ताईकर ने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जिले में अब तक कुल 6,95,213 लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत करीब 2,02,236 हितग्राही, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 6,02,338 हितग्राही तथा अटल पेंशन योजना के तहत 82,599 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। एलडीएम श्री ताईकर ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिक बैंकिंग सेवाओं, बीमा

0: सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ रहे हैं। जनधन खातों के माध्यम से विभिन्न शासकीय योजनाओं की राशि सीधे हितग्राही के खाते में पहुंच रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना तथा उससे संबंध बीमा और पेंशन योजनाएं समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे।
1: हमारी अगली खबर खरगोन से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और जन भागीदारी के साथ मनाया गया। जिले भर में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रमों में करीब 1,00,000 से अधिक स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं खरगोन से हमारे संवाददाता आशुतोष पुरोहित।
2: खरगोन जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और जन भागीदारी के साथ मनाया गया। जिले भर में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रमों में करीब 1,00,000 से अधिक स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। जिले में मुख्य कार्यक्रम खरगोन की अनाज मंडी में आयोजित हुआ, जहाँ प्रदेश के पूर्व कृषि राज्य मंत्री एवं खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर भव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा सहित बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री पाटीदार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर योग ने पिछले वर्षों में वैश्विक पहचान बनाई है और आज दुनिया भर के लोग इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं। योग दिवस के अवसर पर जिले भर में स्वस्थ, अनुशासन और सकारात्मक जीवन शैली का संदेश दिया गया। कार्यक्रमों के माध्यम से फिट इंडिया और निरोगी भारत के संकल्प को भी दोहराया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रदेश के पूर्व कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार।
3: आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया में ये योग का कार्यक्रम हुआ है। उसी कड़ी में हमारे खरगोन जिले में लगभग हर ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर भी ये आयोजन हुआ योग का, और उसमें कम से कम 1,00,000 से भी ऊपर जनता ने, बच्चों ने, सबने मिलकर के इसमें भाग लिया। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और उनके संकल्प को लेकर के आज पूरे विश्व में योग हो रहा है। इस अवसर पर मैं आज जिन लोगों ने भी इसमें योग में भाग लिया, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, वो स्वस्थ रहे।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अब हम चलते हैं मंदसौर जिले की तरफ, जहां प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी और छोटे रोजगार करने वाले व्यापारियों को बिना गारंटी आसान ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना से लाभान्वित व्यापारी सरकार की इस पहल से काफी खुश और संतुष्ट हैं। पेश है मंदसौर से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य रेहड़ी पटरी और छोटे स्वरोजगार करने वाले व्यापारियों को बिना गारंटी आसान ऋण उपलब्ध कराना है। मंदसौर जिले में इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। जिले में 4,000 हितग्राहियों के लक्ष्य को पार करते हुए अब तक 5,000 से अधिक व्यापारियों को इस योजना का लाभ दिया है। इनमें लगभग 4,000 व्यापारियों को 15,000 से 20,000 रुपए तक का ऋण और करीब 1,000 व्यापारियों को 50,000 रुपए तक का ऋण प्रदान किया गया है। फल फ्रूट व्यापारी मोहन लाल ने बताया कि
5: मैंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से पहले 10,000 रुपए का लोन लिया था, फिर उसको पूरा करने के बाद मुझे 25,000 का लोन मिला, फिर उसके बाद मुझे 50,000 का लोन मिला। ये प्रधानमंत्री जी की जो स्वनिधि योजना है, हम ठेले वालों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है और हमें बहुत इस योजना से हमें बहुत फायदा मिला है।
4: वहीं पीएम स्वनिधि शाखा प्रबंधक अजय शर्मा ने बताया कि
6: हमारे द्वारा पीएम स्वनिधि योजना का संचालन कोरोना काल से लगातार किया जा रहा है। इसके दौरान हम वार्डों में शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर के दौरान हमारे द्वारा अधिक से अधिक योजना में जो मुख्य रूप से ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है, उसकी हमारे द्वारा जानकारी दी जा रही है। उसी की वजह से अधिक संख्या में हितग्राही हमसे जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे द्वारा डिजिटल इंडिया का जो QR कोड होता है, ताकि हितग्राही डिजिटल पेमेंट कर सके, वो भी हमारे द्वारा वितरण किए जा रहे हैं।
4: आर्थिक सहायता से छोटे व्यापारियों को अपना व्यापार बढ़ाने और आय में वृद्धि करने का अवसर मिल रहा है। योजना का लाभ पा चुके व्यापारी सरकार की इस पहल से काफी खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा।
1: हमारी अगली खबर है नीमच जिले से, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लायन डेन में जिला स्तरीय भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नीमच से हमारे संवाददाता दिनेश प्रजापति।
7: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को नीमच के लॉयन डेन में जिला स्तरीय भव्य योग कार्यक्रम आयोजित। जिला प्रशासन और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ये कार्यक्रम इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग पर आधारित होगा। कार्यक्रम जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, योग संस्थाओं, NCC, NSS

0: पुलिस बल तथा बड़ी संख्या में आम नागरिकों की सहभागिता रही। आकाशवाणी प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नीमच से दिनेश प्रजापति।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने सांसद संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊ साहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल अष्टिकर और ओम प्रकाश राजे निम्बालकर का पार्टी में स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। संवाददाताओं से बातचीत में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। दमकल कर्मी, पुलिस कर्मी और जिला शासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और निकासी अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
1: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
0: मुख्यमंत्री अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौट आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि इस भयानक दुर्घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलान बातार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्से तेसेग बटमुंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल

मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADAK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वह तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद SNSC के रक्षा मामलों के उप सचिव गादिर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हमारी आज की सांधिकालीन सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें आप सुनिएगा वृद्धावस्था में योग फॉर हेल्दी एजिंग विषय पर विशेषज्ञों एवं योगाचार्यों से बातचीत पर ओबी आधारित कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा होगी। 8:15 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। पब्लिक स्पीक 9:30 पर हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10 बजे पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में 10:30 पर सुनेगा संगीता गोस्वामी का ख्याल गायन, राग होगा यमन। और अब बारी है हमारे कल के कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में कल सुबह 7:20 पर प्रस्तुत करेंगे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुबह 8:30 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा होगा। 9:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेगा रमेश इंदुबासु की गाए भजन और गीत। 9:30 पर शब्द सागर कार्यक्रम में आप सुनेगा ऋषिकांत सक्सेना की वार्ता भारतीय पत्रकारिता का बदलता स्वरूप और सुभाष जाटव का काव्य पाठ। हर रोज की तरह जिले की चिट्ठी होगी सुबह 10 बजे। 10:05 पर पेश करेंगे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 पर सुनेगा सलीम अल्लाह वाले का तबला वादन, ताल होगा एक ताल। और इसी प्रोग्राम में रात्रि 10:30 पर सुनेगा तबले पर 3 ताल। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में 11 बजे आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे दिन में 12 बजे और 2:30 पर। 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुनेगा धारावाहिक भुवन मोहिनी का 5वां भाग। 1 बजे होगा महिला कार्यक्रम। 1:30 पर सुनेगा लोक संगीत का कार्यक्रम। दिन में 1:45 पर पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति होंगे। शाम 5 बजे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान करने हेतु नागरिक अलंकरण समारोह के आयोजन का दिल्ली से सजीव प्रसारण किया जाएगा।

शाम 5:33 पर, रात्रि 8:15 पर और 10 बजे आनंद ले सकते हैं आप फिल्म संगीत का। 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। शाम 6:30 पर आप सुन सकते हैं चित्रपट संगीत। 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में हम आपको सुनवाएंगे भेंटवार्ता, सतत कृषि विकास में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की भूमिका, जानकारी देंगी डॉक्टर मीना यादव। रात्रि 8 बजे होगा कार्यक्रम सुर्खियों में और रात्रि 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम आईना में आप सुनेगा गजलों पर केंद्रित कार्यक्रम आबशारी गजल। हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर बता दें कि कल शाम 5 बजे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान करने हेतु नागरिक अलंकरण समारोह के आयोजन का दिल्ली से सजीव प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: दीदी नौकरी लग गई।
4: अरे वाह, बधाई हो।
5: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
3: हाँ दी, नया मोबाइल।
5: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
5: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
3: पर दीप,
5: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
3: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
5: अच्छा।
6: RBI कहता है,
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कूनो में चीता मित्रों से किया संवाद, चीता संरक्षण की ली जानकारी। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कल से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में विशेष पखवाड़े का होगा आयोजन। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती दर्शन के लिए अब एक मोबाइल नंबर से 3 महीने में सिर्फ एक बार मिलेगी अनुमति, नई व्यवस्था आज से लागू। और प्रदेश में लंबा हुआ मानसून का इंतजार, 25 जून के बाद इसके राज्य में प्रवेश के आसार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 2 दिवसीय कूनो नेशनल पार्क के प्रवास के दौरान आज चीता मित्रों से संवाद कर चीता संरक्षण के प्रयासों की जानकारी ली। राष्ट्रपति ने चीता मित्रों से चर्चा करते हुए उनके द्वारा चीतों की सुरक्षा और आमजन के बीच चीतों के व्यवहार को लेकर किए जा रहे जन जागरूकता के प्रयासों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। श्रीमती मुर्मू ने सभी चीता मित्रों से 1-to-1 चर्चा कर परियोजना के लिए उनके द्वारा मानसेवी रूप से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। पेश है एक रिपोर्ट।
9: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
8: राष्ट्रपति इसके बाद कूनो से ग्वालियर पहुंची, जहां से वे अपना 5 दिवसीय मध्य प्रदेश का दौरा संपन्न कर दिल्ली के लिए रवाना हुई। प्रदेश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि 23 जून से उनकी जयंती 6 जुलाई तक विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव

0: ने नगरी निकायों के महापौर तथा नगर पालिका अध्यक्ष को मुख्यमंत्री निवास से वीसी के माध्यम से संबोधित करते हुए इसके निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का मानना था कि युवा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने युवाओं को नेतृत्व, शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए प्रेरित किया। इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। पखवाड़े के दौरान युवा सम्मेलन, निबंध प्रतियोगिता और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इससे नई पीढ़ी को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरी निकायों द्वारा मार्गों और उद्यानों का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया जा सकता है। इस प्रकार की पहल के लिए सभी प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक रूप से किया जाए तथा सक्षम स्तर से सभी स्वीकृतियां अवश्य ली जाएं। केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भोपाल के प्रशासन अकादमी में समान नागरिक संहिता UCC की राज्य स्तरीय समिति की अंतिम दौर की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समिति की अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई दिल्ली में एक अन्य आवश्यक मीटिंग होने के कारण व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सकी। उनकी अनुपस्थिति में समिति के अन्य सदस्य शत्रुघ्न सिंह, बुद्ध सिंह, गोपाल शर्मा, अनूप नायर और शोभा पैठणकर ने समिति के सदस्य सचिव अजय कटेसरिया के साथ मिलकर अलग अलग चार सत्रों में विभिन्न पक्षों के साथ महत्वपूर्ण सुझाव लिए। बैठक में देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि इस महत्वपूर्ण चर्चा में केवल भाजपा और CPM के नेता ही शामिल होने पहुंचे, जबकि कांग्रेस सहित अन्य दल बैठक से नदारद रहे। उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर में भस्म आरती के लिए आज से नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब श्रद्धालु बाबा महाकाल की भस्म आरती की अनुमति के लिए 3 माह में सिर्फ एक बार अपने मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकेंगे। ये व्यवस्था प्रोटोकॉल से आने वाले ऐसे मोबाइल नंबरों पर भी लागू होगी जिनसे हर माह भस्म आरती की अनुमति ली जा रही है। हालांकि महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि ये व्यवस्था पहले से ही लागू है, अब इसे और प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है ताकि आम श्रद्धालुओं को भी आसानी से दर्शन का मौका मिले। अब एक ही मोबाइल नंबर का बार बार उपयोग नहीं हो सकेगा। इस नियम से उन आम भक्तों को फायदा होगा जो महीनों तक ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवा पाते थे। मंदिर समिति का दावा है कि इससे भस्म आरती में पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल आदिरंग शिल्पकार महोत्सव 2026 के समापन समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आचारपुरा स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान परिसर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री महोत्सव के दौरान जनजातीय शिल्पकारों द्वारा विकसित उत्पादों एवं डिजाइन हस्तक्षेपों की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही शिल्पकारों, डिजाइन विशेषज्ञों और प्रतिभागियों से संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। समारोह में जनजातीय कला, शिल्प और आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों तथा डिजाइन आधारित नवाचारों की जानकारी दी जाएगी। इस वर्ष जनवरी में आधार ऐप शुरू होने के बाद 3,10,00,000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। इलेक्ट्रॉनिक ई और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इस ऐप के बढ़ते इस्तेमाल से पता चलता है कि सेवाओं का लाभ शीघ्र उठाने में इसके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। इसका उपयोग करके करीब 40,00,000 लोगों ने अपने मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं और करीब 8.5 लोगों ने अपने पते अपडेट करने के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है। इस एप्लीकेशन के जरिए एक क्लिक में लॉक या अनलॉक करना, उपस्थिति के साक्ष्य के लिए चेहरा प्रमाणित करना, QR बेस्ड परिचय पत्र और विजिटिंग कार्ड जैसी सेवाएँ प्राप्त की जा रही हैं। 19वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में डॉक्टर बीना उन्नीकृष्णन की डॉक्यूमेंट्री Y64 विस्पर्स ऑफ द अनसीन का प्रदर्शन किया गया। संस्कृति विभाग के सहयोग से निर्मित यह डॉक्यूमेंट्री अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए पहली बार प्रदर्शित की गई। ये फिल्म प्रदेश के मितावली स्थित मंदिर पर बनी है। अपर मुख्य सचिव संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश के मितावली, मुरैना, जबलपुर और खजुराहो के 64 योगिनी मंदिर हमारी पुरातन स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मितावली का 64 योगिनी मंदिर, जिसने भारत की पुरानी संसद भवन की वास्तुकला को

किया आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भी शामिल है। Y-64 विस्पर्स ऑफ द अनसीन जैसी परियोजना इस अद्वितीय विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचा रही है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून तय समय से करीब 7 दिन पीछे चल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून की एंट्री के लिए अभी 4 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। 23 जून तक मानसून के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की ओर बढ़ने की संभावना है, जबकि 25 जून के बाद इसके मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के आसार हैं। जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया कि शहर में आज सुबह आधे घंटे से अधिक अच्छी बारिश हुई, जिससे वातावरण में ठंडक आई और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिली। इस बीच प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां आज भी जारी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल की ITI प्रभातपट्टनम में वर्ष 2026 की प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। झाबुआ कलेक्टर ने शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए कन्या माध्यमिक शाला पिटोलबड़ी के सहायक शिक्षकों और प्रधान पाठक को सम्मानित किया। आज सीहोर जिले के बमूलिया, मुगाली, पांगरा, बागेर और नौगांव के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को NHRC दिल्ली द्वारा NQAS प्रमाणित किया गया। शिवपुरी में PM जनमन आवास योजना में लापरवाही को लेकर ग्राम पंचायत करई के सचिव को निलंबित किया गया। गुना में युवा संगम अंतर्गत जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 24 जून को शासकीय महाविद्यालय चाचौड़ा बीनागंज में किया जाएगा। और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान खंडवा के द्वारा प्लम्बिंग एवं सैनिटरी वर्क का 6 दिवसीय प्रशिक्षण 10 जुलाई से आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कूनो में चीता मित्रों से किया संवाद, चीता संरक्षण के लिए जानकारी। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कल से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में विशेष पखवाड़े का होगा आयोजन। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती दर्शन के लिए अब एक मोबाइल नंबर से 3 महीने में सिर्फ एक बार मिलेगी अनुमति, नई व्यवस्था आज से लागू। और प्रदेश में लंबा हुआ मानसून का इंतजार, 25 जून के बाद इसके राज्य में प्रवेश के आसार। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी भोपाल से लीजिए सुने कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुनबे बारे हमारे सभी भैया बहने पुष्पा बहन की स्वीकार है राम राम। भैया रो ये समय आप सभी के हाल चाल पूछें तो आप जई के हो के हम तो नौने हैं। गर्मी से तनक राहत मिल रही है, कहे कि देखो अब आ रहा है बस कारो सो खूब गिरन लगे रिमझिम बूंदियाँ और छाए रहे हैं कारी कारी बदरा और संग में होन लगे अब आई खरीफ फसल की बुवाई। सो फिर देखो आप सभी के लाने हैं काम ही काम। सो हम तो जई के हैं कि संजय बिरिया रोज ग्राम सभा सुनो और खूब अच्छी अच्छी जानकारी ले और संग में सुनियो मधुर मधुर लोकगीत। और देखो भैया रो आज आप सभी सुनियो किसान उत्पादक संगठन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड पे हुई है चर्चा। मनो उससे पहले कायना सुन ले गणेश वंदना स्वर है मोतीलाल प्रजापति और साथियों।

0: तो भैया हरो आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार।
0: बुंदेली समाचारों के संग हैं हम हैं पुष्पा सिंह। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने दो दिवसीय कूनो नेशनल पार्क के प्रवास के दौरान आज चीता मित्रों से संवाद करके चीता संरक्षण के प्रयासों की जानकारी ली। राष्ट्रपति ने चीता मित्रों से चर्चा करत भय उनके द्वारा चीतों की सुरक्षा और आमजन के बीच चीतों के व्यवहार को लेकर करे जा रहे जन जागरूकता के प्रयासों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त करी। श्रीमती मुर्मू ने सभी चीता मित्रों से वन टू वन चर्चा करके परियोजना के लाने उनके द्वारा मानसेवी रूप से करे जा रहे प्रयासों की सराहना करी। राष्ट्रपति को चीता मित्रों ने अवगत करा हुआ है कि कूनो नेशनल पार्क से लगे सभी ग्रामों में चीता मित्र मौजूद हैं जिनके द्वारा चीतों की सुरक्षा के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक करो जा रहा है। राष्ट्रपति कूनो से ग्वालियर पहुंची जिते से भी अपनो 5 दिनी मध्य प्रदेश दौरा समाप्त करके दिल्ली रवाना भई। प्रदेश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि 23 जून से उनकी जयंती 6 जुलाई तक विशेष पखवाड़ा आयोजित करो जे है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इके निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कही है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जीवन राष्ट्रीय एकीकरण के लाने समर्पित रहो। उन्हें राष्ट्र की एकता अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगरीय निकायों के महापौर तथा नगर पालिका अध्यक्ष को मुख्यमंत्री निवास से बीसी के माध्यम से संबोधित करत भाई डॉक्टर मुखर्जी के विचार जन जन तक पहुंचावे के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है कि डॉक्टर मुखर्जी को मानबो हतो कि युवा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। उनने युवाओं को नेतृत्व शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व के लाने प्रेरित करो। ई पखवाड़े को मुख्य उद्देश्य उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने हैं। पखवाड़े के दौरान युवा सम्मेलन निबंध प्रतियोगिता और संवाद कार्यक्रम आयोजित करे जे हैं। इससे नई पीढ़ी को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़वे को अवसर मिले है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है कि नगरीय निकायों द्वारा मार्गों और उद्यानों को नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे करो जा सका थे। इस प्रकार की पहल के लाने सभी प्रक्रियाओं को पालन आवश्यक रूप से करो जाए और सक्षम स्तर पे सभी स्वीकृतियां अवश्य लाई जावे। मध्य प्रदेश में मानसून तय समय से करीब 7 दिन पीछे चल रहा है। मौसम विभाग को अनुमान है कि प्रदेश में मानसून की एंट्री के लाने अब 4 दिन और इंतजार करने पड़ सकते हैं। 23 जून तक मानसून के छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की ओर से आगे बढ़ने की संभावना है जबकि 25 जून के बाद इसके मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के आसार हैं। ई बीच प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां आज भी जारी हैं। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, मैहर, अनूपपुर, कटनी, दमोह, सागर, विदिशा और अशोकनगर में तेज आंधी चलवे को अलर्ट जारी करोगा है। पन्ना जिले में उर्वरकों को अवैध विक्रय, अनाधिकृत भंडारण, कालाबाजारी तथा नकली व मिलावटी उर्वरकों के निर्माण की संभावना, अनुदानित उर्वरकों यानी यूरिया के अनाधिकृत औद्योगिक उपयोग की संभावना

0: के दृष्टिगत तथा अवैध गतिविधियों की रोकथाम एवं नियंत्रण के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा सूचनादाता प्रोत्साहन योजना लागू करी गई है। विभाग द्वारा इकिला ने विश्वसनीय सूचनाओं को प्रोत्साहित करो जे है। योजना में खाद की कालाबाजारी की सूचना देवीवारों को 1,000 रुपये नगद इनाम प्रदान करने को प्रावधान है। प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में दई जे है। राज्य एवं जिले को कोई भी नागरिक किसान या व्यापारी अवैध गतिविधियों की शिकायत दर्ज करा सका थे। शिकायत के लाने हेल्पलाइन नंबर 155253 जारी करो गो है। सूचना देवीवारों की पहचान भी गुप्त रखी जे है। ये योजना 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। बुंदेली समाचार संपन्न भय।
1: बुंदेली समाचार।
0: भैया हरो, आप सभी को ग्राम सभा कार्यक्रम में स्वागत है। तो भैया बहन हरो, आज हम एक ऐसी चर्चा पे बात कर रहे हैं जी को नाम है किसान उत्पादक संगठन। सो भैया हरो, जो नाम सुन के घबराने जाइयो, काहे कि जो नाम किसान भैया ने खूब अच्छे से जानत हैं और सुनत हैं और समझत भी हैं। सो भैया, हम बताऊत हैं कि पहले का होता तो कि हमारे 10 किसान भैया ने अलग अलग मंडी जाता थे। एक ट्रैक्टर भर के गेहूँ चना या सोयाबीन लेके जाता थे। मानो का हो तो कि व्यापारी भाव कम लगा दे थे और 10 प्रकार की कमियाँ नकारत थे और 200-500 रुपया काट लेते। मानो अब ऐसो नहीं है, किसान उत्पादक संगठन से किसान भैया हरों एक हो गए हैं। जैसे कि कहत नहीं है कि अकेली लाठी तो टूट जे है, मानो पूरो गट्ठा तोड़वे में देखो बड़ी मेहनत लगत है। तो कहावत भी साँची है कि एकता में बहुत ही बल है। सो इसे बहुत ही फायदा भी है, हमारे किसान भैया हरों को भाव अच्छो मिले और 500 किसान भैया हरों की फसल एक साथ बेखे। व्यापारी मूल भाव ने कर पे हैं और बीज की दलाली भी खत्म हो जे है। और सो भैया हरों, अब तो मैं की खेती छोड़ो और हम की खेती करो और सब मिलकर खेती करो। किसान उत्पादक संगठन बनाओ और मंडी पर राज करो, लाभ कमाओ। और कोनो मन में शंका हो तो किसान कॉल सेंटर पर कॉल करियो और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करियो। तो भैया जा तो हो गई जानकारी। और भैया बहन हरो, हम जा कह रहे हैं कि देखो कल यानी 21 जून को हाथों योग दिवस, और योग दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य है? जो ये उद्देश्य है हम सब जानत हैं और कहत भी हैं कि पहलो सुख निरोगी काया। सो खूब करो योग और रहो स्वस्थ। सो हमारे मनोज भैया ने खूब अच्छी जानकारी इकट्ठी करी है ताकि सभी सुनो और लाभ उठाओ। सो सुनत हैं विशेष कार्यक्रम में वृद्धावस्था में योग विषय पे विशेषज्ञों और योगाचार्यों से बातचीत पे आधारित कार्यक्रम। और मनोज भैया ने बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रश्न पूछे हैं विशेषज्ञों से। सो हमारे कक्का काकी भैया भौजी दादा दादी ध्यान से खूब सुने जानकारी और फिर उठाएं लाभ।
2: नमस्कार श्रोताओं, योग भारत की प्राचीन और अमूल्य विरासत है। योग भारत की पहचान है। पूरी दुनिया आज योग के महत्व को जान रही है। योग हमारे शरीर मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करता है। जो हमारे शरीर मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करता है, जो हमें स्वस्थ शांत और सकारात्मक बनाता है। जी हाँ, योग पर आधारित विशेष कार्यक्रम योग फॉर हेल्दी एजिंग यानी कि वृद्धावस्था में या बढ़ती उम्र में योग और प्राणायाम के माध्यम से हम अपने आप को किस प्रकार स्वस्थ रख सकते हैं। जी हाँ, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं सुविख्यात योग गुरु डॉक्टर शुभ्रा विजय वर्गीय, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, डॉक्टर शैलजा त्रिवेदी और योग गुरु डॉक्टर पूजा मुद्गल। आइए उनसे जानते हैं योग और प्राणायाम के महत्व के बारे में, जानते हैं बढ़ती उम्र में हम योग और प्राणायाम के माध्यम से किस प्रकार अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर शुभ्रा विजय वर्गीय के पास। नमस्ते मैम।
3: नमस्ते सर।
2: हम बात कर रहे हैं योग फॉर हेल्दी एजिंग, इसको कैसे समझाएंगे आप?
3: देखिए, एक एज के साथ साथ आपका जो शरीर है वो आपकी मांसपेशियां आपकी बोन्स कमजोर होने लगती हैं और आप एक एज के बाद अपने काम से भी फ्री हो जाते हैं, बच्चे भी बाहर चले जाते हैं, तो मानसिक तौर पे भी आपको लगता है कि मैं फ्री हूँ। तो ये शारीरिक और मानसिक जो चीज़ें होती हैं वो आपको अब घेर

0: हैं, तो उस समय योग अपने आप में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाने लगता है। यदि आप यम नियम के साथ में आसन प्राणायाम अपने जीवन में लेकर आते हैं,
1: जी
0: तो आपको अपने अंदर एक अलग सा चेंजेस फील होगा एक ओल्ड एज में, जो यदि आप नियम को फॉलो करते हैं, थोड़े थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, प्राणायाम को करते हैं, तो आप देखिए आपको बहुत चेंजेस अपने अंदर मिलेंगे। तो ये वाली चीज़ मैं कहूँगी कि यदि आप ओल्ड एज में प्रवेश कर रहे हैं कुछ नहीं, तो थोड़ा सा यम नियम को पढ़ के समझ के सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा प्राणायाम की स्टेप्स, यदि आपने अभी तक योग में कुछ किया नहीं है, तो इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। फिर आप अनुशासन के साथ इन सब चीज़ों को करते हैं तो निश्चय ही आपको बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा।
1: शुभ्रा जी, वाकई जब आप बता रही हैं ना, तो हमारे जो श्रोता हैं वह समझ रहे हैं कि आप बहुत अच्छी योग गुरु हैं। अपना परिचय भी प्लीज दीजिए।
0: मैं डॉक्टर शुभ्रा विजयवर्गीय हूँ और मैंने योगा थेरेपिस्ट का कोर्स किया है, और उसके बाद मैंने अपना जो पीएचडी की है वो कॉरपोरेट वेलनेस थ्रू योगा, तो योगा मैंने लोगों के जीवन में उतारा है और अपने जीवन में भी उतारा है।
1: हमारे पास एक और योग गुरु हैं, श्री डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी।
2: नमस्कार सर, मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, मैं 15 वर्षों से इस योग में कार्यरत हूँ और मैंने योग में डॉक्टरेट पीएचडी किया हुआ है देवी एलियन यूनिवर्सिटी से। सर, मैंने देखा कि आज जो लाइफस्टाइल है, इम्बेलेंस लाइफस्टाइल जिसको हम कहते
1: जी
2: हैं,
1: जी
2: जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जैसे सोने का समय उस समय हम भोजन ले रहे हैं और जो
1: जी
2: भोजन का समय उस समय हम सो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिजिकल मेंटल हो रही हैं।
1: जी
2: और जब हम मेडिसिन लेते हैं तो
1: जी
2: उससे और
1: जी
2: भी साइड इफेक्ट्स कुछ ना कुछ ऑर्गन्स पे होते हैं।
1: जी
2: तो जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो विरासत में एक ज्ञान प्राप्त हुआ वो योग, जिसका अभ्यास अगर हम नियमित रूप से करते हैं, जैसे आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं
1: जी जी
2: जिनसे हम निरोगी जीवन को आसानी से बिना किसी दवा के जी सकते हैं।
1: श्रोताओं, हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलजा त्रिवेदी जी और योग के बारे में इनसे भी हम जानते हैं। हमारा मैम विषय है कि जो उम्र दराज लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो स्वस्थ रहें, योग करें, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगी?
3: नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलजा त्रिवेदी अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय से हूँ, योग विभाग से, और मेरी पीएचडी भी योग से ही है, और मैं पिछले 25 साल से भोपाल शहर में योग पर ही काम कर रही हूँ।
1: जी
3: और वृद्धावस्था पर योग पर हम लोग ये भी कार्य कर रहे हैं, हमारा शिविर भी चल रहा है, उसमें 60% लोग हमारे पास जो आ रहे हैं वो 50+ ही आ रहे हैं। और योग को जो नहीं करते थे उन्होंने पिछले 10 से 12 दिन में जब लगातार किया तो बहुत सारे परिवर्तन महसूस किए, क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है जहाँ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक संतुलन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एज बढ़ती है उस समय एक अकेलापन भी सामने आने लगता है, बच्चे बाहर चले जाते हैं, पेरेंट्स अकेले हो जाते हैं, कई बार रिटायरमेंट के बाद वो कुछ करते नहीं हैं, घर पर ही रहते हैं, ऐसी परिस्थिति में कई बार नहीं बीमार हो तो मन से व्यक्ति बीमार होने लगता है। और ये बहुत जरूरी है कि यदि हम जीवन को अनुशासित रखें, अपने जीवन में योग पद्धति को, योग की जीवन शैली बनाएं, जीवन पद्धति बनाएं, तो मैं नहीं सोचती हूं कि वृद्धावस्था में कोई समस्या होगी, क्योंकि ये समय यदि आप अपने आप को मजबूती से खड़े रख सकते हैं भावनाओं से, तो आप बीमारियों से भी बच सकते हैं, क्योंकि बीमारी शरीर में बाद में आती है, पहले व्यक्ति मन से बीमार होता है। और वृद्धावस्था में उनको एक सुरक्षात्मक वातावरण चाहिए, अनुशासित जीवन शैली चाहिए, एक अच्छा पौष्टिक आहार चाहिए और परिवार में खुशहाल वातावरण चाहिए, तो वृद्ध जो है स्वस्थ रहेंगे और खुशहाल रहेंगे।
1: मित्रों, हम अब आपकी भेंट करवा रहे हैं सुविख्यात योग गुरु पूजा मुदगल जी से। पूजा जी, आपने योग के ऊपर इतना काम किया है, अगर मैं कहूं कि जो वृद्धावस्था होती है या बढ़ती उम्र होती है व्यक्ति की, क्या उसको धीमा किया जा सकता है योग के माध्यम से?
4: जी हाँ, वृद्धावस्था को सफल और आसान बनाने के लिए और वृद्ध होने की जो हमारी गति है, या हम अगर युवा भी हैं तो वृद्धावस्था तक जाने का समय इतनी तेज़ी से हम तय कर लेते हैं जिम्मेदारियों को निभाते निभाते, कि हमें पता नहीं चलता कि कब हमारा समय बहुत सारा गुजर गया और ज़िंदगी की शाम सामने आ गई है। तो उस गति को धीमा किया जा सकता है अपने विचारों में, मन में संतुलन और ठहराव लाके, जिसके लिए योग से बड़ा और आसान कोई साधन नहीं है।

0: दूसरी बात, जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम अपनी सांसों को भी कुछ देर के लिए अपने नियंत्रण में ला देते हैं। पूरी जागरूकता, नियंत्रण और समर्पण के साथ हमारा ध्यान सांसारिक विषयों से हटकर पूरी तरह से हमारी सांसों पर अटक जाता है, मतलब केंद्रित हो जाता है। योग हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। वृद्धावस्था में सबसे बड़ी परेशानी अगर ओल्ड एज पीपल की होती है तो वो ये होती है कि शायद 80% लोग ये सोचते हैं कि मुझसे कहीं कोई गलती हो गई या कमी रह गई
1: जी।
0: या मुझे ये मिला तो कम मिला, या ये नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, काश मैं पुराने वक्त को लौटा कर ले आ पाता, या मैं कुछ ऐसा करता कि अतीत को दोबारा जी सकता। इसके अलावा बिगड़ता शरीर, कमज़ोर होती हड्डियाँ, नई नई बीमारियों का सामना करना व्यक्ति को अंदर से कमज़ोर भी करता है और अशक्त भी बनाता है, तो असुरक्षा की भावना पैदा होती है मन में, जैसा अभी शैलजा मैम ने कहा।
1: जी।
0: सबसे बड़ी जो परेशानी है वृद्धावस्था में, वो शरीर से भी ज़्यादा गहरी परेशानी है मन की। अब यहाँ वृद्ध जनों को ये सोचने की ज़रूरत है कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका शरीर ही है। तो जब वृद्ध लोग योग करना शुरू करते हैं, तो मेरी क्लास में भी जब योग वृद्ध जन आते हैं 50+ 60+, तो मैंने ये देखा है कि सबसे पहले तो उनकी खुशी और प्रसन्नता और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। उन्हें लगता है कि मेरे घुटने काम करना शुरू हो गए, मैं जमीन पर बैठ पा रही हूँ, मेरा डाइजेशन सुधरा है, मेरी निर्भरता बच्चों पर या पोते पोतियों पर कम हो गई है, मैं खड़ी रह सकती हूँ, मैं ज़्यादा देर तक जमीन पर बैठ सकती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ने में मुझे तकलीफ कम हो गई है। तो ये जो छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं योग से जुड़ने के बाद, वो उनको अंदर से सशक्त बनाते हैं। और योग का जो परसेप्शन है, आयाम है, वो केवल शारीरिक अवस्था तक सीमित नहीं है। योग व्यापक जीवन शैली है, जीवन जीने की कला है। कहते हैं कि मैं हमेशा अपनी क्लासेस में कहती हूँ कि योग को मैट पर केवल किया नहीं जाता, योग को आजीवन जिया जाता है।
1: वाह।
0: मन, विचार और व्यवहार से भी।
1: जी।
0: मैट बिछाकर योग नहीं होगा, वो तो केवल एक घंटे के लिए होगा, बाकी 23 घंटे। तो कहीं ना कहीं हमें ये संतुष्टि मन में लाना ही होगा कि जो मैंने किया वो मेरा सर्वश्रेष्ठ था, और अब जो मेरा समय है वानप्रस्थ आश्रम में जाने का, तो ये मेरा समय है ईश्वर के प्रति शरणागत होने का। तो यहाँ ईश्वर प्रणिधान आ जाता है, जैसा शुभ्रा मैम ने कहा। तो योग एकांत से जुड़ने का, स्वाध्याय करने का, ईश्वर के प्रति समर्पित होने का, भक्ति योग को आत्मसात करने का, और कर्म योग को भी स्वीकार करने का सबसे अच्छा समय हो सकता है, अगर हम योग का हाथ पकड़ लें।
2: मित्रों, बिल्कुल सच बात है। जब व्यक्ति बुजुर्ग होता है, उम्र दराज होता है, बूढ़ा हो जाता है, तो वह अपने जीवन के सारे गणित वहां बैठकर लगाता है, मैंने क्या खोया क्या पाया। और यहाँ मैं समझता हूँ कि एक शब्द उसके जीवन में बहुत कुछ दे जाता है, जिसे कहते हैं योग। तो आइए ना हम डॉक्टर शुभ्रा जी से जानते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में बुढ़ापा आए ही ना, हमेशा वह तन से मन से स्वस्थ रहे, ऐसी स्थिति में उसे किस तरह से तैयारी करना चाहिए शुरुआत से?
3: देखिए, अगर वृद्धावस्था आपको चाहिए ही नहीं, तो आपको उसकी शुरुआत अपने अधेड़ अवस्था 40 के बाद से ही शुरू करनी पड़ेगी
2: जी।
3: और जिन लोगों को आ गया है, तो वो भी अभी मन से वो करने के लिए आप आज भी शुरुआत कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पीछे हैं। लेकिन आप शुरुआत जब करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको अपने लाइफस्टाइल, जिसको योग को हम कहते हैं, योग जीवन जीने की कला है, और जब इस कला को आप अपनाते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में जोड़ते हैं, रेगुलरली जोड़ते हैं
2: जी।
3: तो आप रूटीन में जब इसको करते हैं, रोज़ एक घंटा नहीं तो कम से कम आधा घंटा 20 मिनट देते हैं, तो आप अपने अंदर एक अलग सा परिवर्तन महसूस करते हैं। और ये परिवर्तन केवल इंटरनल नहीं होता है
2: जी।
3: ये एक्सटर्नल होता है, आपके फेस पर दिखता है, आपकी बातों में झलकता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। तो जब ये कॉन्फिडेंस आता है, तो डेफिनेटली आप बुढ़ापे की तरफ नहीं जाते। आपका फेस जो एक चमकदार बनता है, तो आप बुढ़ापे की तरफ नहीं जाते, आप यंग बने रहते हैं। और वो यंग आज से बने हैं, तो आप अपने 80 साल तक की तैयारी कर रहे हैं, कि आपका मन भी जवान रह रहा है। तो आप आसन करिए, आसन से आपका पूरा जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है बॉडी की, ये हमेशा बनी रहेगी। आज ऐसा नहीं कि मैंने जैसे 40 की उम्र में कोई मेरा स्टूडेंट शुरू कर रहा है, तो वो करते हैं, तो वो हलासन मेरे साथ आज 10 साल से जुड़े हैं, तो वो हलासन आज भी कर पाते हैं
2: जी।
3: तो देखिए, 10 साल में उनकी उम्र भी बढ़ी, लेकिन हलासन, वो फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की वही है, और शायद बढ़ी ही है और मेंटेन्ड है। तो यही योग का चमत्कार कह सकते हैं हम।

0: कि यदि रेगुलरली आप योग करते हैं तो आप वृद्धावस्था तक पहुंचते पहुंचते लेकिन आपका मन जवान रहता है, आपकी सोच भी बूढ़ी नहीं होती है, क्योंकि आपकी सोच विस्तृत हो जाती है, क्योंकि आपका मन और शरीर दोनों जो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जो चित्त की वृत्तियां हैं उसको उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, कंट्रोल कर लिया है, तो वो चीज़ें आपको परेशान नहीं कर रही हैं। आसन में एक जो सूत्र है पतंजलि योग दर्शन का, उसमें उस सूत्र में कहा गया है ततो द्वंद्वाना अभिगाय, मतलब आप जब आसनों को सिद्ध कर पाते हैं तो द्वंद्व की स्थिति आपके अंदर से खत्म हो जाती है। मतलब सुख दुख मोह क्रोध लोभ द्वेष ये सब चीज़ों से अपना एकदम बैलेंस में आ जाते हैं कि मुझे कहाँ कितना किससे क्या करना है, बहुत ज़्यादा ना शोक करना है ना दुख करना है, तो ये वाली बैलेंस की स्थिति आपके अंदर आने लग जाती है। तो जब आप रेगुलरली आसन करेंगे तो आपको एक उसके अचीवमेंट के बाद आसन जब आपके सिद्ध होने लगते हैं कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करने लगते हैं तो ये जो मानसिक स्थिति आपकी बनती है वो एक अलग ही अनुभव होता है और यही अनुभव आपको वृद्धावस्था में जाने से रोक लेता है।
1: देवेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि आदमी जब कमान होता है तो तजुर्बा जवान होता है। व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसका अनुभव बढ़ता चला जाता है, पर वाकई अभी हमें ऐसे लोग दुनिया में मिल जाते हैं जो 90 और 100 साल के हैं, उन्होंने कभी योग नहीं किया है पर स्वस्थ हैं, उनसे लोग सीखते हैं। पर यहाँ सबसे बड़ी बात जो आज हम कहना चाहते हैं कि अगर आप वो अनुशासन से जी रहे थे, जिस तरीके से वो जी रहे थे, उसमें अगर योग भी शामिल हो जाए तो ये जीवन कितना और उज्जवल हो सकता है।
2: देखिए कि प्राचीन काल में या आज से 50 साल पहले की बात करें, जब हमने अपने पूर्वजों को देखा, जैसे पिताजी को देखा, अपने दादाजी को देखा, दादी को देखा, उनकी लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट थी। जैसे सुबह 4 बजे उठना
1: सच
2: और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, तो हम देख रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में सृष्टि की जितनी सकारात्मक ऊर्जा है उसका संचार होता है, और जब उसका संचार होता है तो व्यक्ति वैसे ही मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है।
1: जी जी।
2: फिर देखा कि उनकी कार्य प्रणाली कैसी थी, कि जैसे हल चलाना, पैदल चलना, साइकिल चलाना, माताएं चक्की घर में आटा पीसती थी, कुएं से पानी खींचा जाता था, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यायाम था और स्वस्थ रहने का एक खजाना था, एक राज था वो, जिसे हम आज भूल चुके हैं। अब इसमें योग को और जोड़ दें कि वास्तव में देखा जाए कि हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्ष जिया करते थे, ऐसा प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है। वो प्राणायाम के माध्यम से जिया
1: सच बात।
2: क्योंकि पतंजलि कहते हैं तस्मनि शति श्वास प्रश्वास योगर्थ विच्छित प्राणायाम, कि प्राण वो शक्ति है उसे प्राणायाम के माध्यम से जीता जाता। तो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल का एक सिस्टम है वो गड़बड़ाया हुआ है।
1: जी जी जी।
2: तो योग करें और स्वस्थ रहें, और योग वास्तव में केवल मोक्ष तक ही ले जाने का एक जरिया नहीं है, स्वस्थ जीवन शैली को जीने का एक सुखद अनुभव है और तरीका है।
1: डॉक्टर शैजा जी, आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि हर घर में 2 से 5 हजार, 8 हजार रुपए की दवाएं आती हैं, ये सिलसिला क्या योग रोक सकता है?
3: मैं फिर से कहती हूँ, यदि हमें अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, मेडिसिन से मुक्त रखना है, तो यौगिक जीवन शैली के साथ हमें अपनी खान पान की आदतों पर भी बहुत सारा नियंत्रण करना पड़ेगा। केवल योग करने से ही पूर्ण स्वास्थ्य नहीं प्राप्त कर सकते। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हमारी आहार है वही औषधि है, और आहार को यदि हम औषधि के रूप में तब लेंगे जब हम उसे सही और उचित और नियंत्रित मात्रा में खाएंगे। यदि आप वृद्धों को नियमित रूप से अच्छे से खान पान देंगे, उनकी जीवन शैली अच्छा रखेंगे, तो मैं नहीं सोचती हूँ कि 8 और 10 हजार की दवाइयाँ आएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी अपनी जीवन शैली से, खान पान से, अपनी आदतों से, विचारों से, व्यवहारों से, हम इन सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं। योग को शामिल करें, क्योंकि योग केवल शारीरिक पक्ष नहीं है, तो लोगों ने इसका लोहा माना है कि योग आवश्यक है। आप यदि इसको अपने जीवन शैली बनाते हैं तो मैं नहीं सोचती हूँ कि आपको दवाई गोलियों की इतनी आवश्यकता होगी, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमें आत्मविश्वास देता है। छोटी सी बीमारी से व्यक्ति घबरा जाता है, लेकिन योग में सबसे बड़ी चीज़ है जो सकारात्मकता है, वो आपको नकारात्मक की तरफ जाने ही नहीं देगा, निगेटिविटी आपके अंदर आएगी नहीं, वो हमेशा आपको जब भी मौका मिलेगा तो वो आपको फाइट करना सिखाएगा, फ्लाई करना नहीं सिखाएगा। तो योग केवल आपको स्वास्थ्य ही नहीं देता, ये संपूर्ण व्यक्तित्व को बनाता है, ये आपके अंदर आत्मविश्वास देता है।
1: योग आपको आत्मविश्वास देता है। मित्रों, अगर मैं आज आपसे एक सवाल करूं कि आपका सबसे

0: अच्छा सबसे करीबी सच्चा दोस्त कौन है? तो आप सोचने लगेंगे, अपने आसपास ढूंढने लगेंगे, पर आपको मैं बता दूं, आपका सबसे अच्छा सबसे सच्चा अगर कोई दोस्त है तो वह है आपका शरीर। हर समय हर क्षण आपकी आज्ञा का पालन करने वाला, आपका सहयोग करने वाला केवल आपका शरीर है। आप जब बोलते हैं उठ जाइए, उठ जाता है। आप जब चाहे जो काम करने का बोलते हैं वह कर देता है। आपका मन भला ही ना बोले पर शरीर आपकी आज्ञा को मान लेता है। ऐसे दोस्त को स्वस्थ बनाए रखना आपका धर्म है, आपका कर्म है, आपका कर्तव्य है। तो इस तन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अगर हम योग की तरफ जाते हैं, तो आप क्या लगता है, ये स्वस्थ रखने के लिए योग क्यों जरूरी हो गया है आज?
1: आपका प्रश्न बहुत व्यापक है
0: जी
1: और मुझे इस पर श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक याद आता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
0: जी
1: युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। इसका अर्थ है कि हम उम्र के हर पड़ाव में

0: लगता है ये स्वस्थ रखने के लिए योग क्यों जरूरी हो गया है आज?
1: आपका प्रश्न बहुत व्यापक है
0: जी,
1: और मुझे इस पर श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक याद आता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
0: जी,
1: युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। इसका अर्थ है कि हम उम्र के हर पड़ाव में, हर मोड़ पर, हर स्थिति में, चाहे हमारी शारीरिक, मानसिक या फाइनेंशियल स्टेटस हमारा कभी भी कैसा भी हो, या हमारी उम्र कोई भी हो, अगर हम युक्त आहार लेते हैं, युक्त आहार का मतलब है कि सही खान पान जो उचित होना चाहिए हमारे स्वास्थ्य के लिए, शुद्ध और सात्विक, तो आहार भी युक्त हो, हमारा विहार यानी हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी प्रॉपर हो, जो आमोद प्रमोद और मनोरंजन के साधन हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं वो भी सही हो, हमारी किसी भी कर्म को करने के लिए जो चेष्टा या प्रयास होते हैं, चाहे हम विद्यार्थी जीवन में हैं या हम वर्किंग हैं, ऑफिस संभालते हैं, बिजनेस संभालते हैं, या हम घर संभालते हैं, हाउसवाइफ हैं, या हम रिटायर्ड पर्सनालिटी हैं, हर उम्र में हमारे ऊपर कुछ दायित्व होते हैं, पर उन दायित्वों का निर्वाह करते समय हम जिन आचार विचार व्यवहार का पालन करते हैं, खुद के प्रति भी, दूसरों के प्रति भी, ये भी अपने आप में स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा पहलू है। फिर बात आती है सही समय पर सोने और जागने की, आप कितना सोते हैं, कब जागते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति है कोई जो आहार विहार कर्म और सोने जागने के प्रति अनुशासित और संयमित है, तो वो 100% स्वस्थ रहेगा, और न केवल वृद्धावस्था में बल्कि वो हर उम्र में स्वस्थ होगा।
0: हमारे जो श्रोता हैं उनका दिल लगता है कि योग करने के लिए अब तैयार हो चुका है, स्वीकार कर चुका है कि हमें योग करना है। एक व्यक्ति को बुढ़ा हो चुका है, 60 साल आ चुकी है, 50 साल है, 55 साल है, इस एज के जो लोग हैं कितनी देर योग कर सकते हैं वह शुरुआत में?
2: देखिए, आप शुरुआत कीजिए, पहले तो अपने मन को साधिए कि मुझे योग करना है, और एक अनुशासन के साथ कि हफ्ते में 5 दिन तो मुझे करना ही करना है, तो आप ये मन में ठान लेंगे तो फिर आप योग की शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ पर आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं। उस कंफर्टेबल पोजीशन में अपने हाथ पैरों का हलन चलन कीजिए, उंगलियों को हिलाइए, अपने टखनों को हिलाइए, घुटनों को मूवमेंट दीजिए थोड़ा थोड़ा। जब आपको लगता है कि ये थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आपकी बॉडी, जिसको हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं योग की लैंग्वेज में, ये करने लग गया है, अपने नेक तक का मूवमेंट दीजिए कि आपने अपनी पूरी स्पाइन को मूवमेंट देना शुरू किया है, तो आपका जो, जिसे हम कहते हैं हमारा एसिम्प्टोमेटिक नर्वस सिस्टम आपका चालू हो गया है, जो कि आपका मोटर नर्व, जिनको हम कहते हैं भाई मोटर नर्व की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है, तो वो मोटर नर्व मतलब आपके हाथ पैर का जो मूवमेंट है, आपकी मोटर नर्व है, आपकी ब्रेन की जो नर्व्स हैं, वो मोटर नर्व ने फ्लेक्सिबिलिटी बनाना शुरू करिए, तो अब आप अपनी अंदर की जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उन पर आप काम करना शुरू करेंगे। तो शुरू के दिन से आप बड़े आसनों का करने का प्रयास मत कीजिए यूट्यूब पे देखकर, किसी अच्छे योग गुरु के पास जाकर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, नेक मूवमेंट कीजिए, थोड़ा सा अपनी सांसों पर कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। देखिए, प्राणायाम एक दिन में नहीं होता, प्राणायाम जो है वो योग का प्राण है, और इसको करने के लिए पहले उसको समझना पड़ता है, अपनी सांसों पर कंट्रोल लाना पड़ता है। तो आप यदि सोचें कि मैं यूट्यूब पे देखकर श्वास प्रश्वास कर लूँगा वो प्राणायाम हो जाएगा, वैसा नहीं है। हमेशा योग को किसी अच्छे योग गुरु के मार्गदर्शन में सीखने का प्रयास कीजिए, जब आप उसको सीख जाएँ तब खुद से फॉलो कीजिए। तो योग में आपको एंटर होना पड़ेगा, अपने आप से उसमें जबरदस्ती नहीं करनी है।
0: देवेन जी, ऐसे लोग जो डायबिटिक है, हृदय रोग से पीड़ित हैं, ब्लड प्रेशर उनका ऊपर रहता है, गठिया की प्रॉब्लम है, या कोई उनका किसी प्रकार का ऑपरेशन हो चुका है, ऐसे लोगों को योग करने में कितनी सावधानी रखना चाहिए?
3: देखिए, हर बीमारी के हिसाब से योग है, क्योंकि अब विज्ञान का दौर है, और आज हम देख रहे हैं कि योग को विज्ञान की कसौटी पर उतार दिया है।
0: जी हाँ।
3: तो जैसे हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, हाई बीपी, लो बीपी, या हृदय रोग, बहुत सारी और भी डिजीज होती हैं, तो देखते हैं कि जैसे हृदय रोग के लिए अलग अलग आसन या प्राणायाम बताए गए हैं। जैसे एक सामान्य तौर पे बात करते हैं कि एक अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है,
0: जी हाँ जी,
3: जिसे करने का बहुत सरल और सहज तरीका बताया है कि आप लेफ्ट नासिका से इनहेल करते हैं, राइट से एक्सहेल करते हैं, फिर राइट से इनहेल करते हैं, लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्ति के लिए रामबाण है, क्योंकि आपके हृदय को ऑक्सीजन चाहिए, वो इसके माध्यम से पूर्ण होती है, तो इसका अभ्यास करें। लेकिन एक अभी कुछ सेकंड पहले मैडम ने बताया जैसे कि

0: वास्तव में योग को सीखने के लिए एक कुशल योग प्रशिक्षक की, एक गुरु की
1: जरूरत है।
0: जैसे इंटरनेट से देख के, किताबों से पढ़ के, यूट्यूब से देखकर या चर्चाओं से समझकर
1: बिल्कुल
0: भी योग ना करें। जितना सरल हम सोच रहे हैं उतना सरल वास्तव में योग नहीं होता। तो जैसे हाइब्रिड पेशेंट में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, कुछ ऐसे प्राणायाम आसन करें जिनसे चेस्ट एक्सपेंड होता है। जैसे अब मधुमेह की बात की आपने, डायबिटीज की, आज वर्ल्ड में भारत कैपिटल बना हुआ है इसका, उसके लिए कुछ विशेष आसन है, जैसे मंडूक आसन है, पश्चिम उत्तानासन है, वक्र आसन है, अर्धमत्स्यासन है। ये ऐसे आसन है जो आपकी पैनक्रियाज को एक्टिव करते हैं, उसकी इंटरनल मसाज करते हैं, जिससे इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ता है
1: जी।
0: साथ में कुछ आहार है, तो उन सब चीजों को बहुत सिस्टमेटिक समझने की आवश्यकता है। बहुत सही तरीके से आसन करते हैं तभी उसका लाभ प्राप्त होता है। जैसे देखते ना, कभी कभी पार्क में चले जाते हैं योग करने के लिए, मैं तो, अगर मेरा मत है तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप पार्क में जाके बिल्कुल भी योग इस तरह का ना करें, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो। हर आसन के लिए एक सही एक्सपर्ट से, एक योग थेरेपिस्ट से सलाह लें, तब आप योग के अभ्यास करें।
1: जी जी,
0: तो योग आपका सर्वांगीण विकास करता है।
1: शैलजा जी, एक सवाल और है।
2: जी सर।
1: जो लोग सेवानिवृत्ति की तरफ है, रिटायरमेंट ले रहे हैं, और जब कहते हैं ना कि जब रिटायरमेंट किसी व्यक्ति का होता है तो वह अपना एक नया जीवन शुरू करता है, और उस दिन वह बहुत सारे संकल्प लेता है कि अब मैं आज से सुबह उठ के पूजा करूंगा, सुबह उठ करके मैं योग करूंगा, सुबह मैं टहलने भी जाऊंगा, और अब मैं पुस्तकें पढ़ूंगा, बच्चों के साथ खेलूंगा। कुछ दिन होता है, कुछ दिन के बाद वापस से एक तरह से उनका वही रवैया शुरू हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि रिटायर्ड व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी हो जाती है उसको। क्या योग उससे बचा सकता है?
2: बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। जो लोग वर्कहोलिक होते हैं, जिन्होंने लंबे समय तक काम किया होता है, और यदि वो घर में आकर बैठ जाए, तो बिल्कुल सही है कि उनका बैठना बहुत मुश्किल है
1: जी।
2: तो ऐसे समय में लोग संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन उस संकल्प को करने के लिए अनुशासन जरूरी है। जो अनुशासित है वो तो जरूर कर लेते हैं, लेकिन जो अनुशासित नहीं होते हैं तो उन्हें प्रयास करना पड़ता है, और योग उसमें ऐसे मदद करता है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि योग ही अनुशासन है। हमारा जीवन का जो प्रेरणा है वो अनुशासन है। प्रेरणा कहीं बाहर से नहीं आती, जब हम अनुशासित होते हैं तो प्रेरणा हमारे अंदर से स्वयं जागृत हो जाती है। तो जो हमारे रिटायरमेंट के नज़दीक जितने भी लोग जाते हैं या रिटायर हो चुके होते हैं, तो उन्हें अपनी जीवन शैली पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आज मैं बता रही हूँ कि प्राणायाम एक ऐसा साधन है, तप है, या मैं ये कहूँ कि जीवन को बदलने का बहुत अच्छा आयाम है। आप प्राणायाम को नियमित रूप से भी कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक पक्ष है कि आपकी मसल स्टोन हो रही है, आप फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, और आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। लेकिन जब आप प्राणायाम करते हैं तो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, और मेंटली जब हम स्ट्रांग होते हैं तो आप देखिए डिप्रेशन जैसी चीज़ें नहीं आती हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि योग ईश्वर से जोड़ने का मार्ग है। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, आंख खोलकर तो हम दुनिया देखते हैं, आंख बंद करके स्वयं को भी तो देखिए कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। भले आप रिटायरमेंट के बाद उस उद्देश्य को पूरा करें, लेकिन जरूर करें, योग करें और स्वस्थ रहें।
1: श्रोताओं, इतनी लंबी बातचीत में अभी भी हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं जिन पर हम बातचीत करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। आगामी किसी कार्यक्रम में हम जरूर आप सभी से फिर से बहुत सारी बात करेंगे। अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी आप सुन रहे थे योग पर विशेष कार्यक्रम योग फॉर हेल्दी एजिंग। कार्यक्रम संयोजन चंद्रशेखर शर्मा का था, सूत्रधार और रिकॉर्डिंग सहयोग मनोज सक्सेना का। नमस्कार।
3: तो भैया, हर वृद्ध अवस्था में योग विषय पर विशेषज्ञों एवं योगाचार्यों से बातचीत पर वो भी आधारित कार्यक्रम आप सभी ने सुन लो। वो मनोज भैया ने खूब अच्छी अच्छी बातें करी, और हम तो जाइके हैं भैया, लाभ जरूर उठाइयो। और देखो भैया हरो, अब बात आउत है मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड की। अब जो हमारे भैया हरो मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड की बात सुन के चौंक न जाइयो, काहे कि जो कार्ड है एक बीमारी को पड़ जा। सो भैया जैसे डॉक्टर के जाते हैं और खून की जांच करके बताऊ थे कि शरीर में का कमी है, वैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड बताऊ थे अपने खेत की मिट्टी में का कमी है। सो कार्ड को मतलब भी जो ही है कि खेत में थोड़ी सी मिट्टी लेके जाओ लैब में, और लैब में जाँच हुई है और फिर एक कार्ड बना दे हैं और वो कार्ड में लिख दे हैं कि भैया रो खेत में नाइट्रोजन कम है कि पोटास कम है और के जिंक कम है। तो हम तो जाई के हैं कि भैया हारो जो बहुत ही फायदा को कार्ड है, खाद को खर्चा आधो हो जाए

और बचत भी हुई है पैसों की। और देखो भैया कल जात जात कल के कार्यक्रम सोई बता दें, कल कृषि चर्चा में सुनियो एलोवेरा की उन्नत खेती, विशेषज्ञ रहे हैं डॉक्टर रूपेंद्र खांडवे और संजय बिरिया भेंट वार्ता में सतत कृषि के विकास में एकीकृत पोषक तत्व तो प्रबंधन की भूमिका, विशेषज्ञ रहे हैं डॉक्टर मीना यादव। तो अब मैं पुष्पा बहन खुंदी हुआ आज्ञा, राम राम।

0: आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जा रहा था। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की समुद्री सैन्य क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
2: भारत को कल 3 नए नौसैनिक जहाज मिले। इनमें स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी, सर्वे वेसल संशोधक और एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अग्रय शामिल हैं। इन जहाजों को कल कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को समर्पित किया। इन जहाजों और भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विश्लेषक कॉमोडोर केडी जोशी। कॉमोडोर जोशी, आकाशवाणी समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: कॉमोडोर जोशी, अलग अलग जहाजों की विशेषताओं पर बात करने से पहले मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि इन जहाजों का भारतीय नौसेना में शामिल होना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। इनके निर्माण में भारतीय उद्योग जगत के साथ साथ 200 से अधिक MSME की भी व्यापक भागीदारी रही है, तो आपके विचार में ये कितना महत्वपूर्ण है?
3: देखिए, ऐसा है कि आज के वातावरण में जो दुनिया में चल रहा है, ये बहुत जरूरी है कि भारत को अपने पैरों पे खड़ा होना है, आत्मनिर्भर बनना है। उस दिशा में जो सरकार ने काम किए हैं इस बारे में और जो अपनी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी ऊपर जा रही है उसके कारण, चाहे वो शिप बिल्डिंग में हो, चाहे शिप निर्माण में जो अलग अलग इक्विपमेंट काम में आते हैं, बनाए जाते हैं, वो आजकल भारत में बन रहे हैं। इसका उदाहरण ये 3 जहाज हैं जिनमें करीब 75-80% इक्विपमेंट जो है वो भारत में बना हुआ है। जैसा कि आपने बताया, करीब करीब 200 MSMEs लघु उद्योग इसमें, इन तीनों जहाजों में इनके साथ जुड़े हुए थे, ताकि उन्होंने जो इक्विपमेंट बनाए, उन्होंने जो सिस्टम्स बनाए, उन्होंने जो आइटम्स बनाए, वो इन जहाजों में लगे हुए हैं। और ये मैं कह सकता हूँ कि भारत के लिए ये बहुत स्वर्णिम मौका है कि पूरे इस दिशा में अच्छी प्रगति करें, और जितना ये गैप रह गया पूरी तरह इंडिजिनस होने में, जो आप कह सकते हैं कि जो वेपन्स और सेंसर्स हैं उसमें ये थोड़ा गैप ज़्यादा दिखता है, बाकी जो डिपार्टमेंट हैं शिप बिल्डिंग के, जिसमें शिप की जो बॉडी है जिसको हल बोलते हैं वो, और शिप के मशीनरी जो अंदर लगी हुई हैं, वो प्राइमरीली हमारे पास अच्छी कैपेबिलिटी है उनका भारत में ही निर्माण करने की और भारत में ही उसको अपने जहाजों पे लगाने की। अगर आप देखिए, भारत में जहाज निर्माण का जो कार्य है वो अभी यहीं पे हो रहा है। कुछ दशक पहले हम लोग जहाज बाहर से मंगवाते थे, आज जहाज घर में बन रहे हैं। और जिसके कारण, अगर आप दोबारा से इसी 3 जहाजों का उदाहरण लेंगे, तो 200 MSME जैसा आपने बताया, करीब करीब 4,000-4,500 लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, 10,000 के करीब लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, जिनमें कह सकते हैं कि इनको एम्प्लॉयमेंट मिली है।
2: जी कॉमोडोर जोशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि किसी देश की समुद्री शक्ति जितनी मजबूत होती है उसका आर्थिक और सामरिक प्रभाव भी उतना ही अधिक होता है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री के ही शब्द।
4: मैरिटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है, समृद्धि जुड़ी है। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार

0: समुद्री मार्गों से ही होता है।
1: दुनिया को जोड़ने वाले डेटा के विशाल नेटवर्क समुद्र के नीचे से गुजरते हैं। आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। इसलिए जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा।
2: कॉमोडोर जोशी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी और अब आपसे ये बात करना चाहूंगी, आपसे ये समझना चाहूंगी कि स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारतीय नौसेना ने इसे एक अत्याधुनिक और शक्तिशाली युद्धपोत बताया है। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि स्टेल्थ फ्रिगेट आखिर होता क्या है।
3: अभी आप देखें, इसके लिए जो स्टेल्थ शब्द है उसका मतलब जानना थोड़ा सा जरूरी है। स्टेल्थ का मतलब है छुपा हुआ, आंखों को एकदम ना दिखे, उस हिसाब से बोला जा सकता है। तो अगर आप देखिए, पुराने जो पहले जो जहाज बनते थे, आप उनको अपने से दूरबीनों से या अपनी आंखों से थोड़े डिस्टेंस तक देख सकते थे। बट आजकल जो जहाज बन रहे हैं वो जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो आज की डेट में करीब 10 से 50 से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक किसी भी जहाज को, उसकी जो प्रेजेंस है कि जहाज मौजूद है कि नहीं 300 किलोमीटर दूर, उसको देखने की क्षमता रखते हैं। बट अगर जहाज की कंस्ट्रक्शन ऐसी हो, उसका निर्माण ऐसा हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो रडार है जिसको हम बोलते हैं, जिससे एक जहाज दूसरे जहाज को देख सकेगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, दूसरे जहाज की अगर कंस्ट्रक्शन एक अलग तरह से हो, तो ये रडार जो है वो देख नहीं पाता है उसको। तो रडार जो एक इक्विपमेंट है, वो एक बीम फेंकता है, वो बीम वापिस आती है दूसरे जो टारगेट जहाज है उससे। लेकिन जो स्टेल्थ शिप है, वो टारगेट, वो जो बीम उसके ऊपर जाएगी, उस बीम को कहीं और डायरेक्ट कर देगा, ताकि वो जिसने बीम आपके पास भेजी है उस जहाज को वापिस ना मिले, उस जहाज को आपकी प्रेजेंस का, आपके वहां मौजूद होने का पता नहीं लगेगा। इस जो टेक्नोलॉजी है उसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और उसमें सिर्फ जहाज निर्माण नहीं, उसका जो पेंट लगाया जाता है उसका भी योगदान रहता है।
2: आपने काफी विस्तार से हमारे श्रोताओं को समझाया कि आखिर स्टेल्थ फ्रिगेट होता क्या है। आगे बढ़ते हैं कॉमोडोर जोशी, और कल यानी कि 21 जून को विश्व योग दिवस के साथ साथ विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है, और इसी दिन सर्वे वेसल लार्ज INS संशोधक को भी नौसेना में शामिल किया गया। इस जहाज की भूमिका क्या रहेगी और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है?
3: इंडियन नेवी में जो सर्वे वेसल्स है उनका काम, जैसे कि नाम दर्शा रहा है, सर्वे करना है, मतलब उसको नीचे जो समुद्र के नीचे है उसको देखना है कि क्या चीजें मौजूद हैं, कुछ डेबरी है क्या, कुछ शिप्स का रैक है क्या, उसमें समुद्र का जो बॉटम है उसमें इवन नहीं होता है, जैसे सड़क ऊंच नीच होती है वैसे समुद्र का जो नीचे का हिस्सा रहता है जो पानी के नीचे, वो भी ऊंचा और नीचा रहता है। तो अगर कोई जहाज किसी ऐसी जगह से जा रहा है जहां उसको सफिशियंट डेप्थ नहीं है, जहां गहराई नहीं मिल रही है, तो जहाज के ग्राउंडिंग होने का खतरा रहता है। तो अब जहाज को कैसे पता चलेगा कि मुझे उस जगह पे नहीं जाना है? तो वो चार्ट में उनकी डेप्थ वगैरह लिखी जाती है, और वो डेप्थ कौन लिखता है, शिपरेक इंडिकेट कौन करता है, डेबरी है करके इंडिकेट कौन करता है, वो सर्वे वेसल्स जो हैं वो सर्वे करते हैं, और वो फाइनली इंफॉर्मेशन चार्ट्स पे दर्शा दी जाती है। और अगर कोई शिपरेक वगैरह है तो मरीनर्स को सबको बता भी दिया जाता है बुलेटिन्स के द्वारा कि इस एरिया में फला फला जगह पे एक शिपरेक है, आप इस जगह से ट्रांजिट मत कीजिए। तो इन जहाजों का जो काम है वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, बट अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। संशोधक जो है, हमारे पास अभी करीब करीब 4 सर्वे वेसल्स हैं, उसमें से संशोधक जो है वो लेटेस्ट परसों कमीशन हुआ है, और इसमें अंडर वाटर सोनार साइड स्कैन लगा हुआ है, जो साइड स्कैन सोनार है उससे जहाज की कैपेबिलिटी दाएं बाएं देखने की, नीचे देखने की, किसी एक टाइम पे ज्यादा अच्छे से बढ़ती है, और जो फिर वो एक पिक्चर बनती है उसके सामने कि एक समुद्र के जो नीचे सतह है वो कैसे दिख रही है, वो ज्यादा अच्छे से आती है सामने। तो इनकी जो सर्वे कैपेबिलिटी है, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, प्रोसेसिंग इनकी ज्यादा बेहतर है, ये वाले जहाज ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं, और उसके कारण पूरा मैरिटाइम सेक्टर

0: विच डजेंट ओनली इंक्लूड भारतीय नौसेना के जहाज, अपितु बाकी जो कमर्शियल ट्रेडिंग है उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है जो ये काम करते हैं अपने सर्वे वेसल्स।
1: आगे बढ़ते हुए मैं आपसे बात करना चाहूंगी INS अग्रय की। ये अर्नाला श्रेणी का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैली वॉटर क्राफ्ट है। इसकी खास विशेषताएं क्या हैं और ये भारतीय नौसेना की क्षमताओं को किस प्रकार मजबूत कर रहा है?
0: जी, जैसा कि नाम में आ रहा है शैलो वाटर क्राफ्ट, शैलो का मतलब है कि ज्यादा गहराई भी नहीं। उसका काम है कि वो जो कम गहराई वाले एरिया है उसमें ये एंटी सबमरीन ऑपरेशंस कर सकता है। एंटी सबमरीन का मतलब है कि जो समुन्द्र के नीचे से जहाज को अटैक होने के चांसेस हैं वो उनका पता लगा सकता है। तो काफी सारे जहाज हैं जो थोड़े डीप वाटर्स में जाके वो अपने ASW ऑपरेशन, दैट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये वाला जो जहाज है ये शैलो वाटर में भी कर सकता है। आजकल की डेट में एसिमेट्रिक वॉरफेयर काफी बढ़ गया है। हमको पता नहीं चलता है कि किस जगह से हमको एक वल्नरेबिलिटी है या थ्रेट आ सकता है, तो कई बार शैलो वाटर से भी थ्रेट होता है। तो ये जो जहाज है ये वहां पे पता कर सकता है कि वहां से कोई थ्रेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसके पास में इसके लिए एडवांस सोनार सिस्टम्स लगे हुए हैं, और अगर कोई ऐसा थ्रेट है जो कंफर्म भी हो जाता है, लाइट वेट टॉर्पिडोज लगे हुए हैं जिससे इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है इन जहाजों के द्वारा।
1: कमांडर जोशी, आपसे सबसे पहले मैं एक चीज समझना चाहूंगी यहाँ पे कि महासागर यानी कि ओशन और डीप सीज में क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, और ऐसे में जितना हम अपने मैरिटाइम डोमेन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो आपको लगता है कि मैरिटाइम डोमेन को जितना हम सशक्त बनाएंगे उससे हमारी क्रिटिकल मिनरल्स की डिपेंडेंस बाकी के बाहर के देशों पर कम हो पाएगी?
0: जी, आपने बिल्कुल सही बोला। ये अगर जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो अपने जो हर एक कंट्री का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, वो उसके शोर तटीय लाइन से करीब 200 माइल्स तक समुन्दर के अंदर, वो EEZ बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके अंदर जो अगर नीचे कुछ मिनरल्स वगैरह पाए जाएंगे तो वो देश के समझे जाते हैं। उसके बियॉन्ड जो है वो इंटरनेशनल एरिया माना जाता है। तो अगर हमारा जो माइनिंग कैपेबिलिटी है वो अगर सशक्त बनाई जाए, डीप अंडर वाटर माइनिंग कैपेबिलिटी, तो समुन्द्र की सतह के नीचे ये अंदाजा है कि बहुत ज्यादा जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्शन के लिए, चाहे अपने डे टू डे इवन मेडिकल अगर आप देखे जाएं, या फिर किसी और भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर में काफी सारे मिनरल्स हैं जो देश में अपनी जमीन पे नहीं है लेकिन हो सकता है वो सागर के अंदर मौजूद हो और जो हमें जरूरत है। तो हमारा सबसे पहले बनता है कि वो ये जो एरिया है हमारा वो थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रहे, उसमें ज्यादा अपने को वल्नरेबिलिटीज ना रहे, अपने को उसमें ज्यादा इंटरफेरेंस ना रहे बाकी लोगों से, क्योंकि ये जो है ये ऑल्दो EEZ बोल सकते हैं बट नेविगेशन फ्रीडम सभी कंट्रीज को, सभी जहाजों को वहां से है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहाज रुक जाएंगे, आना जाना रोक दिया जाएगा, तो जहाज आते जाते रहेंगे दूसरी कंट्रीज के। लेकिन हमारा इतना ये होना चाहिए कि हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं नीचे तो वो सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं, वो कोई और उस पे हक नहीं जमा पाएगा, तो ये अपना एरिया बनता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि ये सारा का सारा जो इकोसिस्टम बनाया गया है, चाहे वो सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर बनाया हो, चाहे वो शिपिंग सेक्टर को 70,000 करोड़ रुपए दे के बनाया गया हो, ये सारा का सारा इसको इसका जो एक अफेक्ट बोलते हैं विच इज एक डोमिनो अफेक्ट बनेगा इसका, उसमें बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ये बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो सरकार का इस टाइम जो एक फोकस एरिया लग रहा है, एक ऐसा एक अंदाजा है कि भारत को एक समुद्री शक्ति बनाया जाए।
1: जी कॉमोडोर जोशी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें इस पूरे विषय के बारे में हमें समझाया। आपने हमें ये भी बताया कि क्या महत्व है उन तीनों शिप्स का जो कल कमीशन हुई है प्रधानमंत्री द्वारा। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय आकाशवाणी को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, शुक्रिया।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत की समुद्री सैन्य क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक कोमोडोर KD जोशी और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के

0: समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: सुर्खियों में

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेम ग्रंथ फिल्म का गीत विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं जयदेव के संगीत से सजा गीत, बोल हैं जानिसाद अख्तर के और फिल्म का नाम प्रेम पर्वत, आवाज लता मंगेशकर की है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

हीरा पन्ना, आइए सुनते इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी के पोल हैं और संगीत आर डी बर्मन का।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्र ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
3: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए। अपर मुख्य सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना की कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
4: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
2: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
5: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर वेम्बू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ वेम्बू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे, चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति

0: अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भाई नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
1: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को

0: चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
1: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
3: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़ भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
4: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुक उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा

0: योगदान होता है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई, इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। आईएसएसएफ

जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: automatic train protection system coverage on 631 route kilometres of East Coast Railway. UK Prime Minister Keir Starmer announces resignation amid turmoil in Labour Party. At ISSF Junior World Championship, Indian shooters add four more medals. And in FIFA World Cup, Argentina to take on Austria in Group J fixture at Arlington tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कोचिंग सेंटर में लगी आग के एक बड़े हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई और काबिले भरोसा मईशत है और हमारा मुल्क एक काबिले भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है। शिवसेना यूबीटी के 6 लोकसभा मेंबरों ने पार्लियामेंट में एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की है। भारतीय रेलवे ने मशरकी साहिली रेलवे के 631 किलोमीटर तवील रास्ते पर ऑटोमेटिक रेलगाड़ी तहफुजाती निजाम कवच शुरू किए जाने की मंजूरी दी है। इंग्लैंड के वजीर आजम कीर स्टामर ने लेबर पार्टी में जारी टूट फूट के दौरान इस्तीफा दे दिया है। ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने प्रीतम केंद्रे के हासिल करदा सोने के एक तमगे समेत 4 मजीद तमगे जीत कर फहरिस्त में आला मकाम हासिल कर लिया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ के अलीगंज इलाके में आग लगने के एक अलमनाक हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं, जिनमें से ज्यादातर की उम्र 16 से 25 बरस के दरमियान थी और ये तालिब इल्म थे। यह हादसा आज से पहर उस वक्त पेश आया जब अलीगंज में पुरानिया इलाके की एक दुकान के ऊपर वाके एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसके सबब तलबा में बेचैनी पैदा हो गई। 6 तालिब इल्मों को KGMC लखनऊ में दाखिल कराया गया है। ज्यादातर अमवात घुटन के सबब हुई। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: बताया जा रहा है कि ये आग इंस्टीट्यूट की इमारत के अंदर लगी और तेजी के साथ फैल गई और लोग अंदर फंसे रह गए। ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जहां कोचिंग सेंटर, गेम जोन और शोरूम थे। आग बुझाने वाले अमले की टीमें, पुलिस अहलकार और जिला इंतजामिया के अफसरान जाए हादसा पर पहुंचे और राहत और बचाव की कार्रवाई शुरू की। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। आग बुझाने वाले अमले के अफराद ने दीवार को तोड़कर और इमारत में दाखिल होकर लोगों को बचाया। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रिजेश पाठक ने कहा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पर मुश्तमिल आला सतह की एक टीम इस मामले की तहकीकात करेगी और आग लगने की वजह का तयन करेगी, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मुस्तकबिल में इस तरह के अलमनाक हादसे ना हों।
3: घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटने, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
2: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
4: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पर जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
2: वो अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों के अपने दौरों को बीच में ही छोड़कर लखनऊ वापस आ गए। उन्होंने जाए हादसे का मुआयना किया और अस्पताल में जख्मियों से भी मुलाकात की। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آگ لگنے کے اس واقعے میں وفات پانے والے افراد کے تئیں افسوس کا اظہار کیا ہے سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے مہلوکین کے لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کیا ہے زخمیوں کو 50,000 روپے دیے جائیں گے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اور قابل بھروسہ معیشت ہے اور یہ ایک قابل

0: भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में कई स्कीमें मुल्क को अव्वलियत देने के मकसद के साथ शुरू की गईं। जनाब मोदी ने नई दिल्ली में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: शिवसेना लीडर और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने आज शिवसेना यूबीटी ग्रुप के 6 लोकसभा मेंबरों ने पार्लियामेंट की उनकी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब शिंदे ने मेंबरान पार्लियामेंट संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाव साहब वागचोरे, नागेश पाटिल अष्टिकर और ओम प्रकाश निम्बलकर की शिवसेना में शमूलियत का खैर मकदम किया। जनाब शिंदे ने कहा कि इन 6 मेंबरान पार्लियामेंट की शमूलियत उस तहरीक के दूसरे मरहले की अलामत है जिसका आगाज जून 2022 में उस वक्त हुआ था जब शिवसेना के 40 मेंबरान असेंबली ने बगावत की थी। उन्होंने कहा कि इस बगावत का मकसद शिवसेना के बानी बाला साहब ठाकरे के नजरियात को महफूज रखना और पार्टी के हिंदुत्व के उसूलों का तहफ्फुज करना था।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत 100 से ज्यादा मुल्कों को दिफाई आलात बरामद कर रहा है और वो इस शोबे में खुद कफील बनता जा रहा है। नई दिल्ली में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुल्क की मुसल्ला अफवाज ने सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाया जो भारतीय शहरियों की हलाकत के जिम्मेदार थे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत एक बाख्तियार भारत की तामीर के तई पुरअज़्म है और ये काम सलाहियतों और सकाफत दोनों पर जोर देकर ही मुमकिन है। इस मौके पर जनाब सिंह ने ताकीदन कहा कि हजारों बरस से मुल्क की सकाफत इंसानियत को रास्ता दिखाती रही है। उन्होंने भारतीय संतों की सताइश की कि उन्होंने शहरियों के माबैन कौमियत के जज्बात को बेदार किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल की वजारत दिफा में डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल अमीर बारम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजारत दिफा ने बताया कि जनाब बारम ने जनाब सिंह को भारत इसराइल खसूसी कलीदी शराकत दारी के मजमू दायरा कार के तहत भारत इसराइल दिफाई तआवुन को वसत देने के तई इसराइल के अज़्म से वाकिफ कराया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने उलान बाटा में आज मंगोलिया के अपने हम मनसब बदसित्सक बतमुंक से बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस तबादला ख्याल से भारत और मंगोलिया के दरमियान कलीदी साझेदारी की गर्मजोशी कुव्वत और मुस्तकबिल की अक्कासी होती है। दोनों रहनुमाओं ने तरक्याती प्रोजेक्टों, सलाहियत साजी, सकाफत, तालीम, सिक्योरिटी और कसीर मुल्की फोरमों में बाहमी इश्तराक की पेशरफ का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान तरफैन ने कानकनी माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और जरई प्रोसेसिंग के शोबों में दस्तियाब मौकों के बारे में भी बातचीत की। बीजेपी की क्यादत वाली मगरबी बंगाल सरकार ने आज 2026-27 के लिए अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में समाजी फलाह बहबूद, बुनियादी ढांचे की तरक्की और रोजगार पैदा करने पर खास जोर दिया गया है। बजट में ख्वातीन पर मरकूज कई इकदामात का ऐलान भी किया गया। 6,070 करोड़ रुपए के खसारे वाला बजट पेश करते हुए वजीर खजाना स्वपन दास गुप्ता ने इसे एक तरक्की याफ्ता बंगाल बनाने के लिए एक रोड मैप करार दिया। उन्होंने कहा कि रियासत का बकाया कर्ज 8,00,000 करोड़ पैसे तजावुज कर गया है, इसमें माली नज्मो जब्त को अव्वलीन तरजीह दी गई है। भारतीय रेलवे ने मुसाफिरों की हिफाजत और रेलवे के कामकाज की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की खातिर मशरकी साहिली रेलवे के 631 किलोमीटर रूट पर ट्रेन की हिफाजत के खुदकार निजाम कवच को नस्ब करने की मंजूरी दी है। रेलवे की वजारत के मुताबिक ये प्रोजेक्ट मशरकी साहिली रेलवे के 6 अहम रेलवे सेक्शन पर मुश्तमिल है जिनमें बघवापाल बुद्धापंख, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बालनगीर, गुन्नूपुर नौपाड़ा, लांजीगढ़ जूनागढ़ और बबीली सलूर शामिल हैं। इन रास्तों पर कवच निजाम की तंसीफ से रेलवे के कामकाज के हिफाजती मेयार में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि ये खुदकार

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। रोजगार केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। जब युवाओं को अवसर मिलते हैं तो न केवल उनका भविष्य संवरता है बल्कि देश की प्रगति को भी नई गति मिलती है। इसी सोच के साथ सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को औपचारिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले वर्ष प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। ये योजना विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। क्या है ये योजना, इसे युवाओं, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को क्या लाभ होगा, इन्हीं सब महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में। हमारा विषय है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा और क्षेत्रीय आयुक्त प्रणित जोशी। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे स्टूडियो नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है उसके बाद 2331-0481 या 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। इस पर आप प्रश्न भेज सकते हैं और ट्विटर हैंडल है @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए आपके जो भी सवाल हैं और शंकाएं हैं पूछ सकते हैं। तो आगाज करते हैं कार्यक्रम का। सबसे पहले पूर्णेंदु जी, आपसे जानना चाहूंगी कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक ऐसी योजना है जो कि यहाँ हमारे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करने के लिए एक सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम जारी की है। ये इंसेंटिव स्कीम इनफैक्ट 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर अभी अगले 2 साल के लिए रहेगी और इस इंसेंटिव स्कीम में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों को इंसेंटिव दे रही है भारत सरकार, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो भी जनरेट हो रहा है उसको एक बढ़ावा मिले और जो एम्प्लॉयज किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जुड़ रहे हैं वो वहाँ पे कुछ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट बनी रहे।
0: जी प्रणित जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ईपीएफओ बहुत मेजर रोल निभा रहा है, क्या है, अपने श्रोताओं को इस बारे में बताएं।
2: हाँ, सो ये स्कीम जो है भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ईपीएफओ को सौंपा है। तो ईपीएफओ इंडिया एंड वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे यहाँ जो फॉर्मल एम्प्लॉयज है लगभग 8 करोड़ फॉर्मल एम्प्लॉयज हमारे यहाँ कवर्ड है। तो ये स्कीम में जो भी बेनिफिट्स हैं वो ईपीएफओ के थ्रू हम देने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कोई द बेस्ट पार्ट इज इसमें कोई एडिशनल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आइदर फॉर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स। डायरेक्टली ईपीएफओ एनरोलमेंट से ही सारे बेनिफिट्स हम लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करके इनको दी जाएगी।
0: ये तो एक तरह से मध्यस्थता का काम कर रहा है ईपीएफओ नियोक्ता और जो कर्मचारी के बीच में। हमारे पहले श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: जी नमस्कार।
0: सवाल पूछे अपना।
3: हाँ, विकसित भारत के अंतर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार मिला और किस

0: समय से रोजगार मिला।
1: रमाशंकर जी, ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है, तो अभी तक लगभग 70 लाख युवा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय जो पहली बार फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आए हैं, लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। इसमें लगभग 13.29 लाख तक का बेनिफिट अभी हमने उनको, इन्होंने 6 महीने कंप्लीट कर चुके हैं, तो इनका पहला किस्त का जो बेनिफिट है हमने उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए।
2: जी पूर्णेंदु जी, आपने इंसेंटिव्स की बात की थी, तो इंसेंटिव्स जो, अगर मैं सबसे पहले कर्मचारी जो पहली बार जो नौकरी पाने वाले हैं, तो उनको क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है, ये बताएं।
3: कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पे बेनिफिट मिलती है इस स्कीम में, वो है जो पहले 6 महीने तक अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने के बाद वहाँ रह जाता है, तो उनका जो एवरेज वेज होता है उसका आधा सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 15,000 रुपये, तो ये पूरा बेनिफिट हो गया। पहले 6 महीने में उनको 7,500 रुपये तक मिलते हैं, और अगले 6 महीने तक अगर वो एक हमारे यहाँ पे वो लिटरेसी कोर्स उनको करना पड़ता है, 6 महीने के बाद अगर उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया और लगातार वहीं एम्प्लॉयड रह गए, तो उनको 12 महीने के बाद 15,000 रुपये तक की राशि दी जाती है।
2: तो 6 महीने के बाद और फिर 6 महीने
3: के दो बार दिया जाता है।
2: आगे भी चर्चा करते हैं, पहले अपने श्रोता का सवाल पूछ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हैं राकेश जी।
0: जी नमस्कार।
2: नमस्कार
0: जी, तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, तो इसमें हमें क्या क्या प्रावधान रखना पड़ता है, और इसके लिए हमें फॉर्म किस तरह से भरना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
3: राकेश जी, आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ता, आपको केवल ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ता है। ईपीएफओ के साथ जुड़ने के लिए जो ईपीएफओ में कवरेज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो आपकी कंपनी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी संस्थान हो जहाँ आप काम कर रहे हैं, वो अगर ईपीएफ में कवर्ड हैं, और जो बिल्कुल नए लोग अगर आ रहे हैं उस कंपनी में जो 1 अगस्त 2025 के पहले कहीं भी हमारे ईपीएफओ से जुड़े हुए नहीं थे, तो वैसे लोगों के लिए एक इंसेंटिव है, और इसलिए इसमें कोई अलग से आपको कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ईपीएफ में आप किसी भी एम्प्लॉई का कंप्लायंस हो रहा है, तो वैसे लोगों को ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट मिल जाता है।
2: जी अगर हम नियोक्ता की बात करें, तो उनको इस योजना से क्या लाभ मिलेगा, और जो इसमें उनको भाग लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, खासकर जैसे अगर कोई कंपनी है, अगर वो हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, उसने ईपीएफओ में रजिस्टर किया है, या स्टार्टअप है नया, तो उन सबके लिए क्या प्रावधान है?
3: कंपनी के लिए 2-3 चीजें आवश्यक हैं। पहला, अगर वो ईपीएफओ में कवर्ड नहीं है, तो पहला तो उनका कवरेज जरूरत होगी यहाँ ईपीएफओ में। साथ ही उनके जितने भी एम्प्लॉई हैं, जो नए एम्प्लॉई आके ज्वाइन कर रहे हैं, उनके बेसिस पे, और जो पुराने एम्प्लॉई जो भी हैं, जो कहीं और से आके उनके यहाँ जुड़ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट टाइमर एंड रीज्वाइनिंग, तो दोनों के नंबर को जोड़ा जाता है। और जो इंसेंटिव है, अगर 10,000 रुपये तक की सैलरी है एम्प्लॉई की, तो उसमें 1,000 रुपये, अगर 20,000 रुपये तक की सैलरी है 10 से 20,000, तो 2,000 रुपये, और अगर 20,000 से लेकर और 1,00,000 रुपये तक की अगर सैलरी है, तो 3,000 रुपये का इंसेंटिव एम्प्लॉयर को मिलता है, और ये एम्प्लॉयर को प्रत्येक महीने जैसे मिलता जाएगा। अभी पहले 6 महीने किसी का सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट हुआ, फिर अगले महीने भी किसी न किसी का 6 महीने होगा, तो वैसे उनको बेनिफिट मिलता रहेगा।
2: ये भी डीबीटी के थ्रू ही,
3: ये सारे बेनिफिट एम्प्लॉयर को डीबीटी के थ्रू मिलेगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो केवल एक ही होती है, एक ईपीएफ में कवर्ड हो, दूसरा उनका जो पैन डिटेल्स है वो हम लेते हैं उनके, क्योंकि हम पैन से जो लिंक्ड उनका बैंक अकाउंट होते हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है, डीबीटी एम्प्लॉयज के लिए होती है।
2: जी हरिद्वार से जुड़े हैं रवि जी।
4: हाँ जी नमस्कार मैम जी।
2: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
4: हाँ जी थैंक यू, और महानुभव विशेषज्ञ को भी नमस्कार।
3: नमस्कार
4: जी सर, मैं जानना चाहता हूँ सर, ये प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है सर, इसके लिए जो ये एक युवा है वो मतलब क्या क्वालिफिकेशन होकर मतलब इस योजना का हिस्सा बन सकता है, मतलब इस योजना से लाभ उठा सकते हैं, इसमें एक युवा की क्या मतलब क्वालिफिकेशन होती, क्या
2: पात्रता क्या होनी चाहिए?
1: रवि जी, इसमें जैसे कि पूर्णेंदु जी भी पहले बताए कि इसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो अगर पहली बार आपकी संस्था में आप ज्वाइन कर रहे हैं, पहली नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई युवा अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उमंग ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस ऐप में उनको एक नंबर दिया जाएगा, उसको हम लोग यूएएन कहते हैं।

0: हैं, और उसके बाद 6 महीने अगर उसी संस्था के साथ आप जुड़े हैं और आपका जो जो ग्रॉस वेजेस है आपके, आपका जो सैलरी है वो 1 लाख से कम होना चाहिए, उनके लिए एक स्कीम है, तो 6 महीने के बाद आपको पहला किस्त 7,500 तक दिया जाएगा, और उसके बाद एडिशनल 6 मंथ्स के बाद आपको दूसरा किस्त दिया जाएगा।
1: जब हम एम्प्लॉयर्स की बात आगे कंटिन्यू रखते हैं, जैसे मैंने पूछा कोई नया अगर स्टार्टअप आया है और 50 से कम अगर उसके एम्प्लॉयज़ हैं या 50 से ज़्यादा हैं, तो उन सब के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं अलग अलग कि मिनिमम आपके पास अगर आप आपको इतने रखने होंगे, ईपीएफओ में रजिस्टर होना होगा, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं।
2: जी, एक स्कीम की सबसे प्राइमरी कंडीशंस में से एक ये है कि आपने एडिशनल एम्प्लॉयमेंट उस संस्थान ने कितना जनरेट किया है। तो उसने अगर किसी के पास 50 से कम एम्प्लॉई हैं, अगर उन्होंने मिनिमम 2 भी एम्प्लॉई को जनरेट कर दिया, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अगर नया आ गया, और अगर 50 से ज़्यादा उस संस्थान के सदस्य हैं, तो वैसे केसेस में 5 उनको कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, तभी वो इसके लिए पात्रता के भागी होंगे। लेकिन साथ में एक और चीज़ बता दूँ आपको कि जहाँ पे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर का जो टोटल हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे ECR पे, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न होता है। तो न केवल ये कितना उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, 2 आदमी होंगे या 5 आदमी होंगे, बल्कि इन लोगों के लिए कंप्लायंस भी रिक्वायर्ड होगा 6 महीने के लिए।
1: हाँ,
2: तो वो लगातार अगर कंप्लायंस आएगी 6 महीने, तभी EPFO को पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय इनके साथ जुड़े हुए थे, उनका वेज कितना था और कितने रुपए के इंसेंटिव के हकदार हैं। जो थ्रेशोल्ड का एक और दूसरा भी कंपोनेंट है हमारा कि जो नेट एम्प्लॉयमेंट है कितना जनरेट हुआ, उसका हम लोगों ने एक रखा हुआ है, जो जो एक पर्टिकुलर पीरियड हमने माना हुआ है, राइट। एक पीरियड है कि अगर अगस्त के पहले, अगस्त 2025 के पहले अगर कोई भी इस संस्थान हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो उसको हम तभी मानते हैं, उसके पिछले 12 महीने का एवरेज देखते हैं कि कितने लोग थे, और वहां से फिर उसका वो एवरेज हो गया बेसलाइन जिसे हम कहते हैं, तो बेसलाइन से कितना बढ़ रहा है। अगर अगस्त 2025 के बाद कोई भी संस्थान है तो उसका बेसलाइन होगा हमारा वो 20 रहेगा मिनिमम, वहां पे एवरेज हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, तो उस बेसलाइन के बाद फिर हम उसको आगे काउंट करते हैं।
1: छोटी छोटी चीजें देखी जाएंगी और तभी इंसेंटिव के आप पात्र बनेंगे। बिहार से जुड़े हैं हिमांशु जी। हिमांशु जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? आपसे अनुरोध है कि अपने जो आपका रेडियो है सेट है उसकी आवाज कम कर दें।
3: मैडम कर दिया मैंने, मैडम मेरा ये सवाल था कि क्या मैं अभी भी एम्प्लॉयमेंट में हूँ NIC मुजफ्फरपुर में, ठीक है
1: जी।
3: लेकिन थर्ड पार्टी जो मुझे पेमेंट कर रही है, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट के ये मेरा जो है EPF नहीं कट रहा है मैम, तो क्या हम लोग लेकिन पहले से जो हम कंपनी हमारी थी उनके द्वारा मेरा जो EPF कटा हुआ है, तो क्या हम लोग इसमें इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है
1: जी? पुनेंद्र जी,
2: हाँ, इसके लिए सबसे पहली चीज है कि आपको बिल्कुल नए एम्प्लॉय होना पड़ेगा। आप चूंकि पहले से EPF से जुड़े हुए हैं, तो जो एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट मिलती है उसमें आप हकदार नहीं होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है अगर आप कहीं भी और दूसरी जगह पे ज्वाइन करते हैं, तो उसको एज रीज्वाइनी हम लोग उन आपके जो भी यहाँ पे ज्वाइन करने के हिसाब से एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलेगा।
1: महाराष्ट्र के ठाणे से जुड़े हैं गुरुनाथ जी। हेलो
4: जी मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार,
4: मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ ठाणे महाराष्ट्र से।
1: जी जी,
4: हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है जैसे EPFO में जो नई कंपनियां होती है जैसे ज्वाइंट होते है, लेकिन एम्प्लॉय का पैसा तो कटता है, तो कभी कभी ये देखा गया है कि सही तरीके से पैसा वापस जमा नहीं हो पाया है, फ्रॉड कभी कभी फ्रॉड भी देखा जाता है, गड़बड़ी देखी जाती है उसमें, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और सही मतलब जो पैसा सैलरी से कट जाता है एम्प्लॉयज का जिस कंपनी से, तो वो जमा हुआ है कि नहीं ये जो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कैसे चेक करें? थैंक यू
1: जी। प्रणय जी,
0: गुरुनाथ जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो एम्प्लॉयज से जो एम्प्लॉयर पैसे काटता है PF जमा करने के लिए, अगर वो एम्प्लॉयर PF जमा नहीं करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, एंड उस एम्प्लॉयर को एक क्रिमिनल अफेंस के अंदर उनको जेल

0: भेजा जा सकता है। तो अभी इसमें ये सवाल है कि इसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपका जो पासबुक है आप अपने पासबुक में आप चेक कर सकते हैं हर महीने की जो आपका अमाउंट कट रहा है वो सही से जमा हो रहा है नहीं है, एंड उसमें पासबुक में आपको ये भी दिखेगा कि आपका इंटरेस्ट कितना जमा हुआ है और टोटल कितना अमाउंट है। तो आपके लॉगिन या फिर आप उमंग ऐप से भी आपका पासबुक आप देख सकते हैं इसमें।
1: जी, बिहार के सासाराम से जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
2: जी नमस्कार, मेरा ये सवाल था, सभी विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार, कि जैसे कि हम लोग जो अभी 2025 से जो अभी लागू हुआ है 1 अगस्त, उससे पहले जितने भी जैसे कि अलग अलग कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं या बीच में कहीं छूट जाता है, तो कैसे वो मालूम चलेगा कि उनका पीएफ जो कटता है या पीएफ का जो इतना संभाग उनमें रहता है क्रेडिट, तो कैसे मालूम चलेगा कि वो कट रहा है कहाँ कैसे?
3: अमित जी नमस्कार, आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया होगा, आपने जहाँ कहीं भी काम किया होगा, तो अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू आप एम्प्लॉई पोर्टल पे जाके ईपीएफओ के आप लॉगिन कर लें। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो जो भी आपका आधार लिंक्ड फ़ोन नंबर है उसके थ्रू ओटीपी से आप रीसेट कर सकते हैं, और जितने जगह पे भी आपने काम किया होगा जो यूएएन से लिंक्ड होगा वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगे आपके अपने पोर्टल पे ही, आपके पासबुक में भी वो दिखने चाहिए, और जहाँ जहाँ से भी आपने काम किया है अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं करवाया है तो आप उसको एक जगह पे ट्रांसफ़र करवा लें ताकि आपके लिए बाद में सुविधा होगी।
1: जी हाँ, जैसे अब कई लोगों की शंकाएं हैं, कई जो होते हैं जो कर्मचारी हैं उनको ईपीएफ खाते, यूएएन नंबर या अन्य सुविधाएं उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो उस लिहाज से आप क्या बताना चाहेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप कोई ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्या कदम उठाने हैं?
3: अभी
0: सो जब भी कोई अभी जो हमने अगस्त 2025 से एक प्रावधान किया है, पहले ये होता था कि जहाँ पे जिस संस्था में कोई ज्वाइन करते हैं कोई एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर खुद वो उनका यूएएन जनरेट करते थे। तो अभी हमने वो हक सिटीजन को ही दिया है, एम्प्लॉय को ही दिया है, जो खुद अपने उमंग ऐप से जो आधार ऑथेंटिकेशन करके वो खुद अपना यूएएन जनरेट करेंगे और फिर वो एम्प्लॉयर को देंगे। तो उससे जो उसको बेसिक तो उनके हाथ में है कि उनका ईपीएफओ का अकाउंट बना है या नहीं है, अभी एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं है। तो उसके बाद उनको ये देखना है कि उनका हर महीने पासबुक उनको चेक करना है कि हमेशा वो हर महीने उनका एवरी मंथ डिपॉजिट हो रहा है नहीं हो रहा है।
1: जी, उड़ीसा से जुड़े हैं देशदीप दास जी। दास जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो दास जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है?
4: जी नमस्ते।
1: नमस्ते
4: शर्मा जी और अरोरा जी, नमस्ते।
1: जी
3: नमस्ते
4: जी, मेरा सवाल है, क्या नियोक्ता को अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है?
3: नियोक्ता को अलग से मैं नहीं कहूंगा कि रजिस्ट्रेशन करना है, उनके पोर्टल पे जाकर और आपको केवल नियोक्ता को अपना पैन देना होता है और जो एक बैंक अकाउंट उनका देना होता है जो पैन लिंक्ड होता है, उसी को हम इनफैक्ट इस स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन मान सकते हैं। सेपरेट रजिस्ट्रेशन बस उसी तरह का होता है, उसके बाद नियोक्ता का जो भी बेनिफिट होता है, बिकॉज पैन के साथ हम इसको लिंक करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक ही पैन के साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो हम उन सबों को पैन एग्रीगेट करके जो बेनिफिट देते हैं वो पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट में देते हैं। तो बेसिकली आपको पैन टैन का डिटेल्स होगा, नियोक्ता का जीएसटी नंबर आप दे सकते हैं वहाँ पे, और साथ में बैंक अकाउंट नंबर जो कि पैन के साथ लिंक्ड हो वो एम्प्लॉयर पोर्टल पे ही देना होता है, उसके लिए आपको और कहीं अलग रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है।
1: और इन्होंने दस्तावेज के बारे में पूछा था,
3: और कोई दस्तावेज नहीं चाहिए,
1: जरूरत नहीं है, बार बार बता रहे हैं आपको इस कार्यक्रम के जरिए। ये जो योजना है, अगर आप फॉर्मल नौकरी के हिसाब से, रोजगार सृजन के हिसाब से बात करें, तो बहुत बड़ी 99,000 करोड़ रुपए से इसका आउटले है। मेजर अगर बात करें जो असंगठित क्षेत्र से जो आते हैं लोग, उनको संगठित क्षेत्र में लेकर जाना, तो उनके लिए योजना किस तरह से आप लाभकारी होते देखते हैं?
3: इसमें 2-3 तरह से हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहला, जो एम्प्लॉयज पहली बात की 6 महीने तक को रहेंगे एक जगह तभी उनको बेनिफिट मिलेगा, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि वहाँ रुकें, एम्प्लॉयर के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि कोशिश करें कि उनके एम्प्लॉई वहीं पर रह जाएं, एम्प्लॉई को एक अच्छा एक्सपीरियंस

0: एक्सपीरियंस होगा, आपको पता होगा कि जैसे नए एम्प्लॉई अगर कोई भी ज्वाइन करते हैं तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे एम्प्लॉयर को भी फायदा हो रहा है, एम्प्लॉई को भी फायदा हो रहा है। जनरली अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनरली एक कॉन्सेप्ट था इंडिया में कि अगर एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉई के अगेंस्ट है, एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है। यहाँ इन दोनों को साथ में लेके चलने की बात हो रही है।
1: और ये होता था कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, भाई आप हमें नौकरी पे रखोगे तभी एक्सपीरियंस मिलेगा,
0: और जब तक नौकरी में आएंगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस होगा नहीं। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है जहां उनको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है और एम्प्लॉयर को भी प्रोत्साहित कर रही है कि आप ऐसे लोगों को रखेंगे और सस्टेन करें वहाँ 6 महीने 1 साल के लिए, तो आपको भी इंसेंटिव मिलेगा।
1: जी, दिल्ली से जुड़े हैं धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार।
0: नमस्कार
2: सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो कुछ जो एम्प्लॉयर होते हैं जो उनकी एज लिमिट निकल जाती है, तो क्या सरकार को चाहिए नहीं कि उनकी एज लिमिट को थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए, जिसको जरूरत है वो ही इसमें भी आ सके।

0: दिल्ली से जुड़े हैं धर्मवीर जी।
1: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार।
2: नमस्कार
1: सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो कुछ जो प्लेयर होते हैं जो उनकी एज लिमिट निकल जाती है, तो क्या सरकार को चाहिए नहीं कि उनकी एज लिमिट को थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए, जिसको जरूरत है वो ही इसमें भी आ सके, और इसमें जो एम्प्लॉयर है वो कितनी इसकी सैलरी इसको डिसाइड कर सकता है।
2: तो इसमें दो पार्ट आपने पूछा है, एक तो एज का पूछा है, तो स्कीम तो जनरली युवा एम्प्लॉयज को प्रोत्साहन मिलता है, बट ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर कोई 40 साल में भी पहली बार संगठित क्षेत्र में नौकरी पा रहा है तो वो इस बेनिफिट के लिए एलिजिबिलिटी है। एंड दूसरा
0: सैलरी का पूछा उन्होंने।
2: सैलरी, हाँ, तो इसमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये था कि जो हाई अर्निंग हाई इनकम ग्रुप है तो उनको ये बेनिफिट ना दिया जाए, तो 1 लाख से जो नीचे है उनका जिसका ग्रॉस सैलरी है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है।
0: अक्सर हम देखते हैं कि जैसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा के बारे में जानकारी नहीं होती, तो इस योजना के जरिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को किस तरह मजबूत किया जा रहा है?
2: तो इसमें जो सामाजिक सुरक्षा EPFO हम लोग 3 स्कीम चलाते हैं, तो जो भी ये PMVBRY के तहत हमसे जुड़ते हैं तो उनको ये 3 स्कीम के बेनिफिट मिलते हैं। तो इनमें से प्रोविडेंट फंड है जो कि आपके लाइफ टाइम अर्निंग्स को वेरी गुड इंटरेस्ट रेट के साथ हम लोग रिटर्न करते हैं, और इसमें बहुत सारे पार्शल विड्रॉल्स के प्रावधान है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पेंशन एक बहुत बड़ा चीज है इसमें, ना केवल उनका सुपर एनुएशन पेंशन बल्कि उनके डेथ केस, इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी उनको फैमिली को भी पेंशन मिलता है, एंड इंश्योरेंस का भी एक कॉम्पोनेंट है लाइफ इंश्योरेंस का।
0: जी पुणेंद्र जी, जैसे अक्सर शायद किसी ना किसी के मन में ये प्रश्न होगा कि जो ये योजना है रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, लेकिन ऐसे में यदि कोई जो नियोक्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद कर्मचारी को नौकरी से हटा देता है या उसे लंबे समय तक कार्य में नहीं बना के रखता है, तो क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रावधान या निगरानी व्यवस्था है?
3: इसमें एक सिस्टम का ही इनबिल्ट मैकेनिज्म है, जैसे ही अगर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट कम होती है जो बेस लाइन से, या थ्रेशोल्ड अगर उसका डाउन होता है, तो एम्प्लॉयी तो चलो 6 महीने के बाद अगर वो नहीं रहते हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट में तो उनको नहीं मिलेगा बेनिफिट, लेकिन साथ ही एम्प्लॉयर को भी ये बेनिफिट कम हो जाती है। तो एम्प्लॉयर के लिए काइंड ऑफ डिसइंसेंटिव है कि अगर लोगों को निकाल रहे हैं हटा रहे हैं अगर वहाँ पर रिटेन नहीं कर रहे हैं, तो रादर एम्प्लॉयर को अभी ज़्यादा इंसेंटिव इसमें है कि लोगों को रखें, रिटेन करें और उनको ट्रेन करें। तो केवल रिटेन करना ही नहीं होगा, जितने दिन लोग रहेंगे उनके लिए एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एम्प्लॉई के लिए भी फायदा, एम्प्लॉयर के लिए भी फायदा।
0: जी, विन विन सिचुएशन है दोनों।
3: विन-विन है, जी।
0: बिहार से जुड़े हैं मोहन पासवान जी।
4: नमस्कार सर।
2: नमस्कार,
4: मैं बसतपुर दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ सर। सर मैं जानना चाहता हूँ कि छोटी छोटी कंपनियां लोगों के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाई है सर नए स्तर से। दूसरा है सर,
3: जी पूछे
0: जी मोहन जी,
4: जो सर भारतीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है 2017 तक, इसके लिए कौन से सूत्र तैयार किए गए हैं सर, एवं इसमें युवाओं के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाए गए हैं सर?
0: जनरलाइज सवाल पूछाना नहीं उन्हें?
3: एक जनरलाइज सवाल है, बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई हैं भारत सरकार के द्वारा, उनमें से एक योजना ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है जो 2047 के विजन को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों को बेनिफिट देते हुए, इंसेंटिव देते हुए ये कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को जो सृजित कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, वर्कर जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ओवरऑल इंसेंटिव करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए एक बहुत अच्छी योजना है।
0: जी अक्सर मैं एक सवाल जो रहता है जहन में MSME क्षेत्र को लेकर, जो छोटे छोटे जो रोजगार सृजित करते हैं, तो देश के जो MSME क्षेत्र को रोजगार का जो प्रमुख हम स्रोत मानते भी हैं, तो इस योजना को MSME क्षेत्र को क्या लाभ मिलने की संभावना है इस योजना से?
2: तो इसमें MSME के ऊपर जो जो इसके ऊपर प्रोविजंस है, तो नॉर्मली EPFO जो लॉ है वो केवल एस्टैब्लिशमेंट्स विद एटलीस्ट 20 एम्प्लॉयज जो है उनके लिए मैंडेटरी है, बट आज के डेट में हमारे पास जो डेटा है उसमें बहुत सारे ऐसे MSME हमसे जुड़े हुए हैं जिसका स्ट्रेंथ 20 से भी कम है।

0: तो उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि उनके लिए उनके छोटा साइज को ध्यान में रखते हुए, उनके कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए, उनको केवल दो एम्प्लॉयज एडिशनल एम्प्लॉयज जनरेट करने का उनको कंडीशन रखा गया है। तो 2 साल के पीरियड में उनको एटलीस्ट 2 नए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है और उनको सस्टेन करना है। तो सारे एमएसएमएस इसमें बहुत बेनिफिट में लेके आ सकता है।
1: तो विनिर्माण क्षेत्र को भी इस जो योजना से बहुत लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, तो वो किस प्रकार मिलेगा?
0: तो विनिर्माण क्षेत्र में एम्प्लॉयर जो है उनके लिए एडिशनल बेनिफिट है इसमें। सो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से ये स्कीम चलता है, तो बाकी संस्थाओं को जो 2 साल तक जो बेनिफिट मिलता है हर एक महीने हर एक नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनको 4 साल तक इसके स्कीम के बेनिफिट्स मिलते हैं।
1: यदि कोई जो युवा है पूर्णेंदु जी, पहली बार नौकरी शुरू कर रहा है, तो उसे ईपीएफओ से जुड़ी कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा?
2: जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहली बात तो उनका एक फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू उमंग ऐप पे जब भी वो यूएएन जनरेट होता है तो वहां पे उनकी हम आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो वो बहुत जरूरी है, जो पार्ट ए का जो बेनिफिट मिल रहा है इस स्कीम में, कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उनका होना पड़ेगा। सेकंड, उनका एक डीबीटी इनेबल्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए। सो आधार के साथ लिंक होता है, लेकिन आपको बैंक में साथ ही साथ अपना डीबीटी के लिए भी इनेबल करवाना पड़ता है। तो ये दोनों चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे, फिर जैसे ही ईपीएफओ में अगर आप जुड़ते हैं, ऑटोमेटिकली आप 6 महीने तक अगर आ रहे हैं यहाँ हमारे साथ, सस्टेन कर गए एक एम्प्लॉयर के साथ, आपका सारा रिटर्न यहाँ आ रहा है, आपका कंप्लायंस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके बेनिफिट कैलकुलेट होके आपके अकाउंट में चले जाते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्र भान जी।
3: जिला छत्तीसगढ़ से इंद्र भान सिंह बोल रहा हूँ। प्रश्न ये है,
1: सवाल
3: पूछे, भारत रोजगार में कौन कौन से सेक्टर हैं?
1: कौन कौन से
2: इसमें सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए हैं। ये स्कीम ईपीएफओ के थ्रू भारत सरकार चला रही है, वो भी इसलिए यहाँ पे हमारा आइडेंटिफिकेशन यूएएन के थ्रू करते हैं, कंपनीज कवर्ड हैं, तो बेनिफिट बिकॉज आइडेंटिफाइड लोगों को जाती है। तो जितने भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए संस्थान हैं उनके थ्रू है सारा कुछ, ये सारी बेनिफिट जाती है
1: जी। अगर किसी के मन में प्रश्न है कि या कोई कर्मचारी है नियोक्ता इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो कोई ऐसा पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर है जिस पर सीधा संपर्क किया जा सकता है?
0: हाँ, तो ये स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट है हमारा, pmvbrv.labor.gov.in। इसमें सारे स्कीम रिलेटेड सारे आपको विशेष उसमें मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर कॉल करके पूछना है तो टोल फ्री नंबर है 1-44-80-1-44-80। इसमें आप मंडे टू सैटरडे 10 to 6 आप कॉल करेंगे तो आपको किसी भी तरह की डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं।
1: जी हाँ, 1-44-80 हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का जो भी है निवारण पा सकते हैं। पूर्णेंदु जी, आपसे एक जाते जाते यही आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगी कि ईपीएफओ के आंकड़ों के आधार पर देखें तो पिछले कुछ वर्षों में औपचारिक रोजगार में क्या परिवर्तन देखने को मिले?
2: मैम, हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं और ईपीएफओ के आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है
1: जी।
2: वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी हुआ करती थी वो काफी फॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बिकॉज ऑफ दिस स्कीम हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि काफी ज्यादा बढ़ेगी और हम सबों को एक फॉर्मल इकोनॉमी एक विकसित भारत देखने को मिलेगा।
1: जी हाँ, हमें विश्वास है कि आज की चर्चा से युवाओं को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में उपयोगी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद आप दोनों का, पूर्णेंदु जी और प्रणय जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ चर्चा की। श्रोताओं, आपका भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी सोमवार को एक नए मुद्दे के साथ। तब तक प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: नमस्कार।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में मैं अनुराधा अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं दिल है कि मानता नहीं फिल्म का गीत, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में। फैज अनवर के बोल हैं और नदीम श्रवण का संगीत। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं औरंगाबाद से राजेश सावले, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य मानस और मन पटेल। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये प्यारा सा गीत।

भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। भाटापारा से दान सिंह रावत दानू, पद्मनी रावत, शुभम सौरभ रावत। और जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड बांधपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। ये सभी श्रोता सुनने की ख्वाहिशमंद है हिना फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में आइए सुनते हैं नीरज का लिखा हुआ गीत, तर्ज बनाई है एसडी परमन ने, फिल्म का नाम है गैम्बलर। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं रिंगने छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर।

मैंने प्यार किया। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाज़ में। देव कोहली का गीत है और संगीत राम लक्ष्मण का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कहानकर, श्रीमती सरिता प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत प्रमिता और आकार हाइस बहादुरपुर नागपुर से वैशाली शैलेश, श्वेता सुमित और कुमारी धोनी। एक और पत्र हमारे हाथ में है छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक कुमार वर्मा, जाविंद्र कुमार वर्मा का। तो ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का गीत। तो सुनते हैं इस गीत को।

नेपाल पैलेस सागर से हमें पत्र लिखा है तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। और एक और पत्र हमारे हाथ में है कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति शिमा, शिवानी शिमाली। और ग्राम पजौनिया जिला जालौन से हमें पत्र मिला है सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं जानी दुश्मन फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। वर्मा मलिक का गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

ये कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए सुनिए संगीता गोस्वामी का ख्याल गायन, राग है यमन। विलंबित ख्याल एक ताल में और मध्य लय में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे संगीता गोस्वामी का ख्याल गायन, राग था यमन। तबले पर संगत की थी ठाकुर उदय प्रताप सिंह ने और हारमोनियम पर थे सलीम अल्लाह वाले। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के KGMC में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6 खासदार शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे

0: शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
2: Every decision I've taken,
3: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
1: जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a fast-growing